सुप्रभात। एफएम 102.4 मेगा हर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है। आज दिन रविवार है। शक संवत 1948 के वैशाख माह की तिथि 27, तदनुसार 17 मई सन 2026। सुबह के 5:59 होने ही वाले हैं। अब आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

FM 102.4 मेगा हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है। सुबह के 6 बजने ही वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन की 2 दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। यह यात्रा भारत और स्वीडन के बीच मजबूत होते गठबंधन में ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ वार्ता करेंगे। इसमें द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। दोनों प्रधानमंत्री के साथ साथ यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लाइन भी यूरोपीय उद्योग जगत के गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करेंगी। यह यूरोपीय उद्योगपतियों का एक प्रमुख मंच है। इस वर्ष जनवरी में भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के लागू होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी की यूरोप की यह पहली यात्रा है। यात्रा का उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करना और तकनीक में तेज परिवर्तनों और जटिल भू राजनीतिक चुनौतियों का समाधान तलाशना है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में स्वीडन में भारतीय राजदूत अनुराग भूषण ने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करेगी।
1: We have a very long-standing partnership with Sweden on defense.
2: रक्षा क्षेत्र में स्वीडन के साथ हमारी साझेदारी बहुत पुरानी है, लेकिन अब ये रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता के संबंध से आगे बढ़कर रक्षा साझेदार के रिश्ते में बदल गया है। अब दोनों देश और दोनों देशों की कंपनियां मिलकर रक्षा उपकरण बनाने और उनके उत्पादन करने की दिशा में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल जैसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया और साथ ही देश में हुए बुनियादी ढांचे के विकास से इस प्रयास को और भी अधिक गति मिली है।
1: एंड ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दैट हैज हैपेंड।
0: इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य की आपूर्ति व्यवस्था तैयार करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी ने नीदरलैंड के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया पिछले कुछ समय से कोविड महामारी, वर्तमान में जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की भूमि बनकर उभर रहा है।
3: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशिएंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नीदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
0: एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति ने कल बेंगलुरु में राजनीतिक दलों, वैधानिक संस्थाओं और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों से गहन विचार विमर्श किया। समिति के सभापति पीपी चौधरी ने कहा कि देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए कुछ राज्यों की विधानसभाओं को निर्धारित समय से पहले भंग करना होगा। उन्होंने कहा कि दल बदल विरोधी कानून, अविश्वास प्रस्ताव तथा राष्ट्रपति शासन के माध्यम से समस्याओं का निदान भी करना पड़ेगा। पश्चिम बंगाल में आरजी कर मेडिकल कॉलेज दुष्कर्म और हत्या मामले की सुनवाई कलकत्ता उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति शंपा सरकार और न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष की खंडपीठ करेगी। इससे पहले न्यायमूर्ति राजा शेखर मंथा और न्यायमूर्ति राय चट्टोपाध्याय ने 11 मई को इस मामले से खुद को अलग कर लिया था। इसमें एकमात्र दोषी संजय रॉय को जनवरी 2025 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। इस मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो कर रही है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने गुजरात टाइटंस को 29 रन से हरा दिया है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने निर्धारित 20 ओवर में 2 विकेट पर 247 रन बनाए। जवाब में गुजरात टाइटंस 4 विकेट पर 218 रन ही बना सकी। सुनील नरेन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज धर्मशाला में दोपहर 3:30 बजे से पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। वहीं दिल्ली में शाम 7:30 बजे डेल्ही कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स आमने सामने होंगे। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया के लियो रोली कॉर्नेटो और डेनियल मार्टिन की जोड़ी से होगा। इससे पहले भारतीय जोड़ी ने कल सेमीफाइनल में मलेशिया के गो सी फेई और नूर जिद्दीन को हराया। मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय तन्वी खुराना। Prime Minister Narendra Modi will reach Gothenburg today on a two-day visit to Sweden, marking a historic milestone in the deepening alliance between New Delhi and Stockholm. Mr. Modi will hold bilateral talks with his Swedish counterpart Ulf Kristersson to review the entire gamut of bilateral relations and explore new avenues of cooperation to enhance bilateral trade as well as collaboration in green transition, AI, emerging technologies, startups, resilient supply chains, defense, space, climate action and people-to-people ties. The two prime ministers will also address the European Roundtable for Industry, a leading pan-European business leaders forum, along with President of the European Commission, Ursula von der Leyen. This engagement represents the third leg of the Prime Minister's broader European tour. Earlier, Prime Minister Modi undertook a series of engagements on his visit to the Netherlands yesterday, ranging from community interactions to the meeting with the Dutch royal family. Addressing a community program in The Hague, the Prime Minister said the world is facing a series of unprecedented challenges, including the COVID-19 pandemic, ongoing conflicts, and an emerging energy crisis. He cautioned that failure to address these challenges swiftly could reverse global development gains and push large sections of the population into poverty. Prime Minister Narendra Modi also underlined India's growing global role, describing the country as a land of opportunities in the 21st century that is driven by both technology and human values.
3: 21st sadi ka Bharat avsaron ki bhoomi hai. भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है. भारत जितना एंशिएंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है. मैं नेदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं. इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा.
4: The Joint Parliamentary Committee on One Nation, One Election Bill held extensive consultations in Bengaluru with political parties, legal fraternity and civil society yesterday. Briefing media persons, the chairman of the committee, P.P. Chaudhary, informed that the objections and recommendations are being collected by the JPC during their visits to different states. On challenges posed by the proposal, he said that synchronizing elections will need to prematurely dissolve a few state assemblies and resolve issues arising out of anti-defection laws, no confidence motion and president rule. The Archaeological Survey of India, ASI, has granted the Hindus an unrestricted access to the monument at Bhojshala complex in Dhar district of Madhya Pradesh for worship and other purposes. The ASI's decision came a day after the Madhya Pradesh High Court ruled that Bhojshala in Dhar was a temple of goddess Saraswati. Within days of levying high custom duties on precious metals, government has imposed import curbs on silver. The Directorate General of Foreign Trade in a notification said the import policy for silver, including silver plated with gold and platinum, are revised from free to restricted with immediate effect. Delhi government has taken a significant decision to reduce the value-added tax on aviation turbine fuel in the national capital from 25% to 7%. Delhi Chief Minister Rekha Gupta said that the decision has been taken in line with the Prime Minister Narendra Modi's emphasis on strengthening connectivity and economic activity with the objective of providing relief to the aviation sector, promoting tourism and logistics activities. In badminton, Indian duo Satvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty will face the Indonesian pair of Leo Roli Cornando and Daniel Martin in the men's doubles final of the Thailand Open in Bangkok today. And that is the end of this news bulletin.
5: हिंदी और अंग्रेजी में समाचार अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से. यह आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है एफएम 102.4 मेगाहर्ट्ज पर. सुबह के 6:10 हुए हैं और अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम खेती की बातें.
6: कृषक मित्रों जोहार, आज खेती की बातें कार्यक्रम के अंतर्गत बातें करते हैं खीरा की खेती के बारे में। किसान भाई बहनों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कद्दू वर्गीय फसलों में खीरा का अपना एक अलग ही महत्वपूर्ण स्थान है। इसका उत्पादन देश भर में किया जाता है। गर्मियों में खीरे की बाजार में काफी मांग रहती है। इसे मुख्यतः भोजन के साथ सलाद के रूप में कच्चा खाया जाता है। ये गर्मी से शीतलता प्रदान करता है और हमारे शरीर में पानी की कमी को भी पूरा करता है, इसलिए गर्मियों में इसका सेवन काफी फायदेमंद बताया गया है। खीरे की गर्मियों में बाजार मांग को देखते हुए जायद सीजन में इसकी खेती करके अच्छा लाभ कमाया जा सकता है। मित्रों, खीरे का वानस्पतिक नाम कुकुमिस स्टिप्स होता है। यह एक बेल की तरह लटकने वाला पौधा है। इस पौधे का आकार बड़ा, पत्तों वाले और त्रिकोणीय आकार के होते हैं और इसके फूल पीले रंग के होते हैं। खीरे में 96% पानी होता है, जो गर्मी के मौसम में अच्छा होता है। खीरा एमबी, मॉलिब्डेनम और विटामिन का अच्छा स्रोत है। खीरे का प्रयोग त्वचा, किडनी और दिल की समस्याओं के इलाज और अल्कालाइजर के रूप में किया जाता है। किसान भाई बहनों, यह तो हुई खीरे के गुण के बारे में बातें, और आइए अब जान लेते हैं कि किस तरह से हम इसकी खेती वैज्ञानिक और आधुनिक विधि से कर सकते हैं। सबसे पहले बीजों के चयन पर आते हैं। बहुत से कृषि वैज्ञानिकों ने स्वर्ण अगेती, स्वर्ण पूर्णिमा, पूसा उदय, पूना खीरा, पंजाब सेलेक्शन, पूसा संयोग, पूसा बरखा, खीरा 90, कल्याणपुर हरा खीरा, कल्याणपुर मध्यम खीरा और खीरा 75 को प्रमुख बीज माना है और कहा है कि यह सभी बीज बहुत उत्तम होते हैं और जब इनका समय होता है तब इनको बोने पर अच्छी फसल प्राप्त होती है, जिसे बेचकर आप सभी अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। खीरे के लिए रेतीली दोमट और भारी मिट्टी काफी उपयुक्त मानी जाती है, लेकिन इसकी खेती के लिए अच्छे जल निकास वाली बलुई और दोमट मिट्टी भी अच्छी रहती है। खीरे की खेती के लिए मिट्टी का पीएच मान 6-7 के बीच का होना चाहिए। इसकी खेती उच्च तापमान में अच्छी होती है। खीरे की फसल पाला सहन नहीं कर सकता है, इसलिए इसकी खेती जायद सीजन में करना अच्छा रहता है। पर्वतीय क्षेत्रों में इसकी बुआई मार्च व अप्रैल माह में की जाती है। वहीं ग्रीष्म ऋतु के लिए इसकी बुआई फरवरी व मार्च महीने में की जाती है। वर्षा ऋतु के लिए इसकी बुआई जून जुलाई में करते हैं। 1 एकड़ खेत के लिए 1 किलोग्राम बीज की मात्रा काफी होती है। ध्यान रहे, बिजाई से पहले फसल को कीटों और बीमारियों से बचाने के लिए और उनके जीवन काल को बढ़ाने के लिए अनुकूल रसायन के साथ उपचार जरूर करना चाहिए। बिजाई से पहले बीजों का 2 ग्राम कैप्टन रसायन के साथ उपचारित किया जाना चाहिए। सबसे पहले खेत को तैयार करके 1.5 से 2 मीटर की दूरी पर लगभग 60-75 सेंटीमीटर चौड़ी नाली बना लें। इसके बाद नाली के दोनों ओर मेड़ के पास 1-1 मीटर के अंतराल पर 3-4 बीज की एक स्थान पर बुआई करते हैं। खेत की तैयारी के 15-20 दिन पहले 20-25 टन प्रति हेक्टेयर की दर से सड़ी गोबर की खाद मिला देते हैं। खेत की अंतिम जुताई के समय 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटास युक्त उर्वरक मिला देते हैं। फिर बुआई के 40-50 दिन बाद टॉप ड्रेसिंग से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से खड़ी फसल में प्रयोग की जाती है। मित्रों, यह भी ध्यान रखें कि जायद में उच्च तापमान के कारण अपेक्षाकृत अधिक नमी की जरूरत होती है, अतः गर्मी के दिनों में हर सप्ताह हल्की सिंचाई करना चाहिए। वर्षाकालीन फसल के लिए जड़ों में मिट्टी चढ़ा देना चाहिए। बुआई के लगभग 2 माह बाद ही फसल तैयार होने लगती है। जब फसल अच्छे मुलायम और उत्तम आकार के हो जाएं, तो उन्हें सावधानी पूर्वक लताओं से तोड़कर अलग कर लेते हैं। इस तरह प्रति हेक्टेयर 50-60 क्विंटल फसल प्राप्त किए जा सकते हैं। खीरा की खेती, इस विषय पर चर्चा खेती की बातें कार्यक्रम के अंतर्गत सुन रहे थे। आप सभी कृषक भाई बहनों को एक बार पुनः जोहार।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती की बातें। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। और अब सुनिए आज का चिंतन। निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करने से जो आत्मसंतुष्टि मिलती है वो व्यक्ति का आध्यात्मिक विकास करती है। स्पष्ट है कि जो लोग भेदभाव की नीति बरतते हैं उनके हृदय की कलुषता नहीं मिट पाती और पूर्ण आध्यात्मिक उन्नति से वे वंचित रह जाते हैं। इसलिए कहा गया है कि सच्चे हृदय से की जाने वाली क्षण भर की भी समाज सेवा का महत्व किसी व्यक्ति द्वारा महीने तक की गई समाज सेवा से कम नहीं है, क्योंकि जिसने जितना संभव हो सका उतना उसने कार्य किया। ये था आज का चिंतन।

एफएम 102.4 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र के संग और अब प्रस्तुत है भक्ति गीतों का कार्यक्रम वंदना।

मिट रहा है तम पिघलकर, उग रहा है उजाला, है परावर्तित प्रकाशित रश्मियों का पथ निराला। पवन की पट हलचले जल दोलनों में ढल रही है, तरल पथ पर जल तरंगी लहरें बनकर चल रही हैं। आज के मंगलमय दिन की कामना के साथ एक बार फिर हम उपस्थित हैं भक्ति गीतों के कार्यक्रम वंदना में। तो आइए पहले सुने ये देशभक्ति रचना।

समवेत स्वरों में आप सुन रहे थे ये देश वंदना। वंदना कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं भजन। कलाकार हैं लता मंगेशकर।

आप सुन रहे थे भजन, कलाकार थी लता मंगेशकर। इसी के साथ भक्ति गीतों का ये कार्यक्रम वंदना यही संपन्न होता है। FM 102.4 MHz पर आप हैं आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र के संग, और अब सुनिए रामचरितमानस।

माया नगरी के राजा शील निधि के वैभव तथा ऐश्वर्य की तुलना में इंद्रपुरी भी हेय थी। राजा ने जब अपनी कन्या के स्वयंवर का आयोजन किया तो सैकड़ों रूपवान राजे महाराजे उसका वरण करने के लिए वहां उपस्थित हुए। घुमंतु नारद जी भी वहां पहुंचे। राजा शील निधि ने उनका उचित आदर सत्कार करके उनसे अपनी कन्या का भविष्य बताने की प्रार्थना की। विश्व मोहिनी का रूप देखकर देवर्षि अपना वैराग्य भूल गए। कन्या के लक्षण ऐसे जिन्होंने देवर्षि के मन में उसे प्राप्त करने की अदम्य लालसा जगा दी, लेकिन उसके लिए वैसे ही रूप की आवश्यकता थी। हरि को अपना सबसे बड़ा शुभेच्छु जान नारद जी ने उनसे अपने लिए उन्हीं का अपना अनुपम रूप मांगा। भगवान ने कहा, हे योगी मुनि, रोग से व्याकुल रोगी यदि कुपथ्य मांगे तो वैद्य उसे वो नहीं देता। मैंने भी आपका हित करने की ठान ली है, अतः आपका अकल्याण नहीं होने दूंगा।

आप सुन रहे थे रामचरितमानस एफएम 102.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है। सुबह के 7 बजने ही वाले हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटेन के बीच हेग के व्यापक विचार विमर्श के बाद दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, जल प्रबंधन, स्वच्छ ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के लिए कई समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए। संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने की घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में भारत नीदरलैंड्स के संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों को नवाचार, निवेश, सतत विकास और रक्षा क्षेत्रों में अपने सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की आवश्यकता है। नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटेन ने भी भारत के साथ संबंधों के बढ़ते महत्व पर जोर दिया और आर्थिक और रणनीतिक क्षेत्रों में मजबूत सहयोग का समर्थन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन की दो दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। यह यात्रा भारत और स्वीडन के बीच मजबूत होते गठबंधन में ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंसन के साथ वार्ता करेंगे, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। एक रिपोर्ट।
1: दुनिया की सबसे नवाचारी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल स्वीडन को भारत की डिजिटल प्रतिभा और तकनीकी क्षमता के साथ स्वाभाविक साझेदारी मिलती है। वर्तमान में भारत में 280 से अधिक स्वीडिश कंपनियां सक्रिय हैं, जबकि लगभग 75 भारतीय कंपनियों ने स्वीडन में अपनी उपस्थिति स्थापित करी है। इस यात्रा का एक विशेष आकर्षण यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री का संबोधन है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री और यूरोपियन आयोग के अध्यक्ष के साथ करेंगे। भारत यूरोपियन संघ फ्री ट्रेड समझौता भारतीय निर्यात के लिए बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है, जिससे वस्त्र, लेदर, इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों को व्यापक बाजार पहुंच मिलने की संभावना है। रक्षा और सुरक्षा सहयोग भी अब दोनों देशों की साझेदारी का एक प्रमुख स्तंभ बन चुका है। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गोथेनबर्ग यात्रा ऐतिहासिक विश्वास और भविष्य की साझेदारी के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु का कार्य कर रही है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
0: कीमती धातुओं पर भारी सीमा शुल्क लगाने के कुछ ही दिन बाद सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा कि सोने और प्लैटिनम से बढ़ी हुई चांदी सहित चांदी के आयात की नीति मुक्त से प्रतिबंधित में संशोधित कर दी गई है। सरकार ने बुधवार को कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। प्रतिबंधित श्रेणी के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं के आयात के लिए सरकारी लाइसेंस की आवश्यकता होती है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला परिसर में हिंदुओं को पूजा पाठ और अन्य कार्यक्रमों के लिए प्रवेश की अनुमति दे दी है। इससे पहले मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भोजशाला को देवी सरस्वती का मंदिर घोषित किया था। विभाग के आदेश का हवाला देते हुए एक अधिकारी ने बताया कि हिंदुओं को अपनी प्राचीन परंपराओं के अनुसार परिसर में पूजा अर्चना और अध्ययन के लिए निर्बाध प्रवेश की अनुमति होगी। उच्च न्यायालय ने इंदौर पीठ ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के 7 अप्रैल 2003 के उस आदेश को रद्द कर दिया था, जिसमें मुसलमानों को हर शुक्रवार को भोजशाला परिसर के भीतर नमाज अदा करने की अनुमति दी गई थी। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने गुजरात टाइटंस को 29 रन से हरा दिया है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने निर्धारित 20 ओवर में 2 विकेट पर 247 रन बनाए, जवाब में गुजरात टाइटंस 4 विकेट पर 218 रन ही बना सका। प्रतियोगिता में आज धर्मशाला में दोपहर 3:30 बजे से पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु से होगा। दिल्ली में शाम 7:30 बजे दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स आमने सामने होंगे। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया के लियो रोली कार्नेडो और जेनेल मार्टिन की जोड़ी से होगा। इससे पहले भारतीय जोड़ी ने कल सेमीफाइनल में मलेशिया के गो जी फेई और नूरुजुद्दीन को हराया था। मौसम विभाग ने आज अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। केरलम, माहे, लक्षद्वीप, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में ऐसी ही स्थिति रहेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हिंदी में समाचार अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है।

0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।

हम आपको बता दें श्रोताओं, आज सुबह 7:10 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में आनंद लेंगे गजलों का कलाकार होंगे चंदन दास। 7:20 पर लोक गीतों के कार्यक्रम

7:35 पर बांग्ला गीतों के कार्यक्रम सुरांजली में आज आप सुनेंगे आधुनिक गान, कलाकार होंगे शैलेन मुखर्जी। सुबह 7:50 पर कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा में सुनेंगे डॉक्टर विनोद कुमार से राजेश कुमार की बातचीत, आधुनिक जीवन शैली और हाइपरटेंशन इस विषय पर। सुबह 8:45 और 10:20 का समय होगा फिल्म संगीत के कार्यक्रम का। 9:05 पर होगा कार्यक्रम सुरंजना। 9:30 पर प्रस्तुत होगा कार्यक्रम पल्लव।

दिन के 11:05 से आप सुनेंगे कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर। दोपहर 12:05 पर होगा कार्यक्रम भावगीत या शीर्षक गीत। 12:30 पर आज आप सुनेंगे कार्यक्रम अंगना।

दिन के 1:20 और 2:30 का समय होगा फिल्म संगीत के कार्यक्रम का। 3 बजे सुनेंगे रोजगार समाचार। तीन बजकर 5 मिनट पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में फनकार होंगी सुमोना राय विश्वास। तीन बजकर 15 मिनट पर आदिवासी लोकगीतों के कार्यक्रम में आनंद लेंगे पंच परगनिया लोकगीतों का कलाकार होंगे नरेश कुमार सिन्हा।

ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है एफएम 102.4 मेगाहर्ट्ज पर, और अब प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में सुनेंगे गजल, कलाकार हैं।

0: आप सुन रहे थे गजल, कलाकार थे चंदन दास और अनुराधा पौडवाल। इसी के साथ सुगम संगीत का ये कार्यक्रम यही संपन्न होता है।
1: दस लाख की लॉटरी मुझे,
2: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
3: आरबीआई कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर और अब प्रस्तुत है लोक गीतों का कार्यक्रम। कलाकार हैं पूनम मिश्रा, आप सुनेंगे।

आप सुन रहे थे मैथिली लोकगीत, कलाकार थी पूनम मिश्रा। इसी के साथ लोकगीतों का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है और आपने ट्यून किया है FM 102.4 MHz पर। और अब प्रस्तुत है बांग्ला गीतों का कार्यक्रम सुरांजली। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे आधुनिक गान कलाकार हैं शैलेन मुखर्जी।

0: आप सुन रहे थे आधुनिक गान, कलाकार थे शैलेन मुखर्जी। इसी के साथ बांग्ला गीतों का ये कार्यक्रम सुरांजलि यहीं संपन्न होता है। FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र के संग। और अब कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा में सुने डॉक्टर विनोद कुमार शर्मा से राजेश कुमार की बातचीत आधुनिक जीवन शैली और हाइपरटेंशन इस विषय पर।
1: श्रोताओं, आज है विश्व हाइपरटेंशन दिवस, इसलिए आज बातें हाइपरटेंशन के बारे में। आधुनिक जीवन शैली के कारण किस तरह से हाइपरटेंशन लोगों को अपना शिकार बनाता जा रहा है और इससे हम कैसे बच सकते हैं, इन सारी बातों को बताने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर विनोद कुमार शर्मा। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि हाइपरटेंशन वास्तव में है क्या?
2: एक सीधी सी बात है, ब्लड को पूरे शरीर में फैलाने के लिए एक प्रेशर की जरूरत होती है, जो हार्ट उस प्रेशर को देता है और उस प्रेशर से हार्ट जो है ब्लड को पूरे शरीर में फैलाता है। ये अगर प्रेशर बढ़ जाए तो इसको इस तरह से समझाते हैं, मान लीजिए आप किसी भी एरिया में रहते हैं
1: जी,
2: वहाँ अगर पानी की टंकी है,
1: अच्छा,
2: वो पानी की टंकी में अगर प्रेशर बढ़ा दिया जाए तो आप कल्पना कर लीजिए क्या क्या होगा। नल का पाइप फटेगा, अचानक से कुछ खराब हो जाएगा, अचानक से ब्लॉक भी हो सकता है। तो इस तरह से ब्लड प्रेशर को समझे, ये जीवन शैली को सुधारना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरत है। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि जिनका फैमिली हिस्ट्री नहीं है उनको भी ब्लड प्रेशर हो रहा है
1: जी।
2: जो कम उम्र में, काफी कम उम्र में लोगों को ब्लड प्रेशर हो रहा है, और ब्लड प्रेशर जैसे ही होता है तो वो पूरे शरीर को प्रभावित करता है।
1: किस तरह के लक्षण शुरुआत में दिखते हैं, कैसे लोगों को पता चले कि वो हाइपरटेंशन के शिकार हो रहे हैं?
2: बदलाव करते हैं तो ठीक होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि ठीक नहीं होता है।
1: आपका कहने का मतलब, अगर कोई हाइपरटेंशन का शिकार है या ब्लड प्रेशर किसी को है तो वो चाहे तो जीवन शैली में सुधार करके और कुछ दवाएं लेके अपना जीवन को अच्छी तरह से जी सकता है।
2: हाँ,
1: अगर मान लीजिए बहुत दिन से किसी को हाइपरटेंशन है तो शरीर पर क्या विपरीत प्रभाव पड़ता है?
2: बहुत दिनों से ब्लड प्रेशर अगर है शरीर पर, मोटा मोटी समझ लीजिए जितना आपका सप्लाई चेन है जिसमें ब्लड दौड़ रहा है
1: शरीर के अंदर,
2: वो शरीर के अंदर वो सभी को डैमेज कर रहा
1: है। अच्छा,
2: सभी एकदम, मतलब आप देखे होंगे कि एकदम कितना पतला और कितना नाजुक होता है वो जिसमें ब्लड दौड़ता है
1: जी,
2: है ना, आर्टरी या वेन जो भी हम लोग कहते हैं, आर्टेरियल जो भी बोलते हैं, तो हम चैनल बोलेंगे, तो चैनल जो है बहुत नाजुक होता है, कितना डैमेज हो जाता है, कार्य क्षमता बढ़ाता है आपका। आप कल्पना कर लीजिए सारी चीजों को वो सुचारू रूप से ठीक करता जाता है। और नमक का जहाँ तक सवाल है, एक भ्रम है समाज में कि नमक छोड़ दो, नहीं, नमक
1: ऐसी मिथ्या है,
2: ये मिथ्या है, ये आप गर्म देश में रह रहे हैं, आपको शरीर, आपके शरीर को नमक की जरूरत है, आप ऊपर से नमक न ले खाने में, ये जरूरी है।
1: डॉक्टर साहब, आपने काफी उपयोगी और महत्वपूर्ण जानकारियां दी, उम्मीद है हमारे श्रोता जो आपको सुन रहे होंगे इसका लाभ जरूर उठाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: सुबह के 8 बजने वाले हैं, अभी आप सुनेंगे समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

क्षमा करें श्रोताओं, सुबह के 7:56 हुए हैं। थोड़ी ही देर में सुबह के 8 बजे आप सुनेंगे समाचार प्रभात।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने

0: 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
4: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
5: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
6: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
5: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
6: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
5: डायल कीजिए 8700014242।
6: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
7: ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 MHz पर। सुबह के 8 बजने ही वाले हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज होगा 8:15 पर आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से, और 8:30 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।
8: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येथिन के बीच विचार विमर्श के बाद दोनों देशों ने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन की स्वीडन यात्रा पर आज गोथेनबर्ग पहुंचेंगे, स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंसन के साथ बातचीत करेंगे। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने भोजशाला परिसर में हिंदुओं के निर्बाध प्रवेश की अनुमति दी। सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगाया, इसे मुक्त से प्रतिबंधित श्रेणी में रखा गया। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में विमानन टर्बाइन ईंधन पर मूल्य वर्धित कर वैट को 25% से घटाकर 7% करने का निर्णय लिया। और थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशियाई जोड़ी से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येथिन के बीच हेग में व्यापक विचार विमर्श के बाद दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, जल प्रबंधन, स्वच्छ ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के लिए कई समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए। संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने की घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में भारत नीदरलैंड्स के संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है।
9: हमें नीदरलैंड की एक्सपर्टीज और भारत की स्पीड और स्केल को हर क्षेत्र में जोड़ना चाहिए। इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट, सस्टेनेबल

0: मिलिट्री और डिफेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग को नए आयामों तक पहुंचाना है। इसी साझा दृष्टि के साथ भारत नीदरलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों को नवाचार, निवेश, सतत विकास और रक्षा क्षेत्रों में अपने सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की आवश्यकता है। नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटेन ने भी भारत के साथ संबंधों के बढ़ते महत्व पर जोर दिया और आर्थिक और रणनीतिक क्षेत्रों में मजबूत सहयोग का समर्थन किया। 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी ने नीदरलैंड्स के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया पिछले कुछ समय से कोविड महामारी, वर्तमान में जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की भूमि बनकर उभर रहा है।
0: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशियंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नीदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
1: प्रधानमंत्री मोदी आज स्वीडन की 2 दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। ये यात्रा भारत और स्वीडन के बीच मजबूत होते गठबंधन में ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंसन के साथ वार्ता करेंगे, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। एक रिपोर्ट।
2: दुनिया की सबसे नवाचारी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल स्वीडन को भारत की डिजिटल प्रतिभा और तकनीकी क्षमता के साथ स्वाभाविक साझेदारी मिलती है। वर्तमान में भारत में 280 से अधिक स्वीडिश कंपनियां सक्रिय हैं, जबकि लगभग 75 भारतीय कंपनियों ने स्वीडन में अपनी उपस्थिति स्थापित करी है। इस यात्रा का एक विशेष आकर्षण यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री का संबोधन है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री और यूरोपियन आयोग के अध्यक्ष के साथ करेंगे। भारत यूरोपियन संघ फ्री ट्रेड समझौता भारतीय निर्यात के लिए एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है, जिससे वस्त्र, लेदर, इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों को व्यापक बाजार पहुंच मिलने की संभावना है। रक्षा और सुरक्षा सहयोग भी अब दोनों देशों की साझेदारी का एक प्रमुख स्तंभ बन चुका है। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गोथेनबर्ग यात्रा ऐतिहासिक विश्वास और भविष्य की साझेदारी के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु का कार्य कर रही है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
1: आकाशवाणी से विशेष बातचीत में स्वीडन में भारतीय राजदूत अनुराग भूषण ने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करेगी।
3: We have a very long-standing partnership with Sweden on defense.
4: रक्षा क्षेत्र में स्वीडन के साथ हमारी साझेदारी बहुत पुरानी है, लेकिन अब ये रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता के संबंध से आगे बढ़कर रक्षा साझेदार के रिश्ते में बदल गया है। अब दोनों देश और दोनों देशों की कंपनियां मिलकर रक्षा उपकरण बनाने और उनके उत्पादन करने की दिशा में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल जैसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया और साथ ही देश में हुए बुनियादी ढांचे के विकास से इस प्रयास को और भी अधिक गति मिली है।
3: एंड ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दैट हैज हैपेंड।
1: एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति ने कल बेंगलुरु में राजनीतिक दलों, वैधानिक संस्थाओं और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों से गहन विचार विमर्श किया। समिति के सभापति पीपी चौधरी ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, पूर्व मुख्यमंत्री वीरप्पा मोइली और भारतीय जनता पार्टी तथा अन्य पार्टी के नेताओं ने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि कई राज्यों की यात्रा के दौरान समिति आपत्तियां और सुझाव एकत्रित कर रही है। इससे जुड़ी चुनौतियों पर उन्होंने कहा कि देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए कुछ राज्यों की विधानसभाओं को निर्धारित समय से पहले भंग करना होगा और दल बदल विरोधी कानून, अविश्वास प्रस्ताव तथा राष्ट्रपति शासन के माध्यम से समस्याओं का निदान करना पड़ेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
5: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
6: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
5: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला परिसर में हिंदुओं को पूजा पाठ और अन्य कार्यक्रमों के लिए निर्बाध प्रवेश की अनुमति दे दी है। इससे पहले मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भोजशाला को देवी सरस्वती का मंदिर घोषित किया था। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
7: भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के आदेश का हवाला देते हुए एक अधिकारी ने कहा कि भोजशाला एक मंदिर होने के साथ साथ संस्कृत भाषा, व्याकरण और साहित्य के अध्ययन और अनुसंधान का केंद्र भी है। हिंदू समाज को प्राचीन परंपरा के अनुसार माँ देवी सरस्वती की पूजा अर्चना और अध्ययन के लिए इस परिसर में बिना किसी रोक टोक के आने का अधिकार होगा। हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के उस 7 अप्रैल 2003 के आदेश को भी रद्द कर दिया, जिसमें मुस्लिम समुदाय को हर शुक्रवार भोजशाला परिसर में नमाज पढ़ने की अनुमति दी गई थी। कोर्ट ने यह भी कहा है कि मुस्लिम समुदाय जिले में मस्जिद निर्माण के लिए अलग जमीन के आवंटन के लिए राज्य सरकार से संपर्क कर सकता है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
1: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में पुणे से एक अन्य अभियुक्त प्रोफेसर मनीषा मंधारे को गिरफ्तार किया है। वे पुणे के एक कॉलेज में वनस्पति शास्त्र के अध्यापक हैं। सीबीआई के अनुसार राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने मंधारे को परीक्षा प्रक्रिया में विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया था। इससे पहले सीबीआई ने 14 मई को पुणे से ही मनीषा वाघमारे को गिरफ्तार किया था। पश्चिम बंगाल में आरजी कर मेडिकल कॉलेज दुष्कर्म और हत्या मामले की सुनवाई कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति शंपा सरकार और न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष की खंडपीठ करेगी। इससे पहले न्यायमूर्ति राजा शेखर मंथा और न्यायमूर्ति राय चट्टोपाध्याय ने 11 मई को इस मामले से खुद को अलग कर लिया था। इसमें एकमात्र दोषी संजय राय को जनवरी 2025 में आजीवन कारावास की सजा हुई थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन अध्यादेश 2026 के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अलावा न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या को 33 से बढ़ाकर 37 करने की मंजूरी दे दी है। इस अध्यादेश के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन किया गया है। कीमती धातुओं पर भारी सीमा शुल्क लगाने के कुछ ही दिनों बाद सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा कि सोने और प्लैटिनम से मणी हुई चांदी सहित चांदी के आयात की नीति को मुक्त से प्रतिबंधित करके संशोधित कर दिया गया है। सरकार ने बुधवार को कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। प्रतिबंधित श्रेणी के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं के आयात के लिए सरकारी लाइसेंस की आवश्यकता होती है। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में विमानन ईंधन पर मूल्य वर्धित कर वैट 25% से घटाकर 7% करने का निर्णय लिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संपर्क और आर्थिक गतिविधियों को मजबूत करने के अनुरूप लिया गया है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
4: जी लवली, इन खेल खबरों में सबसे पहले बात बैडमिंटन की। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रेंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया के लियो रोली कॉर्नेडो और डेनियल मार्टिन की जोड़ी से होगा। और अगर बात करें टेनिस की तो भारत के सिद्धांत बंथिया और बुल्गारिया के अलेक्जेंडर डोंस्की की जोड़ी ने पुर्तगाल में ओइरास 480 चैलेंजर 100 टूर्नामेंट में पुरुष डबल्स का खिताब अपने नाम कर लिया है। और टेनिस में ही इटली ओपन टूर्नामेंट में विश्व के नंबर एक खिलाड़ी इटली के यानिक सिनर फाइनल में पहुंच गए हैं। फाइनल में आज सिनर का सामना कैस्पर रूड से होगा। उधर बेंगलुरु में भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान सलीमा टेटे ने आगामी ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले टीम की तैयारियों पर जोर दिया है। भारतीय टीम 26 से 30 मई के बीच पर्थ हॉकी स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 मैच खेलेगी। और अगर बात करें क्रिकेट की तो आईपीएल में कल रात कोलकाता नाइट राइडर्स ने गुजरात टाइटंस को 29 रन से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज धर्मशाला में दोपहर 3:30 बजे से पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा और 7:30 बजे से दिल्ली में राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स आमने सामने होंगे। जी लवलीन, खेल जगत से बस आज इतना ही।
1: मौसम विभाग ने बताया है कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर और अंडमान द्वीप समूह के कई हिस्सों और पूरे निकोबार द्वीप समूह में आगे बढ़ चुका है। विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मॉनसून के 26 मई को केरलम तक पहुंचने की संभावना है। अगले 3 से 4 दिन के दौरान अंडमान निकोबार द्वीप समूह, हिमालय के तराई क्षेत्र, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, केरल, माहे और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। आज विश्व उच्च रक्तचाप दिवस है। इसका उद्देश्य उच्च रक्तचाप के बारे में वैश्विक जागरूकता, रोकथाम, पहचान और

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं आसिया नाजली। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र से जनगणना में अलग सरना धर्म कोड की मांग दोहराते हुए कहा, आदिवासी समाज की पहचान के लिए अलग धर्म कोड जरूरी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन किया अनिवार्य। जेईई एडवांस्ड परीक्षा को लेकर रांची में निषेधाज्ञा लागू। परीक्षा के दौरान विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी और पुलिस बलों की प्रतिनियुक्ति। पलामू, गढ़वा और लातेहार को छोड़ राज्य के अन्य जिलों में आज और कल मेघ गर्जन के साथ होगी बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय महिला हॉकी के विकास में योगदान के लिए नीदरलैंड की कोच की सराहना। देशवासियों से भारतीय टीम के समर्थन की अपील। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र से अपील करते हुए कहा है कि देश के करोड़ों आदिवासी समाज के लोगों के अस्तित्व, आस्था, संस्कृति और पहचान के सम्मान के लिए अलग सरना धर्म कोड जरूरी है। अपने सोशल मीडिया संदेश में उन्होंने कहा कि जनगणना में आदिवासी समाज को अलग आदिवासी या सरना धर्म कोड मिलना चाहिए, ताकि उनकी धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को उचित मान्यता मिल सके। जनगणना 2027 के पहले चरण के तहत झारखंड में घर घर सर्वे का कार्य शुरू हो गया। पहली बार डिजिटल माध्यम से हो रही इस जनगणना में स्वगणना के बाद प्रगणक और पर्यवेक्षक घर घर जाकर मकान सूचीकरण और मकानों की गणना करेंगे। यह अभियान 14 जून तक चलेगा। जनगणना निदेशालय के अनुसार राज्य के 24 जिलों में इस कार्य के लिए लगभग 65,000 प्रगणक और 10,858 पर्यवेक्षक तैनात किए गए हैं। पहले चरण में मकानों की गिनती, मकानों को नंबर देने और नक्शा तैयार करने का कार्य किया जाएगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 1 जुलाई से कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य कर दिया है। बोर्ड ने एक वक्तव्य में कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय विद्यालय शिक्षा पाठ्यक्रम 2023 के अनुरूप इन 3 भाषाओं में से कम 2 भारतीय मूल की भाषाएं होनी चाहिए। सीबीएसई ने स्पष्ट किया है कि कक्षा 10वीं में तीसरी भाषा R3 के लिए कोई बोर्ड परीक्षा नहीं होगी और R3 के लिए सारा मूल्यांकन पूरी तरह से विद्यालय आधारित और आंतरिक होगा। जिला प्रशासन ने जेईई एडवांस परीक्षा 2026 के शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त आयोजन को लेकर रांची के परीक्षा केंद्रों के आसपास निषेधाज्ञा लागू की है। यह आदेश आज सुबह 6 बजे से रात 9:30 बजे तक प्रभावी रहेगा। जिला प्रशासन के अनुसार शहर के 2 परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में बीएनएसएस की धारा 163 के तहत प्रतिबंध लागू किया गया है। परीक्षा के दौरान विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी और पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। सिमडेगा पुलिस ने ऑपरेशन रेड हंट के तहत कार्रवाई करते हुए पीएलएफआई के धनेश्वर यादव उर्फ कारगिल को रांची से गिरफ्तार किया है। एसडीपीओ बैजू राव ने बताया कि वह बानो थाना का वारंटी है।
1: बानो थाना में एक पीएलएफआई के सक्रिय उग्रवादी संगठन के सदस्य करीब 10 वर्षों से फरार चल रहे थे, जिसे गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार कर उसे हिरासत में भेजा जा रहा है।
0: रांची में बढ़ती महंगाई के खिलाफ प्रदेश कांग्रेस ने अल्बर्टेका चौक पर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने पेट्रोलियम पदार्थों में मूल्य वृद्धि के लिए केंद्र को जिम्मेदार ठहराया।
2: तक 5 राज्य में चुनाव हुआ, तब तक किसी तरह का कोई वृद्धि नहीं हुआ। आज जैसे चुनाव खत्म हुआ, 5 राज्य का रिजल्ट आया, धनाधन पेट्रोल डीजल दूध आदि सीएनजी में दाम बढ़ा रही है।
0: इधर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने कहा कि कांग्रेस पार्टी लोगों को गुमराह कर रही है। उन्होंने कहा कि पेट्रोलियम पदार्थों के संकट से पूरा विश्व जूझ रहा है। प्रधानमंत्री ने महंगाई पर काफी नियंत्रण किया हुआ है। पेट्रोलियम पदार्थों पर 115 देशों में मूल्य वृद्धि हुई है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक सैंडल ATIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक हैंडल ATIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य भर में वट सावित्री का पावन पर्व पारंपरिक श्रद्धा और उल्लास के साथ कल मनाया गया। अखंड सौभाग्य और पति की लंबी उम्र की कामना के लिए महिलाओं ने निर्जला व्रत रखकर बरगद के वृक्ष की पूजा अर्चना की। महिलाओं ने आज सुबह पारण कर व्रत पूरा किया। कोडरमा थाना क्षेत्र के मिटको कॉलोनी में महिला की हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। कोडरमा के SP कुमार शिवाशीष ने बताया कि 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।
3: 14 मई 2026 को मिटको कॉलोनी में श्रीमती नेहा राज हत्या कर दिया गया था। टोटल 2 अक्यूज हैं इस मर्डर के केस की। इसका कारण ये था कि जो मृतिका हैं, उनके हस्बैंड शंभू राणा का इलिसिट अफेयर चल रहा था देवंती देवी के साथ। जब इसके बारे में देवंती देवी के हस्बैंड को पता चला तो उन्हें द्वेष के भावना में आके हत्या कर दिया गया।
0: मौसम विभाग के अनुसार 19 मई तक पलामू, गढ़वा और लातेहार में लू चलने की संभावना है। वहीं आज और कल राज्य के अन्य जिलों में बादल छाए रहने, 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने तथा गर्जन के साथ बारिश होने की संभावना है। इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय हॉकी के प्रति समर्थन

0: देश की भी मेहनत रही है। हमारी विमेन हॉकी टीम बीते कुछ समय से शानदार परफॉर्मेंस कर रही है। इसमें कोच मरीन का अहम रोल है कि वर्ल्ड कप जो भी कोई जीते, लेकिन इतना पक्का है कि इस ओलंपिक में भारत और नीदरलैंड की दोस्ती जरूर जीतेगी।
1: झारखंड स्टेट कबड्डी एसोसिएशन की विशेष आम सभा की बैठक आज सुबह 10 बजे से जमशेदपुर में आयोजित की जाएगी। झारखंड स्टेट कबड्डी एसोसिएशन ने बताया कि संगठनात्मक गतिविधियों और आगामी कार्यक्रमों को लेकर बैठक में चर्चा की जाएगी। हजारीबाग जिला चेस एसोसिएशन द्वारा चौथा HDC ऑल इंडिया ओपन फाइट रेटिंग टूर्नामेंट 2026 का आयोजन हजारीबाग में किया जा रहा है। विनोबा भावे विश्वविद्यालय के मल्टीपर्पज हॉल में विधायक प्रदीप प्रसाद ने इसका उद्घाटन किया, जिसमें देशभर से 800 से अधिक खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। टूर्नामेंट दो चरणों में होगा। पहला चरण 20 मई तक ओपन वर्ग के लिए और दूसरा चरण 21 से 24 मई तक 1800 से कम रेटिंग वाले खिलाड़ियों के लिए होगा, जिसमें कुल 6,11,000 रुपए के पुरस्कार रखे गए हैं। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने बालू घाटों के लीज मंजूरी और नीट पेपर लीक मामले में गिरफ्तारी की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने लिखा है, नीट UG पेपर लीक मामले में महिला लेक्चरर गिरफ्तार। दैनिक भास्कर ने लिखा है, 6 बड़े बालू घाटों के लीज डीड फाइनल, मॉनसून से पूर्व रिकॉर्ड स्टॉक की तैयारी। हिंदुस्तान ने झारखंड के अदालतों में हाईब्रिड मोड में सुनवाई की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण ने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से लिखा है, JTET से खुलेगा शिक्षकों के सहायक आचार्य बनने का रास्ता। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र से जनगणना में अलग सरना धर्म कोड की मांग दोहराते हुए कहा, आदिवासी समाज की पहचान के लिए अलग धर्म कोड जरूरी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन किया अनिवार्य। JEE एडवांस्ड परीक्षा को लेकर रांची में निषेधाज्ञा लागू। परीक्षा के दौरान विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी और पुलिस बलों की प्रतिनियुक्ति। पलामू, गढ़वा और लातेहार को छोड़ राज्य के अन्य जिलों में आज और कल मेघ गर्जन के साथ होगी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय महिला हॉकी के विकास में योगदान के लिए नीदरलैंड की कोच की सराहना की, देशवासियों से भारतीय टीम के समर्थन की अपील। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

कोई श्रीमान भरत गुप्ता करके हैं, माई गॉड पर एक मेल भेजा। रेलवे में जा रहे थे, उसका अपना अनुभव कहा। उन्होंने कहा साहब मैं पहले भी रेलवे में जाता था, इस बार भी रेलवे में गया, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि रेलवे में हर पैसेंजर, रेलवे में लोग खाते पीते रहते हैं, कागज वागज फेंकते रहते हैं, बोले कोई फेंकता नहीं था। इतना ही नहीं, ढूंढते थे भाई कहीं डिब्बे में डस्टबिन है क्या, हम कूड़ा कचरा उसमें डालें। और जब देखा कि भाई रेलवे में ये व्यवस्था तो नहीं है, तो उन्होंने खुद ने एक कोने में ही सब लोगों ने अपना कूड़ा कचरा इकट्ठा कर दिया। बोले ये मेरे लिए बहुत ही सुखद अनुभव था, मैं भरत जी का आभारी हूँ कि उन्होंने ये जानकारी मुझे पहुँचाई। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा प्रभाव छोटे छोटे बच्चों में हुआ है। सैकड़ों परिवार ये बात की चर्चा करते हैं कि हमारा बच्चा अभी कहीं चॉकलेट खाता है तो कागज तुरंत उठा लेता है। मैंने अभी एक सोशल मीडिया में किसी का देखा था, किसी ने लिखा था आज का मेरा हीरो, और आज का मेरा हीरो में उन्होंने किसी बच्चे की तस्वीर दी थी और कहा था कि वो बच्चा खुद इन दिनों कहीं पर भी कूड़ा कचरा है तो उठा लेता है, स्कूल जाता है तो उठा लेता है, अपने आप कर रहा है। आप देखिए सबको लगने लगा है कि हमारा देश, हम गंदा नहीं करेंगे, हम गंदगी में इजाफा नहीं करेंगे, और जो भी करते हैं वो शर्मिंदगी महसूस करते हैं, तुरंत कोई न कोई उनको टोकने वाला मिल जाता है। मैं इसे शुभ संकेत मानता हूँ।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: मुझे सतना मध्य प्रदेश के

रॉक ऑन। इस फिल्म का ये गीत आपने सुना फरहान अख्तर और रमन महादेवन की आवाजों में। संगीत निर्देशन किया था शंकर एहसान लॉय ने और गीत लिखा था जावेद अख्तर ने।

मलंग फिल्म का ये गीत आपने सुना वेद शर्मा की आवाज में। संगीत निर्देशन किया था वेद शर्मा ने और गीत लिखा था कुणाल वर्मा ने। इसी के साथ ही श्रोताओं, फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 MHz पर। सुबह के 9 बजने ही वाले हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन की दो दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। ये यात्रा भारत और स्वीडन के बीच मजबूत होते गठबंधन में ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंसन के साथ वार्ता करेंगे, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। एक रिपोर्ट।
1: दुनिया की सबसे नवाचारी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल स्वीडन को भारत की डिजिटल प्रतिभा और तकनीकी क्षमता के साथ स्वाभाविक साझेदारी मिलती है। वर्तमान में भारत में 280 से अधिक स्वीडिश कंपनियां सक्रिय हैं, जबकि लगभग 75 भारतीय कंपनियों ने स्वीडन में अपनी उपस्थिति स्थापित करी है। भारत यूरोपियन संघ फ्री ट्रेड समझौता भारतीय निर्यात के लिए एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। रक्षा और सुरक्षा सहयोग भी अब दोनों देशों की साझेदारी का एक प्रमुख स्तंभ बन चुका है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
0: आकाशवाणी से विशेष बातचीत में स्वीडन में भारतीय राजदूत अनुराग भूषण ने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करेगी। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटिन के बीच हेग में व्यापक विचार विमर्श के बाद दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, जल प्रबंधन, स्वच्छ ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के लिए कई समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए। संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने की घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में भारत नीदरलैंड के संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है।
2: हमें नीदरलैंड की एक्सपर्टीज और भारत की स्पीड और स्केल को हर क्षेत्र में जोड़ना चाहिए। इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट, सस्टेनेबिलिटी और डिफेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग को नए आयामों तक पहुंचाना है। इसी साझा दृष्टि के साथ भारत नीदरलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं।
0: नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटिन ने भी भारत के साथ संबंधों के बढ़ते महत्व पर जोर दिया और आर्थिक और रणनीतिक क्षेत्रों में मजबूत सहयोग का समर्थन किया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग एएसआई ने मध्य प्रदेश के धार जिले में भोजशाला परिसर में हिंदुओं को पूजा पाठ और अन्य कार्यक्रमों के लिए प्रवेश की अनुमति दे दी है। इससे पहले मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भोजशाला को देवी सरस्वती का मंदिर घोषित किया था। उच्च

0: न्यायालय की इंदौर पीठ ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के 7 अप्रैल 2003 के उस आदेश को भी रद्द कर दिया था जिसमें मुसलमानों को हर शुक्रवार को भोजशाला परिसर के भीतर नमाज अदा करने की अनुमति दी गई थी। पीठ ने कहा कि मुस्लिम समुदाय जिले में मस्जिद निर्माण के लिए अलग से भूमि आवंटन के लिए राज्य सरकार से संपर्क कर सकता है। कीमती धातुओं पर भारी सीमा शुल्क लगाने के कुछ ही दिन बाद सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा कि सोने और प्लैटिनम से मढ़ी हुई चांदी सहित चांदी के आयात की नीति को मुक्त से प्रतिबंधित करके संशोधित कर दिया गया है। सरकार ने बुधवार को कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। प्रतिबंधित श्रेणी के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं के आयात के लिए सरकारी लाइसेंस की आवश्यकता होती है। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में विमानन ईंधन पर मूल्य वर्धित कर वैट 25% से घटाकर 7% करने का निर्णय लिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि ये निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संपर्क और आर्थिक गतिविधियों को मजबूत करने के अनुरूप लिया गया है। एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति ने कल बेंगलुरु में राजनीतिक दलों वैधानिक संस्थाओं और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों से गहन विचार विमर्श किया। समिति के सभापति पीपी चौधरी ने कहा कि कई राज्यों के यात्रा के दौरान समिति आपत्तियां सुझाव एकत्र कर रही है। इससे जुड़ी चुनौतियों पर उन्होंने कहा कि देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए कुछ राज्यों के विधानसभाओं को निर्धारित समय से पहले भंग करना होगा और दल बदल विरोधी कानून अविश्वास प्रस्ताव तथा राष्ट्रपति शासन के माध्यम से समस्याओं का निदान करना पड़ेगा। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया के लियो रोली कार्नोडो और जेनेल मार्टिन की जोड़ी से होगा। आईपीएल में आज धर्मशाला में दोपहर 3:30 बजे पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हिंदी में समाचार अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 9:05 हुए हैं। कार्यक्रम सुरंजना के लिए करें बस जरा सा इंतजार।
2: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें नया जोश है। देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

सुरंजना कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। स्वीकार करें आपकी दोस्त नेहा का सप्रेम नमस्कार। सबसे पहले तो मैं बता दूं श्रोताओं कि आज है रविवार और आज के दिन आप सुनते हैं सुरंजना कार्यक्रम में शीर्षक गीत।

कहते हैं सुख बांटने पर दुगना होता है, जबकि दुख आधा ही रह जाता है। सुख दुख की ऐसी अनूठी साझेदारी रिश्तों के बिना कैसे संभव है? जीवन की हर सफलता, एहसास और भावनाएं सब बेकार हैं यदि कोई उन्हें बांटने वाला ना हो। जी हाँ श्रोताओं, जीवन में अच्छे साथी हो तो जीवन की ऊंचे नीचे डगर में चलना आसान हो जाता है ना?

अगर कोई कहे कि उसे किसी साथी की ज़रूरत नहीं, तो कहीं ना कहीं वो अपने आप से साफ झूठ बोल रहा होता है। हर किसी को अपने जीवन में अपने अनुभवों को, अपनी भावनाओं को साझा करने की ज़रूरत महसूस होती है। जी हाँ श्रोताओं, ज़रूरी नहीं कि साथी कोई इंसान ही हो। सच्ची साथी किताबें भी हो सकती है, जो हर कदम पर अपनी साथियों का मार्गदर्शन करती है। किसी के सच्चे साथी पशु पक्षी, पेड़ पौधे या पर्यावरण भी हो सकते हैं।

जब हम अकेलापन महसूस करते हैं या फिर तनाव हमें घेरने लगती है तो सलाह दी जाती है कि घर पर पेट्स रख लें या फिर कुछ समय बागवानी में बिताएं। आजकल व्यस्तता भरे जीवन में लोग थोड़ा थोड़ा समय पर्यटन के लिए भी निकालने लगे हैं। कहते हैं व्यस्तता से कुछ पल निकालकर हरी भरी वादियों में समय बिताने से मन भी हरा भरा हो जाता है।

हर किसी के मन में कोई ना कोई राज छुपा होता है श्रोताओं, और हर राज भरोसे की जमीन पर खड़ी होती है, वही जो आपके साथी के पास मौजूद होती है।

और अब समय हो चला है श्रोताओं आपसे विदा लेने का, तो मुझे यानी आपकी दोस्त नेहा को दीजिए अनुमति। नमस्कार। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर, और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम पल्लव।

0: जय हिंद बच्चों।
1: जय हिंद दीदी।
0: सभी श्रोता बच्चों का कार्यक्रम में स्वागत। और पल्लव के आज के इस अंक के साथ हमेशा की तरह मैं आपकी सीमा दीदी। बच्चों, गर्मी की छुट्टियां शुरू हो चुकी हैं और अब समय है बाहर कहीं घूमने जाने का। तो आज हम यात्रा पर जाते वक्त सुरक्षा संबंधी बातों पर गौर करेंगे। आज दूर संचार ने विश्व को चमत्कारिक रूप से छोटा कर दिया है। संसार के किसी भी कोने में घटित महत्वपूर्ण घटना को सर्वविदित करने में दूरसंचार की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध हो चुकी है। आज विश्व दूरसंचार दिवस है। भारत में दूरसंचार क्रांति, इस विषय पर भी आज के कार्यक्रम में चर्चा होगी। बच्चों, सांस्कृतिक विरासत किसी समाज की आत्मा होती है। ये न केवल उसकी कला, संगीत, नृत्य, साहित्य और परंपराओं में झलकती है, बल्कि भाषा, रीति रिवाज, स्थापत्य और जीवन शैली में भी निहित होती है। अपनी सांस्कृतिक धरोहर को कैसे सहेज सकते हैं, इस विषय पर भी आज के कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। बच्चों, क्या आप जानते हैं आदिम जनजातियों में ढोल या नगाड़ों की सांकेतिक ध्वनियों द्वारा संदेश दिए जाते थे और फिर शांति के संदेश वाहक कबूतरों ने भी काफी समय तक संवाद वाहक की भूमिका निभाई। धीरे धीरे एक व्यवस्थित डाक प्रणाली का विकास हुआ। वैज्ञानिक प्रगति के साथ अनेक संचार उपकरणों का आविर्भाव हुआ। सारा विश्व आज दूर संचार क्रांति से गुजर रहा है। आज भारत में दूरभाष ही दूरसंचार का सबसे व्यापक और सुलभ साधन है। आज हर एक व्यक्ति की जेब में मोबाइल फोन उपलब्ध है। टीवी और रेडियो भी दूरसंचार के महत्वपूर्ण साधन है। दूरसंचार के क्रांतिकारी प्रसार ने भारत के जनजीवन को गहराई से प्रभावित किया है। बच्चों, साधारण गृहस्थ से लेकर व्यवसायी, चिकित्सक,

0: वैज्ञानिक और प्रशासन तंत्र सभी इससे लाभान्वित हो रहे हैं। हमारे देश का विश्व की आर्थिक शक्ति बनने का सपना भी दूर संचार की सर्व सुलभता पर निर्भर है। मोबाइल, फैक्स, ईमेल तथा इंटरनेट जैसे साधनों ने उद्योग, व्यापार में तथा समस्त विश्व से नवीनतम संपर्क में महत्वपूर्ण योगदान किया है। आज दूर संचार के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2015 में शुरू की गई डिजिटल इंडिया पहल 3 प्रमुख स्तंभों पर केंद्रित है: अवसंरचना विकास, डिजिटल सेवाएं और अनुप्रयोग तथा डिजिटल साक्षरता और कौशल विकास। भारत नेट और 4G संतृप्ति परियोजना जैसी पहलों के माध्यम से विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च गति इंटरनेट कनेक्टिविटी का विस्तार करने का भी प्रयास जारी है। बच्चों, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई भारत नेट परियोजना का उद्देश्य देश के ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करना है। डिजिटल इंडिया पहल के तहत शुरू की गई इस परियोजना का लक्ष्य अधिक से अधिक ग्राम पंचायतों को हाई स्पीड ब्रॉडबैंड इंटरनेट से जोड़कर डिजिटल विभाजन को कम करना है। इस परियोजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल कनेक्टिविटी लाकर व्यक्तियों को सशक्त बनाना, ई गवर्नेंस को बढ़ावा देना, डिजिटल सेवा वितरण को सक्षम बनाना और सामाजिक आर्थिक विकास को गति देना है। आज हमारे देश के भीतर दूर संचार उपकरणों और यंत्रों के उत्पादन को बल मिला है, जिससे स्वदेशी दूर संचार उद्योग का विकास हुआ है। सरकार की दूर संचार क्रांति की सबसे उल्लेखनीय उपलब्धियों में से एक है भारत का मोबाइल फोन के शुद्ध आयातक से शुद्ध निर्यातक बनना। दूर संचार क्रांति की अभूतपूर्व सफलता का प्रभाव अन्य आर्थिक क्षेत्रों पर भी पड़ा है। भारत का प्रशंसित आईटी और सॉफ्टवेयर उद्योग सुदृढ़ दूरसंचार नेटवर्क की बदौलत ही शिखर पर पहुंचा है। बच्चों, दूरसंचार उद्योग ने आज किफायती दरों पर उन्नत तकनीक से संचालित सेवाएं प्रदान करके लाखों मेहनतकश नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार किया है और उनकी आय बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत में दूरसंचार क्रांति, इस बारे में बच्चों अभी हम चर्चा कर रहे थे और अब आइए सुनते हैं ये गीत।
1: नाव चली, नानी की नाव चली, नीना की नानी की नाव चली, लंबे सफर पे आओ चली, भागो चली, जागो चली, आवा ये कैसे चले, लाओ पैसे चले, आहा, खड़े हो जाओ, तीन तीन की लाइन में खड़े हो जाओ, लाइन में खड़े हो जाओ, सब खड़े, ला ला ला ला ला, ला। लाइन में लाइन में लाइन में लाइन में लाइन में लाइन में तुम भी खड़ी हो जाओ, जा जा जा जा उधर लाइन में, हाँ तुम भी आओ ना।
2: मेरे पास पैसा नहीं है।
1: पैसे नहीं है तो ये लो, लाओ पैसे और लाइन में खड़ी हो जाओ, जा पहले वो तीन फिर दूसरे तीन, हाँ तुम भी आओ, पहले लाइन में चले आओ। अब शुरू करते हैं, एक दो। नाव चली, नानी की नाव चली, नीना की नानी की नाव चली, लंबे सफर पे सामान घर से निकाले गए, नानी के घर से निकाले गए, इधर से उधर से निकाले गए और नानी की नाव में डाले गए।
2: क्या डाले गए?
1: एक छड़ी, एक घड़ी, एक झाड़ू, एक लाड़ू, एक तंदूक, एक बंदूक, एक तलवार, एक तलवार, एक घोड़े की जीन, एक ढोलक, एक बीन, एक घोड़े की नाल, एक भीवर का जाल, एक लहसुन, एक आलू, एक तोता, एक भालू, एक डोरा, एक डोरी, एक बोरा, एक बोरी, एक डंडा, एक झंडा, एक हंडा, एक अंडा, एक केला, एक आम, एक पक्का, एक कच्चा, और टोकरी में एक बिल्ली का बच्चा। फिर एक मगर ने पीछा किया, नानी की नाव का पीछा किया, नीना की नानी की नाव का पीछा किया।
2: क्या हुआ?
1: चुपके से, पीछे से, ऊपर से, नीचे से एक एक सामान खींच लिया, एक बिल्ली का बच्चा,
3: एक केला, एक आम, एक पक्का, एक कच्चा, एक अंडा, एक हंडा, एक झंडा, एक डंडा, एक बोरी, एक बोरा, एक डोरी, एक डोरा, एक तोता, एक भालू, एक लहसुन, एक आलू, एक घीवर का जाल, एक घोड़े की नाल, एक ढोलक, एक दीन, एक घोड़े की जीन, एक तलवार, एक तलवार, एक बंदूक, एक बंदूक, एक लाडू, एक झाड़ू, एक झड़ी, एक घड़ी।

0: इन छुट्टियों में पहाड़ों पर जाना पसंद करेंगे या कोई अपने गांव जाएंगे या कोई धार्मिक स्थल। बिल्कुल, घूमने से न केवल दुनिया के अलग अलग रूप देखने को मिलते हैं बल्कि खुद को पहचानने का भी मौका मिलता है। अलग अलग जगहों के लोगों से मिलना, उनसे बातें करना, उनसे दोस्ती करना, ये एक अनोखा अनुभव होता है। जिंदगी में आने वाले चुनौतियों का सामना करने के लिए आप तैयार रहते हैं, इसलिए यात्रा पर जाते वक्त हमें कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अपनी जरूरी चीजें जैसे कपड़े, जूते, गर्म कपड़े, छाता, रेनकोट, टॉर्च, मोबाइल चार्जर, दवाएं, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसे हमें जरूर साथ रखना चाहिए। सूखे घर के नाश्ते के साथ आधार कार्ड, टिकट, एटीएम कार्ड भी रखना जरूरी है। ये जरूरी चीजें तो आपके माता पिता साथ रखेंगे ही, लेकिन आइए बच्चों आपको बता दें कि आपको यात्रा के दौरान सुरक्षा का पालन कैसे करना है। कभी भी अनजान जगहों में अपनों का साथ ना छोड़ें, या कोई कुछ खाने को दे तो ना ले, हमेशा अपनों के साथ रहें। अगर आप वन की सैर कर रहे हैं तो जंगली जानवरों के अधिक समीप ना जाएं, उन्हें छेड़े नहीं या उन्हें पत्थर ना मारें। अगर आप नदी या सी बीच पर जा रहे हैं तो गहरे पानी में ना जाएं। इसी प्रकार नाव की सैर पर भी सावधानी बरतें। कई बार मोबाइल से तस्वीर निकालते वक्त या रील बनाते समय दुर्घटना घट जाती है, इसलिए बच्चों हमें इन बातों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। कभी भी सुनसान जगहों में हमें अकेले नहीं जाना चाहिए। अपने पास अपने माता पिता का मोबाइल नंबर जरूर रखें ताकि कभी भी अचानक आपका उनसे साथ छूट जाए तो आप कॉल कर उन्हें अपना स्थान बता सकें। तो बच्चों यात्रा पर जाते वक्त हमें इन कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। और अब आइए कुछ बच्चे इन छुट्टियों में कहाँ जा रहे हैं उनसे बात करते हैं।
1: आपका नाम क्या है?
2: मेरा नाम खुशी है।
1: कौन से स्कूल में है आप?
2: काव्यता ग्लोबल स्कूल।
1: गर्मी छुट्टी चल रही है, आप कहीं घूमने जा रहे हैं या घर पर ही हैं?
2: मैं इस बार नानी घर घूमने जा रही हूँ।
1: नानी घर कहाँ है आपका?
2: नानी घर कोलकाता में।
1: अच्छा, तो कब निकल रहे हैं आप नानी घर?
2: इस संडे।
1: कौन कौन है नानी घर में आपके? कैसे स्पेंड करिएगा आप छुट्टी नानी घर में?
2: मेरे नानी घर में नानी, मामा और मामी है।
1: हाँ?
2: पहले दो दिन तो हम लोग मासी के घर जाएंगे, फिर बाकी के दिन नानी के घर फ्लैट में पार्क कर जहाँ मैं लोग घूमने जाती हूँ। मेरे नानी के उधर बहुत सारे घूमने का जगह है, जैसे विक्टोरिया मेमोरियल, वेलोर मठ, दक्षिणेश्वर काली मंदिर, उधर हम लोग कभी कभी घूमने जाते हैं शाम को। और मुझे जगह जगह जाके लोगों के बारे में जानना बहुत अच्छा लगा, और इस बार मैं बहुत एक्साइटेड हूँ अपनी छुट्टी बिताने के लिए।
1: अपने दोस्तों से कुछ कहना चाहेंगी?
2: मैं अपने दोस्तों से कहना चाहती हूँ कि वो लोग अपने गर्मी छुट्टी मजे से बिताए और इस समय फोन में अपना टाइम बर्बाद ना करे और अपना शौक पूरा करे, बाहर खेलने निकले, पढ़ाई करे, घूमने जाए, क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबॉल, जो भी उनके पसंदीदा खेल है वो सब खेले, ड्रॉइंग करे। जो
1: आप कहना चाहती हैं अपने दोस्तों से कि घर के बाहर निकले, घर में ही ना बैठे, है ना? और तरह तरह के जो खेल हैं वो मैदान में जाकर, बाहर जाकर खेले, है ना?
2: हाँ।
1: खुशी, आपसे बात कर बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद।
1: आपका नाम क्या है?
3: मेरा नाम नील है।
1: कौन से स्कूल में हैं आप?
3: कार्मेल जूनियर कॉलेज।
1: नील, आप इस साल गर्मी की छुट्टी में कहाँ जा रहे हैं?
3: इस साल मैं पूरी जा रहा हूँ।
1: अच्छा, बहुत अच्छे। किसके साथ जा रहे हैं, कौन कौन जा रहा है?
3: मेरी मम्मी पापा और दो फैमिली है।
1: तो आप पहली बार जा रहे हैं पूरी?
3: नहीं, इसके पहले भी मैं चार बार गया हूँ।
1: चार बार गए हैं? ओह, तो आपको समुद्र देखना अच्छा लगता है?
3: बहुत।
1: क्या क्या करने वाले हैं? जैसे आप चार बार जा चुके हैं तो इसके पहले आपने क्या किया था और इस बार क्या करने वाले?
3: इसके पहले मैंने सी बीच में नहाया था, बहुत बढ़िया बढ़िया डिशेस खाई थी।
1: अच्छा,
3: इस बार और खुशियाँ मनाऊंगा।
1: आपके साथ आपके फ्रेंड्स भी जा रहे हैं, आपके एज के बच्चे भी हैं?
3: मेरे एज के बच्चे तो नहीं हैं, लेकिन कुछ दीदी भैया हैं।
1: अच्छा, तो आप उनके साथ अपना कीमती समय बिताएंगे, है ना?
3: हाँ।
1: अपने दोस्तों से आप क्या कहेंगे, कैसे टाइम स्पेंड करना चाहिए, गर्मी की छुट्टियों को कैसे बिताना चाहिए?
3: मैं यह कहना चाहूंगा मेरे दोस्तों को कि ड्रॉइंग या फिर कुछ बाहर खेलने जैसा कुछ एक्टिविटीज को खेलना चाहिए, लेकिन फोन को जस्ट अवॉइड करना चाहिए।
1: बहुत अच्छे नील, बहुत अच्छी बातें आपने कही अपने दोस्तों से जो आप यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं इस गर्मी छुट्टी में। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको।
3: धन्यवाद।
0: बहुत ही उत्साह और उमंग के साथ ये बच्चे गर्मी की छुट्टियों में घूमने जा रहे हैं। अभी हम इनसे बातचीत कर रहे थे बच्चों, तो देखा आपने कि नई जगहों पर जाकर हम नई ऊर्जा से भर जाते हैं तथा नई उमंग और उत्साह के साथ अपनी रूटीन काम में सम्मिलित हो जाते हैं। इससे हमारी कार्य क्षमता बढ़ती है और मानसिक तनाव भी कम हो जाता है। लेकिन आइए देखते हैं छुट्टियों में घर पर बच्चे क्या कुछ कर रहे हैं।

बच्चों, हर साल 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस या म्यूजियम दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य लोगों को इतिहास, संस्कृति और विरासत के प्रति जागरूक करना होता है। संग्रहालय सिर्फ पुरानी चीजों को संभाल कर रखने की जगह नहीं होते, बल्कि ये हमारी सभ्यता, कला और ऐतिहासिक घटनाओं की कहानी भी बताते हैं। संग्रहालय हमें इतिहास से जोड़ने का काम करते हैं। यहाँ जाकर नई पीढ़ी को भारतीय संस्कृति, स्वतंत्रता संग्राम और प्राचीन सभ्यताओं के बारे में जानकारी मिलती है। यही वजह है कि म्यूजियम दिवस पर संग्रहालय घूमना एक ज्ञानवर्धक और यादगार अनुभव बन सकता है। अगर आप इतिहास में रुचि रखते हैं तो संग्रहालय घूमना बेहतरीन विकल्प हो सकता है। यहाँ आपको प्राचीन मूर्तियाँ, ऐतिहासिक हथियार, दुर्लभ पेंटिंग्स, राजाओं के वस्त्र और कई अनमोल चीजें देखने को मिलेगी। लोग तो चले जाते हैं, लेकिन उनकी यादें हमेशा बनी रहती है। ये यादें भी कई तरह से संजोकर रखी जाती हैं। हमारे पूर्वजों ने अपनी यादों को सुंदर तरीके से संजोकर रखा, जिससे कि हम भी उनके बारे में जान सके। ऐसी कई चीजें हैं जो हमारे पूर्वज तो हमारे लिए रख कर गए, उसे नुकसान न पहुंचे इसके लिए कई संग्रहालय बना दिए गए, जो हमें अपने पूर्वजों को याद रखने में मदद करते हैं। बच्चों, संग्रहालयों की विशेषता और उनके महत्व को समझते हुए संयुक्त राष्ट्र ने 1983 में 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया, और इसका उद्देश्य आम जनता में संग्रहालयों के प्रति जागरूकता फैलाना और उन्हें इतिहास के प्रति जागरूक करना है। यहाँ हमारे पूर्वजों की अनमोल यादों को संजोकर रखा जाता है। किताबें, पांडुलिपियां, रत्न, चित्र, शिला चित्र और अन्य सामानों के रूप में तमाम तरह की वस्तुएं संग्रहालयों में हमारे पूर्वजों की यादों को जिंदा रखे हुए है। बच्चों, हर देश की संस्कृति को समझने में कई वस्तुएं विशेष योगदान निभाती है, जिन्हें संग्रहालयों में सुरक्षित रखा जाता है। हमारे देश में भी अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस पर तमाम तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इन कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य आम जनता, छात्रों एवं शोधार्थियों को विभिन्न संग्रहालयों में उपलब्ध समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की जानकारी देना है। 18 मई के दिन भारत सरकार के सभी संग्रहालयों में प्रवेश निःशुल्क कर दिया जाता है। आपको बता दें, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तहत देश में 40 से अधिक संग्रहालय हैं। बच्चों, भारतीय ज्ञान परंपरा की अमूल्य धरोहरों को संरक्षित करने और उन्हें आधुनिक युग के साथ जोड़ने की दिशा में भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने एक बड़ी पहल की है। ज्ञान भारतम मिशन के तहत सरायकेला खरसावां जिले में सदियों पुरानी पांडुलिपियों और हस्तलिखित दस्तावेजों का संरक्षण, डिजिटलीकरण और संधारण किया जाएगा। इस अभियान के तहत कम से कम 75 वर्ष पुरानी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक या धार्मिक महत्व की पांडुलिपियों को चिन्हित कर डिजिटल रूप में सुरक्षित किया जाएगा। देश भर में 1 करोड़ पांडुलिपियों को चिन्हित करने का लक्ष्य रखा गया है। इससे क्षेत्र की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत को नई पहचान मिलेगी। पुरानी पांडुलिपियां भोजपत्र, ताड़पत्र, ताम्रपत्र, कागज, कपड़ा या धातु पर लिखी हो सकती है। इसमें धार्मिक ग्रंथ, साहित्य, चिकित्सा, गीत, वंशावली, गद्य और पद सहित विविध विषयों के दस्तावेज शामिल होंगे। डिजिटलीकरण से आने वाली पीढ़ियां भारत की समृद्ध ज्ञान परंपरा से जुड़ सकेंगी और इस प्रकार हम अपनी सांस्कृतिक धरोहर को सहेज सकेंगे। बच्चों, भारत जैसे विविधताओं से भरे देश में कई ऐसे शानदार म्यूजियम हैं जहां आप जाना चाहेंगे। नई दिल्ली का राष्ट्रीय संग्रहालय, कोलकाता का भारतीय संग्रहालय और हैदराबाद का सालार जंग संग्रहालय प्रमुख है। ये संस्थाएं कला, पुरातत्व और इतिहास का अनूठा संग्रह प्रस्तुत करती हैं। बच्चों, भारत एक विशाल और विविधताओं से भरा देश है। यहाँ भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने वाले, भिन्न भिन्न धर्म के लोग भिन्न भिन्न अनुष्ठान करते देखे जाते हैं। आप इन विविधताओं को उनके खान पान की आदतों तथा वेशभूषा के स्वरूपों में भी देख सकते हैं। यहाँ संगीत और नृत्य के अनेक रूप आपको देखने को मिलेंगे।

बच्चों, आज के इस कार्यक्रम में हमने भारत में दूर संचार क्रांति पर चर्चा की, अपने सांस्कृतिक धरोहर को सहेजें इस पर भी हमने आपको जानकारी दी, और यात्रा पर जाते वक्त सुरक्षा संबंधी बातों की भी हमने चर्चा की। साथ ही कुछ बच्चों ने अपने समर ट्रिप के बारे में भी हमें बताया। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता एस्थर चंपी, और इसके साथ ही बच्चों आज का कार्यक्रम बस यहीं तक। सीमा दीदी को दीजिए अनुमति। जय हिंद बच्चों।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम पल्लव।
1: सुनिए हमारा खास कार्यक्रम हेलो आपकी फरमाइश हर मंगलवार रात 10 बजे से 11 बजे तक FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। और हाँ, अपनी

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: FM 102.4 MHz पर आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है। सुबह के 10 बजने ही वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार बारी बारी से, और 10:10 पर होगा विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन की 2 दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। ये यात्रा भारत और स्वीडन के बीच मजबूत गठबंधन में ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ वार्ता करेंगे। इसमें द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। एक रिपोर्ट।
1: दुनिया की सबसे नवाचारी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल स्वीडन को भारत की डिजिटल प्रतिभा और तकनीकी क्षमता के साथ स्वाभाविक साझेदारी मिलती है। वर्तमान में भारत में 280 से अधिक स्वीडिश कंपनियां सक्रिय हैं, जबकि लगभग 75 भारतीय कंपनियों ने स्वीडन में अपनी उपस्थिति स्थापित करी है। भारत यूरोपियन संघ फ्री ट्रेड समझौता भारतीय निर्यात के लिए एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। रक्षा और सुरक्षा सहयोग भी अब दोनों देशों की साझेदारी का एक प्रमुख स्तंभ बन चुका है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
0: आकाशवाणी से विशेष बातचीत में स्वीडन में भारतीय राजदूत अनुराग भूषण ने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करेगी। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटेन के बीच हेग में व्यापक विचार विमर्श के बाद दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, जल प्रबंधन, स्वच्छ ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर भी किए गए। संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने की घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में भारत नीदरलैंड्स के संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है।
2: हमें नीदरलैंड की एक्सपर्टीज और भारत की स्पीड और स्केल को हर क्षेत्र में जोड़ना चाहिए। इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट, सस्टेनेबिलिटी और डिफेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग को नए आयामों तक पहुंचाना है। इसी साझा दृष्टि के साथ भारत नीदरलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं।
0: नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटेन ने भी भारत के साथ संबंधों के बढ़ते महत्व पर जोर दिया। उन्होंने आर्थिक और रणनीतिक क्षेत्रों में मजबूत सहयोग का समर्थन किया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ASI ने मध्य प्रदेश के धार जिले में भोजशाला परिसर में हिंदुओं को पूजा पाठ और अन्य कार्यक्रमों के लिए प्रवेश की अनुमति दे दी है। इससे पहले मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भोजशाला को देवी सरस्वती का मंदिर घोषित किया था। उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के 7 अप्रैल 2003 के उस आदेश को भी रद्द कर दिया, जिसमें मुसलमानों को हर शुक्रवार को भोजशाला परिसर के भीतर नमाज अदा करने की अनुमति दी गई थी। पीठ ने कहा कि मुस्लिम समुदाय जिले में मस्जिद निर्माण के लिए अलग से भूमि आवंटन के लिए राज्य सरकार से संपर्क कर सकता है। कीमती धातुओं पर भारी सीमा शुल्क लगाने के कुछ ही दिन बाद सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने कहा कि सोने और प्लेटिनम से बड़ी मड़ी हुई चांदी सहित चांदी के आयात की नीति को मुक्त से प्रतिबंधित करके संशोधित कर दिया गया। सरकार ने बुधवार को कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। प्रतिबंधित श्रेणी के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं के आयात के लिए सरकारी लाइसेंस की आवश्यकता होती है। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में विमानन ईंधन पर मूल्य वर्धित कर VAT 25% से घटाकर 7% करने का निर्णय लिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि ये निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संपर्क और आर्थिक गतिविधियों को मजबूत करने के लिए लिया गया है। एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति ने कल बेंगलुरु में राजनीतिक दलों, वैधानिक संस्थाओं और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों से गहन विचार विमर्श किया। समिति के सभापति PP चौधरी ने कहा कि देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए कुछ राज्यों की विधानसभाओं को निर्धारित समय से पहले भंग करना होगा। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया के लिया रोली कॉर्निलो और डेनियल मार्टिन की जोड़ी से होगा। और IPL क्रिकेट में आज धर्मशाला में दोपहर बाद 3:30 बजे से पंजाब किंग्स का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। शाम 7:30 बजे से दिल्ली में राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स आमने सामने होंगे। प्रतियोगिता में कल रात कोलकाता नाइट राइडर्स ने गुजरात टाइटंस को 29 रन से हरा दिया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटिन के बीच विचार विमर्श के बाद दोनों देशों ने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी दो दिन की स्वीडन यात्रा पर आज गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। अमरीका और नाइजीरिया की सेनाओं ने इस्लामिक स्टेट के वरिष्ठ कमांडर अबू बिलाल अल मिनुक्यू को मार गिराया। बुल्गारिया ने ऑस्ट्रिया के वियना में आयोजित यूरोविजन सॉन्ग कॉन्टेस्ट 2026 में सबसे अधिक वोट प्राप्त करके जीत हासिल की। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशियाई जोड़ी से होगा। और टेनिस में विश्व के नंबर एक खिलाड़ी यानिक सिनर इटली ओपन के फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटिन के बीच हेग में व्यापक विचार विमर्श के बाद दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, जल प्रबंधन, स्वच्छ ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के लिए कई समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए। संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने की घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में भारत नीदरलैंड्स के संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है।
1: हमें नीदरलैंड की एक्सपर्टीज और भारत की स्पीड और स्केल को हर क्षेत्र में जोड़ना चाहिए। इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट, सस्टेनेबिलिटी और डिफेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग को नए आयामों तक पहुंचाना है। इसी साझा दृष्टि के साथ भारत नीदरलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं।
0: नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटिन ने भी भारत के साथ संबंधों के बढ़ते महत्व पर जोर दिया और आर्थिक और रणनीतिक क्षेत्रों में मजबूत सहयोग का समर्थन किया। पांच देशों की यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी ने नीदरलैंड्स के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया पिछले कुछ समय से कोविड महामारी, वर्तमान में जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की भूमि बनकर उभर रहा है।
1: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशिएंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नीदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
0: प्रधानमंत्री मोदी आज स्वीडन की दो दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। श्री मोदी स्वीडन के

0: प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ वार्ता करेंगे, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। एक रिपोर्ट।
1: दुनिया की सबसे नवाचारी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल स्वीडन को भारत की डिजिटल प्रतिभा और तकनीकी क्षमता के साथ स्वाभाविक साझेदारी मिलती है। वर्तमान में भारत में 280 से अधिक स्वीडिश कंपनियां सक्रिय हैं, जबकि लगभग 75 भारतीय कंपनियों ने स्वीडन में अपनी उपस्थिति स्थापित करी है। इस यात्रा का एक विशेष आकर्षण यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री का संबोधन है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री और यूरोपियन आयोग के अध्यक्ष के साथ करेंगे। भारत यूरोपियन संघ फ्री ट्रेड समझौता भारतीय निर्यात के लिए एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है, जिससे वस्त्र, लेदर, इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों को व्यापक बाजार पहुंच मिलने की संभावना है। रक्षा और सुरक्षा सहयोग भी अब दोनों देशों की साझेदारी का एक प्रमुख स्तंभ बन चुका है। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गोथेनबर्ग यात्रा ऐतिहासिक विश्वास और भविष्य की साझेदारी के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु का कार्य कर रही है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
0: भारत और स्वीडन के बीच एक सदी से अधिक पुराना व्यापारिक और आपसी संबंध का समृद्ध इतिहास है, जो पारस्परिक सम्मान, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और अहिंसा के सिद्धांत पर आधारित है। दोनों देशों के बीच गहरे संबंधों की पहचान कई ऐतिहासिक उपलब्धियों से होती है, जैसे नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर की 1926 में स्वीडन यात्रा की शताब्दी। आज ये संबंध अपनी सांस्कृतिक नींव से आगे बढ़कर एक मजबूत औद्योगिक और आर्थिक साझेदारी में तब्दील हो रहा है। आकाशवाणी से बातचीत में स्वीडन में भारतीय राजदूत अनुराग भूषण ने इस बात पर बल दिया कि प्रधानमंत्री की यात्रा दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करेगी।
2: We have a very long-standing partnership with Sweden on defense.
3: रक्षा क्षेत्र में स्वीडन के साथ हमारी साझेदारी बहुत पुरानी है, लेकिन अब ये रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता के संबंध से आगे बढ़कर रक्षा साझेदार के रिश्ते में बदल गया है। अब दोनों देश और दोनों देशों की कंपनियां मिलकर रक्षा उपकरण बनाने और उनके उत्पादन करने की दिशा में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल जैसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया और साथ ही देश में हुए बुनियादी ढांचे के विकास से इस प्रयास को और भी अधिक गति मिली है।
2: एंड ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दैट हैज हैपेंड।
0: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका और नाइजीरिया की सेनाओं ने इस्लामिक स्टेट के वरिष्ठ कमांडर अबू बिलाल अल मिनुकी को मार गिराया है। शुक्रवार रात को नाइजीरिया के लेक चाद बेसिन में सेना द्वारा एक संयुक्त सैन्य अभियान चलाया गया, जिसमें इस्लामिक स्टेट के वरिष्ठ कमांडर अबू बिलाल अल मिनुकी और अन्य आईएसआईएस के आतंकियों को मार गिराया गया। नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद तिनुबी ने इनके मारे जाने की पुष्टि की है। उन्होंने संयुक्त सैन्य अभियान की सराहना करते हुए इसे आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में प्रभावी सहयोग का महत्वपूर्ण उदाहरण बताया। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेक्सेथ ने कहा कि नाइजीरिया में शीर्ष आईएसआईएस आतंकियों का खात्मा देश में ईसाइयों की सुरक्षा में सहायक होगा। बुल्गारिया ने ऑस्ट्रिया के वियना स्थित वियना स्टथडिल में आयोजित यूरोविजन सॉन्ग कॉन्टेस्ट 2026 प्रतियोगिता जीत ली है। एक रिपोर्ट।
4: प्रतियोगिता में DARA के गीत बंग रंगा को सबसे अधिक वोट मिले। बुल्गारिया की 4 वर्ष में ये पहली जीत है। बुल्गारिया ने कुल 516 अंक के साथ प्रतियोगिता जीती है। यूरोविजन की परंपरा का पालन करते हुए पहले निर्णायक मंडल ने अंक दिए, उसके बाद जनता के टेली वोट के परिणाम घोषित किए गए। वहीं निर्णायक मंडल ने गीत बंग रंगा को 204 अंक दिए और टेली वोट के माध्यम से उसे 312 वोट मिले। लगभग 10 वर्ष में ऐसा पहली बार हुआ है जब निर्णायक मंडल और जनता ने एक ही विजेता को चुना है। इससे पहले ये प्रतियोगिता 2017 में कीव में हुई थी। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरेस ने इसराइल और लेबनान के बीच वाशिंगटन में अमेरिका की मध्यस्थता से हुए 45 दिन के युद्ध विराम के विस्तार की घोषणा का स्वागत किया है। श्री गुतरेस ने संबंधित देश से शत्रुता समाप्त करने, हमले रोकने और अंतर्राष्ट्रीय कानून तथा अपने दायित्वों का समुचित पालन करने का आग्रह किया। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार पल।
3: बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रेंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया के लियो रोली कॉर्नेडो और डेनियल मार्टिन की जोड़ी से होगा। और अगर बात करें टेनिस की तो भारत के सिद्धांत बंथिया और बुल्गारिया के अलेक्जेंडर डोंस्की की जोड़ी ने पुर्तगाल में ओइरास 4 ATP चैलेंजर 100 टूर्नामेंट में पुरुष डबल्स का खिताब अपने नाम कर लिया है। और टेनिस में ही इटली ओपन टूर्नामेंट में विश्व के नंबर एक खिलाड़ी इटली के यानिक सिनर फाइनल में पहुंच गए हैं। फाइनल में आज सिनर का सामना कैस्पर रूड से होगा। उधर बेंगलुरु में भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान सलीमा टेटे ने आगामी ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले टीम की तैयारियों पर जोर दिया है। भारतीय टीम 26 से 30 मई के बीच पर्थ हॉकी स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 मैच खेलेगी। और अगर बात करें क्रिकेट की तो आईपीएल में कल रात कोलकाता नाइट राइडर्स ने गुजरात टाइटंस को 29 रन से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज धर्मशाला में दोपहर 3:30 बजे से पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा और शाम 7:30 बजे से दिल्ली में राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स आमने सामने होंगे।
0: आज विश्व दूर संचार और सूचना समाज दिवस है। आज ही के दिन 1865 में पेरिस में संयुक्त राष्ट्र डिजिटल प्रौद्योगिकी एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना की गई थी। इस दिवस का उद्देश्य इंटरनेट और इससे जुड़ी तकनीकों के सकारात्मक उपयोग को बढ़ावा देना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येथेन के बीच विचार विमर्श के बाद दोनों देशों ने संबंधों की रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन की स्वीडन यात्रा पर आज गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। अमेरिका और नाइजीरिया की सेनाओं ने इस्लामिक स्टेट के वरिष्ठ कमांडर अबू बिलाल अल मिनुकी को मार गिराया। बुल्गारिया ने वियना में आयोजित यूरोविजन सॉन्ग कॉन्टेस्ट 2026 जीता। 10 वर्षों में ऑस्ट्रिया ने सबसे अधिक वोट हासिल किए। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशियाई जोड़ी से होगा। और टेनिस में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी यानिक सिन्हा ने इटली ओपन के फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: विश्व दर्पण समाचार अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से FM 102.4 MHz पर। सुबह के 10:20 हुए हैं। फिल्म संगीत के कार्यक्रम के लिए करें जरा सा इंतजार।
6: कम ब्याज पे लोन चाहिए वो भी ऐप से।
7: अनजान ऐप से बचें।
8: RBI कहता है
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 इयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

0: सुनिए हमारा खास कार्यक्रम हेलो आपकी फरमाइश, हर मंगलवार रात 10 बजे से 11 बजे तक एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। और हाँ, अपनी फरमाइश रिकॉर्ड करवाने के लिए हमें कॉल करें हर बुधवार दोपहर 12:30 बजे से 1 बजे के बीच। हमारा फ़ोन नंबर है 0657-296-0445। हेलो आपकी फरमाइश, संगीत वही जो आप चाहें।
1: और अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

अलका याग्निक, कविता कृष्णमूर्ति और कुमार सानू की आवाज में आपने सुना ये गीत। संगीत निर्देशन किया था विजू शाह ने और गीत लिखा था आनंद बख्शी ने। पिक्चर फिल्म का नाम

0: अभिजीत की आवाज में आपने सुना फिल्म शोला और शबनम का ये गीत। गीत लिखा था अंजान ने और संगीत निर्देशन किया था बप्पी लाहड़ी ने। फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप सुन रहे हैं श्रोताओं FM 102.4 MHz पर आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से।
1: बोल बोल के थक गया। क्या हुआ?
2: नया किडबैग चाहिए।
1: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
2: करेक्ट।
1: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर। चले ले आ गया नया किडबैग।
3: RBI कहता है
4: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।
5: हेलो मन भावन, आप सुनेंगे नए अंदाज में मेरी यानी निमिषा के साथ। प्रत्येक रविवार दिन के 11 बजे आकाशवाणी जमशेदपुर के विविध भारती केंद्र से 100.8 MHz पर। आपके फोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक बुधवार दोपहर 12 बजे से 12:30 बजे के बीच। हमारा टेलीफोन नंबर है 2960445 और कोड है 0657। तो आप भी जुड़ जाइए हेलो मनभावन कार्यक्रम से।

बाजीगर फिल्म का ये गीत आपने सुना कुमार सानू और अनु मलिक की आवाजों में। संगीत निर्देशन किया था अनु मलिक ने और गीत लिखा था देव कोहली ने। फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप सुन रहे हैं श्रोताओं FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से।

बाजे फिल्म का ये गीत आपने सुना उदित नारायण और साधना सरगम की आवाजों में। संगीतबद्ध किया था इसे अनु मलिक ने और गीत लिखा था मजरू सुल्तानपुरी ने।

0: राजा बाबू इस फिल्म का ये गीत आपने सुना अभिजीत की आवाज में। संगीत निर्देशन किया था आनंद मिलिंद ने और गीत लिखा था समीर ने। और इसी के साथ ही श्रोताओं, फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है।
1: जलवायु परिवर्तन हमें कैसे प्रभावित करता है, यह एक संदेश है यूनेस्को की तरफ से। जलवायु परिवर्तन मानव जीवन के लिए एक खतरा है, क्योंकि यह ताजा पानी कम करता है, भोजन की सप्लाई में रुकावट डालता है और वायु की क्वालिटी को खराब करता है। इसका असर खासकर गरीब लोगों पर पड़ता है। यह जलवायु परिवर्तन जैव विविधता को भी नुकसान पहुंचाता है और लोगों के स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा को खतरे में डाल देता है। गर्मी की लहर, बाढ़ और सूखा जैसे मौसम अब बार बार हो रहे हैं, जिससे लोगों को नुकसान होता है और उन्हें अपने घर छोड़ने पड़ते हैं। जलवायु परिवर्तन तटवर्ती और बाढ़ प्रभावित इलाकों से पलायन का बढ़ावा दे सकता है। कुछ क्षेत्रों को थोड़े समय के लिए लाभ हो सकता है, लेकिन अधिकतर को गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यह एक चौंकाने वाली बात है। करीब 10 लाख पौधे और जानवरों की प्रजातियां विलुप्त होने के किनारे पर हैं और कई तो अगले कुछ दशकों में ही गायब हो सकती हैं।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या माई गोव के ओपन फोरम में पोस्ट

ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है एफएम 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। दिन के 11 बजने ही वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, और इसके बाद यानी 11:05 पर सुनना ना भूलें कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन की दो दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। दोनों पक्ष व्यापार बढ़ाने, हरित प्रौद्योगिकी को अपनाने, यांत्रिक मेधा, उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप, मजबूत आपूर्ति श्रृंखला, रक्षा, अंतरिक्ष, जलवायु परिवर्तन और जनसंपर्क में सहयोग के नए रास्ते तलाशेंगे। दोनों प्रधानमंत्रियों के साथ साथ यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन भी यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को संबोधित करेंगी। श्री मोदी की इस यात्रा का उद्देश्य तकनीक में तेज परिवर्तनों और जटिल भू राजनीतिक चुनौतियों के दौर में सहयोग के नए आयाम तलाशना है। भारत और स्वीडन के बीच व्यापार 2025 में रिकॉर्ड 7.75 अरब डॉलर का रहा और वर्ष 2000 से 2025 के बीच स्वीडन से भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 2.8 अरब डॉलर से अधिक का रहा। प्रधानमंत्री मोदी और नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के बीच कल हेग में हुई वार्ता के बाद भारत और नीदरलैंड्स ने आपसी संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, जल प्रबंधन, स्वच्छ ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। सहयोग को मजबूत करने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर भी किए गए। संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने की घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में भारत नीदरलैंड्स के संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है।
1: हमें नीदरलैंड की एक्सपर्टीज और भारत की स्पीड और स्केल को हर क्षेत्र में जोड़ना चाहिए। इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट, सस्टेनेबिलिटी और डिफेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग को नए आयामों तक पहुंचाना है। इसी साझा दृष्टि के साथ भारत नीदरलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं।
0: नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटन ने भी भारत के साथ संबंधों के बढ़ते महत्व पर जोर दिया और आर्थिक तथा रणनीतिक क्षेत्रों में मजबूत सहयोग का समर्थन किया। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज से सीएनजी की कीमतों में 1 रुपए की बढ़ोतरी की है। अब दिल्ली में 1 किलोग्राम सीएनजी की नई दर 80.09 रुपए, गाजियाबाद और नोएडा में 88.70 रुपए और गुरुग्राम में 85.12 रुपए हो गई है। इस सप्ताह की शुरुआत में भी आईजीएल ने सीएनजी की कीमतों में 2 रुपए की वृद्धि की थी। कीमती धातुओं पर भारी सीमा शुल्क लगाने के कुछ ही दिनों बाद सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि सोने और प्लेटिनम से मढ़ी हुई चांदी सहित चांदी के आयात की नीति को मुक्त से प्रतिबंधित करके संशोधित कर दिया गया है। सरकार ने बुधवार को कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। प्रतिबंधित श्रेणी के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं के आयात के लिए सरकारी लाइसेंस की आवश्यकता होती है। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में विमानन ईंधन पर मूल्य वर्धित कर वैट 25% से घटाकर 7% करने का निर्णय लिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि ये निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संपर्क और आर्थिक गतिविधियों को मजबूत करने के अनुरूप लिया गया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ASI ने मध्य प्रदेश के धार जिले में भोजशाला परिसर में हिंदुओं को पूजा पाठ और अन्य कार्यक्रमों के लिए प्रवेश की अनुमति दे दी है। इससे पहले मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भोजशाला को देवी सरस्वती का मंदिर घोषित किया था। एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति ने कल बेंगलुरु में राजनीतिक दलों, वैधानिक संस्थाओं और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों से गहन विचार विमर्श किया। समिति के सभापति पीपी चौधरी ने कहा कि देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए कुछ राज्यों की विधानसभाओं को निर्धारित समय से पहले भंग करना होगा।

आंध्र प्रदेश में एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत युवा संगम का छठा चरण कल से शुरू हो गया। तिरुपति जिले के येरुपेडु में स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT के डॉक्टर एस वेंकटेश्वर ने इसका उद्घाटन किया। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान, बौद्धिक विकास और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम 27 मई तक चलेगा। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया के लिया रोली कार्नेंडो और डेनियल मार्टिन की जोड़ी से होगा। IPL क्रिकेट में आज धर्मशाला में दोपहर बाद 3:30 बजे से पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आमने सामने होंगे। इधर दिल्ली में शाम 7:30 बजे से राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मुकाबला खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

लिसनर्स, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। 11:05 हुए हैं श्रोताओं, समय है कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर का।

दोस्तों नमस्कार। जमशेदपुर के आज के इस अंक में आप सभी श्रोताओं का बेहद स्वागत और आपकी रेडियो दोस्त रिंकी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों कई बार इस भागती दौड़ती जिंदगी में हमारा मन बेचैन हो जाता है। कल की टेंशन, चिंता, घबराहट, ऐसा लगता है मानो समय हाथ से बस फिसलता जा रहा हो। इस भागदौड़ में हमें इस बात का डर रहता है कि कहीं हम पीछे ना छूट जाएं। पर दोस्तों कई बार ये डर हमारी कई चिंताओं का कारण भी होता है। ऐसे में हमारी पुरानी संस्कृति भी हमें ये बताती थी कि सुबह का समय प्रार्थना, ध्यान और पेड़ पौधों के बीच थोड़ा वक्त बिताने का होना चाहिए। खाने से पहले शांत होकर बैठना या रात को सोने से पहले अपने साथ दिन भर में हुए सभी अच्छे कामों के लिए, सभी अच्छी योजनाओं और अपॉर्चुनिटी के लिए शुक्रिया कहना, ये सिर्फ सोच नहीं थी, ये सिर्फ रिवाज या बातें नहीं थी, ये हमारे मन के लिए दवा हुआ करती थी। विज्ञान भी ये कहता है कि जब हम कोई छोटा सा काम रोज एक ही समय पर पूरे मन से करते हैं तो दिमाग को सिग्नल मिलता है कि सब ठीक है। अनिश्चित दुनिया में ये छोटी छोटी जो काम होते हैं, क्रियाएं होती हैं, वो हमारे लिए एक निश्चित जगह बना देती हैं। जैसे कि बचपन में माँ के आंचल में हमें छुप जाना अच्छा लगता था। बाहर भले ही तूफान हो लेकिन कहीं ना कहीं दिल के अंदर एक सुकून जरूर रहता था। तो ऐसे में ये बेहद जरूरी है कि कोई रोजाना कोई एक काम हम नियमित रूप से करें। और ये बात भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि जब कोई चीज़ आदत बनती है तो हमारे ये मन के लिए एक एंकर सा बन जाती है। जैसे समुंदर में जहाज को रोकने

वाला लंगर जो जिंदगी में तूफान आएगा पर हम बहेंगे नहीं। ऐसे में सुकून कहीं बाहर नहीं मिलता, वो हमारे दिल में है। बस हमें उसे रोज थोड़ा जगाने की जरूरत है, छोटे छोटे कामों को, कुछ पलों को छुपा कर अपने दिल में रखने की जरूरत है।

उदित नारायण अलका याग्निक की आवाज में। दोस्तों अभी आप सुन रहे थे मन फिल्म का ये गीत। और श्रोताओं अब आगे बात हम करेंगे विश्व दूरसंचार और सूचना दिवस। जी हाँ, आज के दिन हर साल यानी 17 मई को विश्व दूरसंचार सूचना समाज दिवस अर्थात वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे मनाया जाता है। यह दिन देश की डिजिटल क्रांति, ग्रामीण कनेक्टिविटी और मेड इन इंडिया तकनीकों को प्रदर्शित करने का एक बड़ा प्लेटफॉर्म बनता है। 17 मई 1865 को इंटरनेशनल टेलीग्राफ यूनियन बना था, तब 20 देश साथ आए थे और उसी की याद में 1969 से वर्ल्ड टेलीकॉम डे हम मनाते हैं। 161 साल पहले दुनिया ने पहली बार मिलकर कहा था, आओ एक दूसरे से बात करना और आसान बनाएं। और 2005 में यूएन ने कहा कि अब सिर्फ फोन नहीं, इंटरनेट भी जरूरी है, और तब से जुड़ गया इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे। इस साल 51st वर्ल्ड टेलीकॉम डे है। दोस्तों इसका उद्देश्य है शहर गांव में 5G तक पहुंचाना, साथ ही साथ इंटरनेट 5G और AOT क्या है लोगों को बताना, ताकि इसका सदुपयोग हो और गलत यूज ना हो। टेक्नोलॉजी का यूज लड़ाई नहीं, पढ़ाई, दवाई, खेती के लिए हो, जैसे हमने कोरोना काल में वीडियो कॉल से डॉक्टर से इलाज करवाया और हमारे छात्रों ने टीचर से ज्ञान लिया।

दोस्तों, हर इनोवेशन के दो पहलू ज़रूर होते हैं, एक अच्छा एक बुरा। तो टेक्नोलॉजी में भी वही हिसाब लग जाता है, जहाँ पे इसके फ़ायदे हैं कि हम घर बैठे मीलों की दूरी तय कर सकते हैं बस एक स्क्रीन के क्लिक करने पर। ज्ञान आसान हो चुका है, ऐसे कई प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि बहुत सारे जटिल प्रश्नों के उत्तर बच्चों के लिए हल करके देते हैं, उन्हें समझाते हैं, पढ़ना आसान हो गया है। साथ ही साथ रोजगार और व्यापार को बढ़ाने के कई आसान तरीके इसी इंटरनेट ने हमें दिए हैं। इसके अलावा किसी भी तरह के प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में, किसी भी तरह के आपदा के सिचुएशन में ये काफ़ी मददगार साबित होता है। उसी तरीके से इसके कुछ नुकसान भी हैं, जैसे इंटरनेट का लत लगना या स्मार्टफोन्स का लत लगना, बच्चों में ये आजकल खासकर बढ़ रहा है। इसके अलावा साइबर क्राइम भी बढ़ते हैं, और कहीं ना कहीं ये जो फ़ोन है वो और ये जो इंटरनेट है, इसने दुनिया से तो जोड़ दिया, लेकिन कई बार एक ही कमरे में रहने वाले लोगों को, एक ही घर में रहने वाले लोगों को एक दूसरे से दूर कर दिया। तो इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि इसका हम सदुपयोग करें और अपने आसपास के लोगों के साथ ज़्यादा कनेक्ट करें, क्योंकि समय पड़ने पर वो हमारे सबसे करीब होते हैं, हमारी मदद के लिए सबसे ज़्यादा आगे आते हैं। हमारे युवाओं के लिए ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जिसके तहत वे इस फील्ड में, टेक्नोलॉजी के फील्ड में आगे बढ़कर कुछ नए इनोवेशंस कर सकते हैं, अपने करियर को और बेहतरीन बना सकते हैं। इनोवेशन

वचन भले ही एक बड़ा शब्द है, लेकिन हमेशा शुरू छोटे से करो। कहीं ना कहीं छोटी छोटी प्रॉब्लम्स का जो सल्यूशन लोग टेक्नोलॉजी की मदद से निकालते हैं, वही कहीं ना कहीं आगे जाकर एक बड़े पैमाने का काम बन सकता है।

दोस्तों, जॉनिता गांधी, नक्श अजीज और मीत ब्रदर्स की आवाज में अभी आपने सुना ड्रीम गर्ल फिल्म का ये गीत। श्रोताओं, कार्यक्रम में गानों का सिलसिला और बातों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, बस इस छोटे से अंतराल के बाद।

हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट आकाशवाणी.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

0: मन की बात प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर।
1: मेरी मन की बात के संबंध में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे वो जरूर मुझ तक पहुंच जाएगा और मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
0: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो पता नोट करें, मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली 110001।
1: मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, मेरे मन की बात के लिए आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

नमस्कार जमशेदपुर के इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है और आपकी रेडियो दोस्त रिंकी का।

श्रोताओं, आज विश्व उच्च रक्तचाप दिवस भी है। जी हाँ, उच्च रक्तचाप, जो जिसे हम हाइपरटेंशन भी कहते हैं, और ये एक साइलेंट किलर है, क्योंकि ये बिना कोई स्पष्ट लक्षण के शरीर को अंदर ही अंदर नुकसान पहुंचाता है। वर्ल्ड हाइपरटेंशन लीग द्वारा इस दिवस की शुरुआत की गई थी 17 मई को। 100 से अधिक देश इस बात पर जोर देते हैं कि रक्तचाप की नियमित जांच कितनी जरूरी है। 2026 में थीम है कि सही तरीके से रक्तचाप नापना और नियंत्रित करना दीर्घ जीवन की कुंजी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार दुनिया में 1.28 अरब लोग हाइपरटेंशन से पीड़ित हैं, और दुख की बात यह है कि इनमें से 46% लोगों को अपनी स्थिति के बारे में पता ही नहीं होता। अनियंत्रित उच्च रक्तचाप हृदयघात, स्ट्रोक, गुर्दे की बीमारी और दृष्टिहीनता का मुख्य कारण है। समय पर पहचान जीवन बचा सकती है, और ये एक बहुत बड़ा भ्रम है कि ये केवल वृद्धों की बीमारी है। आज के समय में ये सिर्फ वृद्धों तक सीमित नहीं रह गई है। आज 20 से 30 वर्ष के युवाओं में भी अनियमित दिनचर्या, तनाव, फास्ट फूड के सेवन के कारण ये समस्याएं बढ़ रही हैं। ये बहुत आवश्यक है कि प्रत्येक परिवार में एक डिजिटल बीपी मॉनिटर जरूर रखें। महीने में एक बार परिवार के सभी वयस्क सदस्यों का रक्तचाप जरूर नापें। ये बेहद जरूरी है कि दिनचर्या में 3S यानी कि स्ट्रेस, सॉल्ट जिसे हम नमक कहते हैं, और तनाव से दूर रहें। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि WHO के अनुसार दिन भर में 5 ग्राम से कम नमक लेना चाहिए, यानी कि एक छोटा चम्मच। इसके अलावा इस भागदौड़ भरी जिंदगी में तनाव तो हमारे रोज़ की ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है, लेकिन 10 मिनट प्राणायाम का ध्यान करें अनुलोम विलोम रक्तचाप नियंत्रित करने में सहायक होता है। रोज 30 मिनट तेज चलना, सीढ़ियां चलना, शारीरिक परिश्रम करने से ये जो हाइपरटेंशन है वो बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। हरी सब्जियों, मोटे अनाज और कम तेल को अपने खाने में जरूर सम्मिलित करें। ज्यादा तेल मसालों को अपने आप से दूर रखें। ये एक बहुत जरूरी काम है कि हम अपने आप को खुली हवा में कुछ पल जरूर दें, क्योंकि कई बार हम अपने रूम में, एक कमरे में खुद को इस तरीके से या स्क्रीन के साथ इस तरीके से जोड़ लेते हैं कि आसपास की खूबसूरती को अनदेखा कर देते हैं, और यही कई बार हमारे स्ट्रेस को भी बढ़ाती है। जिंदगी में ये ज़रूरी नहीं कि हर काम में आप पारंगत हों, और परफेक्शन की तलाश में अपने आप को स्ट्रेसफुल मत बनाइए। कुछ काम अगर आपसे नहीं होता या आप नहीं कर सकते तो उसमें अभ्यास ज़रूरी है। अभ्यास करने से कोई भी काम ज़रूर पूरा हो सकता है। तो ये बेहद ज़रूरी है कि कभी कभी खुद को कुछ फालतू कामों में भी लगाएं, जैसे कुछ देर शांति से बैठें, बच्चों के साथ बातें करें, बूढ़ों के साथ कुछ हंसी मजाक करें, उनके पुराने किस्से सुने, दोस्ती यारी में बातचीत करें, जिनसे आपने कभी बात ना किया हो उनसे भी बात करें। अपने अगर कुछ ऐसे स्ट्रेस आपको परेशान कर रहा है तो उन्हें ज़रूर बताएं, क्योंकि कई बार ये छोटे छोटे पल ही आपको बड़ी बीमारियों से दूर भी रखते हैं और आपके स्थिति को दूसरों तक पहुंचाने में भी मदद करते हैं।

दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं गर्मी की। जी हाँ, गर्मी ने हाल बेहाल कर रखा है और ये अपने चरम पर है। टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जा रहा है और ऐसे में घबराने की नहीं, समझदारी से इसे पार करने की ज़रूरत है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हाइड्रेट रखने की। दोस्तों, गर्मी क्यों बढ़ रही है, इस बात का जवाब हम कहीं ना कहीं हम सभी अपने दिल से जानते हैं। ग्लोबल वार्मिंग, शहरों में कंक्रीट का जंगल, जी हाँ, बढ़ते बिल्डिंगें और घटते पेड़, कहीं ना कहीं इसका मेन रीज़न हो सकते हैं। और यूं ही जो लू चल रही है उसके तो हम सभी जानते ही हैं। तो ऐसे में ये बहुत ज़रूरी है कि खुद को गर्मी से बचाएं। छोटे बच्चे, बुज़ुर्ग, गर्भवती महिलाएं और मजदूर जो कि धूप में काम कर रहे होते हैं, इनको कम से कम खुद को हाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी है। श्रोताओं, ऐसे में कम से कम दिन में 3 से 4 लीटर पानी ज़रूर पिएं और इसके अलावा नींबू पानी, नारियल पानी, छाछ या ORS ज़रूर लें। खाने में जो पानी युक्त जो फल होते हैं, जैसे तरबूज, खीरा, ककड़ी, दही, ये सब अपने खाने में ऐड करें। ये बहुत ज़रूरी है कि अगर ज़रूरी ना हो तो सुबह 4

माफ़ कीजिएगा 11 बजे से 4 बजे तक धूप में ना निकले। खुद को ठंडा रखने के लिए खिड़की दरवाजे के ऊपर गीला पर्दा ज़रूर टांगे ताकि घर में जो गर्म हवाएं प्रवेश भी करें तो वो उनका जो टेम्परेचर है थोड़ा ज़रूर कम हो। खाली पेट घर से बाहर बिल्कुल ना निकलें। ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं या क्रिकेट वगैरह जैसे खेलों में हैं तो खुद को हाइड्रेट रखें और सुबह या शाम को ही इसकी प्रैक्टिस करें। अगर किसी को भी आपके आसपास तेज़ बुखार, चक्कर आने या पसीना बंद होने जैसे लक्षण दिखे तो तुरंत डॉक्टर के पास ज़रूर लेकर के जाएं। ये कुछ ऐसे बातें हैं दोस्तों जो कि हमें इस गर्मी में अपने और अपने आसपास के लोगों को इस गर्मी की मार से बचाने के लिए ध्यान में ज़रूर रखना चाहिए ताकि हम खुद को भी ठीक रख सकें और जो हमारे आसपास के लोग हैं उनके भी हम काम आ सकें।

आयुष्मान खुराना की आवाज़ में अभी आपने सुना विक्की डोनर फिल्म का ये गीत। श्रोताओं, हम आज बात कर रहे थे विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस के फायदों और उसके आने वाले समय में हम इसे कैसे अपने लिए बेहतर बना सकते हैं। लेकिन वही एक और चिंता वाली बात ये है कि हमारे देश के युवा जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं इस सोशल मीडिया और इंटरनेट की दुनिया में खोते जा रहे हैं। ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि अब गर्मियों की छुट्टियां हो गई हैं तो बच्चे पूरा दिन सोशल मीडिया पर और डिजिटल दुनिया में व्यस्त ना रहें। शिक्षा, मनोरंजन और रचनात्मकता के भंडार होने के बावजूद भी ये सोशल मीडिया की आदत बच्चों को कुछ नया करने से रोकती है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ब्रेन रोटिंग की तरफ बच्चों को लेके जा रही है। बच्चों की मानसिक सेहत के लिए ये सोशल मीडिया खतरा बन चुका है। लाइक्स और नोटिफिकेशंस ये एक ऐसे पुरस्कार हो गए हैं उनके लिए जिनके ना होने पर वे खुद को डीमोटिवेटेड और बिना किसी काम का समझते हैं। ये रिवॉर्ड सिस्टम बच्चों में लत का शिकार बढ़ा रही है। ऐसे में हम ये कर सकते हैं कि बच्चों को भले सोशल मीडिया से पूरी तरीके से अलग नहीं कर सकते, लेकिन उनका ध्यान बाहरी चीज़ों पर भी ज़रूर बढ़ाने की कोशिश करें। उन्हें एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ जैसे सिंगिंग, डांसिंग, किसी तरीके का वाद्य यंत्र सीखना या घर के कुछ कामों में लगाना, ये बहुत ज़रूरी है उनकी दिनचर्या में ऐड करने के लिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। बच्चों का मन कहीं ना कहीं अभी बहुत कोमल है और ऐसे में ये दृष्टिकोण उनके मानसिक और शारीरिक विकास में कहीं ना कहीं बाधा बनेगी। ये रचनात्मकता और आत्म अभिव्यक्ति का जो उनमें कला है उसको रोकेगी, क्योंकि आत्म अभिव्यक्ति कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस से आता है और ये लाइक्स और कमेंट के भंवर में वो अपने आप को नहीं समझ पाएंगे, वो खुद को नहीं जान पाएंगे, अपने कौशल को ना जान पाएंगे ना निखारने की कोशिश करेंगे। ऐसे में ये बहुत ज़रूरी है पेरेंट्स के लिए कि बच्चों को स्क्रीन से दूर रखने की कोशिश करें, उनके लिए रोल मॉडल बने। हो सके तो बच्चों के सामने माता पिता भी मोबाइल फ़ोन का यूज़ ना करें। ऑनलाइन खतरों से उन्हें जागरूक करें, उनके साथ बातचीत करें, स्क्रीन से ध्यान हटाने के लिए फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाएं। मोबाइल, टैबलेट और सोशल मीडिया ऐप्स पर उपलब्ध पैरेंटल कंट्रोल टूल्स से कंटेंट को फिल्टर करें ताकि उनके हाथ कोई भी गलत चीज ना लगे। ये बहुत जरूरी है श्रोताओं कि इन गर्मियों की छुट्टियों में उनका ध्यान इस सोशल मीडिया और ख्वाबों की दुनिया से दूर उन्हें सच्चाई, अच्छाई के रास्ते पर लेकर के आए, उन्हें खुद के साथ जोड़े, अपने परिवार के लोगों के साथ जोड़े, उनके साथ बातचीत करें, घुले मिले। ये हमारे देश का भविष्य है और इनका ख्याल आज रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है।

सोनू निगम, श्रेया घोषाल और कृति सागरिया की आवाज में अभी आप सुन रहे थे दावते इश्क फिल्म का ये गीत, और इसी गीत के साथ आज का हमारा नमस्कार जमशेदपुर का ये सफर यहीं तक। दीजिए अपनी रेडियो दोस्त रिंकी को इजाजत। नमस्कार।

0: नमस्कार जमशेदपुर।
1: लिसनर्स, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। 12 बजने को हैं श्रोताओं, अब आप सुनेंगे हिंदी में समाचार प्रसारित किए जाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: ये आकाशवाणी है। नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन की 2 दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। दोनों पक्ष व्यापार बढ़ाने, हरित प्रौद्योगिकी अपनाने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप, मजबूत आपूर्ति श्रृंखला, रक्षा, अंतरिक्ष, जलवायु परिवर्तन और जनसंपर्क में सहयोग के नए रास्ते तलाशेंगे। दोनों प्रधानमंत्रियों के साथ साथ यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन भी यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को संबोधित करेंगी। श्री मोदी की इस यात्रा का उद्देश्य तकनीक में तेज परिवर्तनों और जटिल भू राजनीतिक चुनौतियों के दौर में सहयोग के नए आयाम तलाशना है। इससे पहले कल हेग में प्रधानमंत्री मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटन के बीच वार्ता के बाद भारत और नीदरलैंड्स ने आपसी संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, जल प्रबंधन, स्वच्छ ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। सहयोग को मजबूत करने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर भी किए गए। प्रधानमंत्री मोदी ने नीदरलैंड्स को भारत का एक प्रमुख यूरोपीय साझेदार बताया। उन्होंने उभरते क्षेत्रों में अधिक सहयोग का आह्वान किया।
1: हमें नीदरलैंड की एक्सपर्टीज और भारत के स्पीड और स्केल को हर क्षेत्र में जोड़ना चाहिए। इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट, सस्टेनेबिलिटी और डिफेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग को नए आयामों तक पहुंचाना है। इसी साझा दृष्टि के साथ भारत नीदरलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं।
0: नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटन ने कहा कि भारत के साथ संबंधों का महत्व लगातार बढ़ रहा है और दोनों देशों के बीच मजबूत आर्थिक और रणनीतिक सहयोग जरूरी है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज से सीएनजी की कीमतों में 1 रुपए की बढ़ोतरी की है। अब दिल्ली में 1 किलोग्राम सीएनजी की नई दर 80.09 रुपए, गाजियाबाद और नोएडा में 88.70 रुपए और गुरुग्राम में 85.12 रुपए हो गई है। इस सप्ताह की शुरुआत में भी आईजीएल ने सीएनजी की कीमतों में 2 रुपए की वृद्धि की थी। सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि सोने और प्लेटिनम से मढ़ी हुई चांदी सहित चांदी के आयात की नीति को संशोधित करके मुक्त से प्रतिबंधित कर दिया गया है। सरकार ने बुधवार को कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में विमानन ईंधन पर मूल्य वर्धित कर वैट 25% से घटाकर 7% करने का निर्णय लिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संपर्क और आर्थिक गतिविधियों को मजबूत करने के अनुरूप लिया गया है। केरल से दिल्ली आ रही तिरुवनंतपुरम हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस के B1 कोच में आज तड़के आग लग गई। हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, कुछ रेलगाड़ियों की आवाजाही पर असर पड़ा है। ये घटना मध्य प्रदेश के रतलाम में कोटा डिवीजन के लूणी, रिच्छा और विक्रमगढ़ आलोट स्टेशनों के बीच तड़के 5:20 पर हुई। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ASI ने मध्य प्रदेश के धार जिले में भोजशाला परिसर में हिंदुओं को पूजा पाठ और अन्य कार्यक्रमों के लिए प्रवेश की अनुमति दे दी है। इससे पहले मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भोजशाला को देवी सरस्वती का मंदिर घोषित किया था। आंध्र प्रदेश में एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत युवा संगम का 6ठा चरण कल से शुरू हो गया। तिरुपति के जिलाधिकारी डॉक्टर एस वेंकटेश्वर ने जिले के येरपेटू स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT में इसका उद्घाटन किया। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान, बौद्धिक विकास और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम 27 मई तक चलेगा। टेनिस में यूक्रेन की एलिना स्वितोलिना ने इटालियन ओपन का महिला सिंगल्स खिताब जीत लिया है। 7वीं वरीयता प्राप्त एलिना ने फाइनल में अमेरिका की कोको गॉफ को हराया। आज इटली के जैनिक सिनर का मुकाबला नॉर्वे के कैस्पर रूट से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 8:30 से खेला जाएगा। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन

बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया के लिया रोली कार्नेंडो और डेनियल मार्टिन की जोड़ी से होगा। आईपीएल क्रिकेट में आज धर्मशाला में दोपहर बाद 3:30 बजे से पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र FM के 102.4 MHz पर। 12:05 हुए हैं श्रोताओं, समय है कार्यक्रम भाव गीत का।

भावगीत के आज के इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बेहद स्वागत और आपकी रेडियो दोस्त रिंकी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, जब हमारे दिल में किसी खास के लिए जगह बन जाती है तो उस जगह को फिर किसी और के लिए खाली कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये हमारे दिल का वो कोना होता है जिसे हम बेहद ही संभाल कर रखते हैं और किसी खास को ही इसकी जगह देते हैं। जैसे तेरी यादों में खो जाता हूँ मैं कुछ इस तरह, जैसे हवाओं में खुशबू बिखर जाती है बेवजह, तेरा ख्याल आते ही ये दिल खुशी से झूम उठता है। हर गम मेरा जैसे कहीं दूर, बहुत दूर छूट जाता है, तेरे इश्क में ये दिल बस झूम सा जाता है।

तेरे इश्क में दिल यूं ही झूमता रहा, अब जाके जाना मैंने, यूं नहीं धड़कता दिल मेरे सीने में, कुछ तो दिल लगी है तेरी इन आँखों में, तड़प ऐसी है कि एक पल भी चैन ना आए तेरी यादों, हर घड़ी मेरे दिल को यूं ही बहलाए।

दोस्तों, जब इश्क के दरिया में कोई उतरता है तो खुद की खुशियों के बारे में बस यूं ही भूल सा जाता है, क्योंकि वफा का दरिया कभी रुकता नहीं, मोहब्बत में प्रेमी कभी झुकता नहीं। तेरी खुशियों की खातिर हम चुप हैं इस जमाने में, पर ये तू ना समझना कभी कि दर्द हमें चुपता नहीं।

ज़रूरी नहीं कि हर गम हम जुबां से कह दें, जो लबों से ना कह सके वो हम आँखों से बताएंगे। तुम मिलो तो सही, हम हाले दिल अपना सुनाएंगे। ज़रूरी नहीं हर दर्द चीख कर ही बताना हो, कुछ किस्से हम अपनी खामोशी से तुम्हारे लिए लिख जाएंगे। इस दिल में, इस दिल पर तुम्हारा नाम लिखकर अब मिटाना मुश्किल है, जीते जी अब इस दिल से तुम्हें भुलाना मुश्किल है।

श्रोताओं, ये थी कार्यक्रम भावगीत की अंतिम प्रस्तुति। आज के इस कार्यक्रम में हमने जिन फिल्मों को शामिल किया उनके नाम हैं गदर 2, रेड 2, एक विलन रिटर्न्स और विक्की विद्या का वो वाला वीडियो। इनमें आवाजें थी अरिजीत सिंह, मिथुन, जुबिन नौटियाल, श्रेया घोषाल, विशाल शर्मा, हंसिका पारेख और सचिन जिगर की। इनके गीतकार रहे शहीद कादरी, मनोज मुंतशिर, कुणाल वर्मा और सोम। संगीत दिया था मिथुन, रोचक कोहली, कौशिक गुड्डू और सचिन जिगर ने। श्रोताओं, इसी के साथ आज का हमारा फिल्म माफ कीजिएगा आज भावगीत का हमारा ये सफर बस यहीं तक। दीजिए अपनी रेडियो सखी रिंकी को इजाजत।

लिसनर्स, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। अब से कुछ ही देर बाद 12:30 पर आप सुनेंगे महिलाओं के लिए कार्यक्रम अंगना। 1:10 पर समय होगा प्रादेशिक समाचार का। 1:20 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत। 2:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत। 3:00 का समय होगा रोजगार समाचार का। 3:05 पर कार्यक्रम होगा सुगम संगीत। 3:15 पर समय होगा कार्यक्रम झारखंड के लोकगीत का। 3:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम उप शास्त्रीय संगीत। और 3:45 पर समय होगा कार्यक्रम लोकगीत का।

5:02 पर श्रोताओं आप सुनेंगे युवाओं के लिए कार्यक्रम युवानी। 5:30 पर कार्यक्रम होगा कल कारखाने। 6:00 सुनेंगे आप हिंदी में समाचार। 6:05 पर अंग्रेजी में समाचार का प्रसारण किया जाएगा।

0: अंगना के सभी श्रोताओं को दोस्त और बहन जयश्री का प्यार भरा नमस्कार जोहार। बहनों, हमारी आज की दौड़ती भागती जिंदगी में कब तनाव चुपके से हमारे जीवन में घुस जाता है हमें पता भी नहीं चलता, और वो तनाव जो है धीरे धीरे हाइपरटेंशन में बदल जाता है। और हाइपरटेंशन यानी कि उच्च रक्तचाप, जिसके प्रति लोगों को जागरूक करना बहुत जरूरी है, और इसी उद्देश्य से हम मनाते हैं 17 मई यानी आज के दिन विश्व हाइपरटेंशन दिवस। इसका मुख्य उद्देश्य ही है बहनों, बढ़ते रक्तचाप के प्रति लोगों को जागरूक करना, क्योंकि इसे साइलेंट किलर कहा जाता है। अक्सर तनाव और बिगड़ती जीवन शैली इस समस्या को एक गंभीर बीमारी में बदल देती है। तनाव को बीमारी बनने से रोकने और हाइपरटेंशन को नियंत्रित करने के लिए कुछ प्रभावी उपाय हम अपना सकते हैं, जैसे कि भोजन में ऊपर से नमक डालने से बचना चाहिए और प्रोसेस्ड फूड यानी कि पैकेटबंद खाना जो है ना वो कम कर देना होगा। बहनों, दिन में कम से कम 30 मिनट पैदल चलना, योग या साइकिल चलाना हमारे हृदय के स्वास्थ्य के लिए बेहतर होता है। बढ़ता वजन सीधे तौर पर रक्तचाप को प्रभावित करता है बहनों, इसलिए संतुलित आहार से और व्यायाम से इसे नियंत्रित रखा जा सकता है, और ये काम हम सब कर सकते हैं। बहनों, तनाव का प्रबंधन करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि जीवन में किसी को कोई समस्या नहीं है, लेकिन उस समस्या का समाधान ढूंढना है, ना कि टेंशन लेना है। जब भी आपको तनाव महसूस होना, 5 से 10 मिनट के लिए डीप ब्रीदिंग या फिर प्राणायाम करें। ये तंत्रिका तंत्र को शांत करता है बहनों। शरीर और दिमाग की रिकवरी के लिए 7 से 8 घंटे की गहरी नींद जरूरी है। हॉबी के लिए अपने समय जरूर निकालें, क्योंकि ये मन को सुकून देते हैं, खुशी देते हैं। संगीत सुनना हो, पढ़ना हो, बागवानी करना हो, या खाना बनाना हो, या कुछ सिलाई कढ़ाई बुनाई करनी हो, या फिर लिखना हो, जरूर कीजिए, क्योंकि ये गतिविधियां कार्टिसोल जो कि हमारा तनाव का हार्मोन होता है, के स्तर को कम करती है। और हाँ बहनों, अपने खाने में पोटेशियम युक्त चीजें जैसे कि केला, पालक और शकरकंद, इन सबको शामिल कीजिए। ज्यादा चाय, कॉफी और शराब के सेवन से बचें। शराब का सेवन तो बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये सीधे तौर पर बीपी बढ़ाते हैं। हाइपरटेंशन के लक्षण तुरंत दिखाई नहीं देते बहनों, इसलिए समय समय पर अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाते रहें। तनाव जीवन का हिस्सा हो सकता है, लेकिन इसे शरीर पर हावी मत होने दीजिए। विश्व हाइपरटेंशन दिवस पर ये संकल्प लीजिए बहनों कि आप अपनी सेहत को प्राथमिकता देंगी और एक सक्रिय और तनाव मुक्त जीवन जिएंगे। सावधानी ही सबसे बड़ा उपचार है। विश्व हाइपरटेंशन दिवस 2026 का थीम है बहनों, अपने रक्तचाप को सटीक रूप से मापें, इसे नियंत्रित करें, लंबे समय तक जीवित रहें। मेजर योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली, कंट्रोल इट, लिव लॉन्गर। ये थीम पिछले कुछ वर्षों से लगातार उपयोग की जा रही है, क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में रक्तचाप की सटीक पहचान और उसके प्रबंधन पर जोर देना है। बहनों, इस थीम के पीछे 3 मुख्य स्तंभ हैं। सटीक मापन, बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है कि उन्हें हाई बीपी है या उसे गलत तरीके से मापते हैं। सही मशीन और सही तकनीक से जांच करना यानी कि सटीक मापन इसका पहला कदम है। और अगर रक्तचाप बढ़ा हुआ है तो दवाइयों, सही खानपान और व्यायाम के जरिए इसे सामान्य स्तर पर लाना जरूरी है, यानी कि नियंत्रण जरूरी है। और बहनों, हाइपरटेंशन को नियंत्रित रखकर दिल के दौरे यानी कि हार्ट अटैक, स्ट्रोक और किडनी की बीमारियों के जोखिम को कम किया जा सकता है, और इससे जीवन प्रत्याशा बढ़ती है। तो जैसे मैं आप तक ये संदेश पहुंचा रही हूं, वैसे ही हमारी और बहनों तक भी आप ये संदेश जरूर पहुंचाइएगा, और अपने तनाव को बीमारी बिल्कुल मत बनने दीजिएगा। और आज है 3रा रविवार, बिल्कुल भी नहीं भूली हूँ, तो आज चलिए सुनते हैं पहले चंद कविताएं सोनी सुगंधा की खूबसूरत आवाज में।
1: एक गजल, सितम जरीफी मुझे अब नहीं गवारा है, सितम जरीफी मुझे अब

नहीं गवारा है, समझने वाले को काफी यही इशारा है, समझने वाले को काफी यही इशारा है। मेरा वजूद कोई आम राखदान नहीं, मेरा वजूद कोई आम राखदान नहीं, तू आके देख ले इसमें भरा शरारा है, तू आके देख ले इसमें भरा शरारा है। नहीं गिला था समंदर को आबे दरिया से, नहीं गिला था समंदर को आबे दरिया से, मगर वो आज ये कहता है तू ही खारा है, मगर वो आज ये कहता है तू ही खारा है। हम आसमान के आंगन में झांकते ही नहीं, हम आसमान के आंगन में झांकते ही नहीं, हमारे जहन में सूरज सा एक सितारा है, हमारे जहन में सूरज सा एक सितारा है। तेरे सफीने की मुझको नहीं जरूरत अब, तेरे सफीने की मुझको नहीं जरूरत अब, ये देख ले कि मेरा आ गया किनारा है, ये देख ले कि मेरा आ गया किनारा है। जिसे समझना है समझ ले मुबालगा जिसको, जिसे समझना है समझे मुबालगा जिसको, मगर जो शख्स है दिल में वो सबसे प्यारा है, मगर जो शख्स है दिल में वो सबसे प्यारा है। अकड़ घमंड तकबर को मत हवा दीजिए, अकड़ घमंड तकब्बुर को मत हवा दीजिए, गुरूर जिसका भी हो टूटा पारा पारा है, गुरूर जिसका भी हो टूटा पारा पारा है। सितम जरीफ ही मुझे अब नहीं गंवारा है, समझने वाले को काफी यही इशारा है।

पहुंचाया है, फिर भी इश्क का मेरा गागर, फिर भी इश्क का मेरा गागर खाली खाली लगता है, फिर भी इश्क

0: थैंक यू।
1: बहनों अभी आप सुन रही थी सोनी सुगंधा से बेहद ही प्यारी से गीत और गजल, और अब एक दिल को छू लेने वाली कहानी हम सुनते हैं कहानीकार अदिति सिन्हा से। कहानी है मेरी कक्का।
2: नमस्ते, मेरी कहानी का शीर्षक है मेरी कक्का। निवान अभी 2.5 साल का ही था। शब्दों से ज्यादा वह आवाजों और छुअन को पहचानता था। माँ उसे याद नहीं थी, पिता हर सुबह काम पर निकल जाते और हर रात देर से लौटते थे, और उसके पूरे जीवन में बस एक ही चेहरा ऐसा था जिससे उसे सुकून मिलता था, और वह था उसकी कक्का का चेहरा। कक्का यानी सविता उसकी आया, पर उसके लिए सविता के

केवल एक नाम नहीं थी, वह एक भरोसे की गोद थी। सर्दियों की धूप रोटी के पहले कौर की तरह थी। सुबह उठते ही जैसे ही उसकी आंखें खुलती, वह सबसे पहले पूछता, कक्का आ गई? रात को सोने से पहले उसका सिर कक्का की गोद में ही टिकता था। उसे लगता था, कक्का मेरी है, बस मेरी। उसकी हंसी, उसका आंचल, उसकी थपकी, मानो सब उसी के लिए बने थे। एक दिन बारिश आई, बादल ऐसे गरजे जैसे आकाश भी कांप उठा हो। बिजली की चमक में सब कुछ कुछ पल के लिए स्याह हो गया। निवान खिड़की के पास खड़ा था, छोटा सा, नंगे पांव, भय से सिकुड़ा हुआ। बिजली की जोरदार गड़गड़ाहट से उसके नन्हे कंधे कांप उठे। कक्का आंगन में पड़ी चारपाई समेटने गई थी। निवान कुछ समझे बिना ही भाग पड़ा। बस इतना जानता था, कक्का अकेली बाहर है। बेचारा कीचड़ में फिसल पड़ा, घुटने छिल गए, कपड़े भीग गए, मुंह पर मिट्टी थी, बाल गीले और लटके हुए। पर वह ना तो रोया, ना चीखा और ना ही किसी को पुकारा। बस भीगे कपड़ों और कांपते बदन के साथ चुपचाप जाकर कक्का की साड़ी का पल्लू पकड़ लिया। मानो वही उसका घर हो, उसके डर का इलाज हो और वही उसकी पूरी दुनिया। कक्का ने पीछे मुड़कर देखा तो ठिठक गई। बालक की हालत देख उसकी आंखों में करुणा भर आई। वह जल्दी से झुकी और उसे गोद में उठा लिया। उसके भीगे बालों में उंगलियां फिराकर बड़े प्यार से बोली, अरे बाबा तू भी ना, तू तो मेरा छोटा राजा है, कहाँ चला आया मेरे पीछे भीगने। निवान ने कुछ नहीं कहा, उसने बस अपनी आंखें मूंद ली और सिर कक्का की गोद में टिका दिया। उस दिन वह बहुत देर तक कक्का की गोद में यूं ही पड़ा रहा, मानो वही उसका आसरा हो, वही उसका संसार। वह उसे हर छोटी बात पर बुलाता, जैसे कभी पेंसिल गिर जाए, पानी खत्म हो जाए या जूता उल्टा हो जाए। कक्का हर बार हंसते हुए कहती, इतना भी नहीं कर सकता, पर फिर झुककर वही काम कर देती। एक रात निवान को हल्का बुखार था। कक्का ने अपने आंचल में पानी भिगोकर उसका माथा पोंछा। निवान ने बिना आवाज दिए अपना सिर उसकी गोद में छिपा लिया। उसे पता था अगर माँ होती तो शायद ऐसा ही करती, लेकिन उसके पास तो कक्का थी और वह काफी थी। कभी कभी वो कक्का के कंधे पर सिर रखकर बस चुपचाप उसकी साड़ी को पकड़ा रहता। ना कोई मांग, ना कोई जिद, जैसे उसकी पूरी दुनिया उस कोने में ही सिमटी हो। कुछ दिनों बाद कक्का ने कहा, बाबा आज तुझे अपने घर ले चलूं, तुझे अच्छा लगेगा। निवान ने बिना कुछ पूछे केवल हंसकर सिर हिला दिया। उसके लिए संसार की परिभाषा अत्यंत सरल थी, जहां कक्का है वही उसका घर है। उस दिन वह बहुत प्रसन्न था। उसकी आंखों में एक चमक थी, एक नई जगह, एक नई दुनिया देखने की। उसके मन में उत्सुकता थी, मानो वह किसी मेले में जा रहा हो। रास्ते भर बस यही सोचता रहा, जाने कक्का का घर कैसा होता होगा। कक्का का घर अत्यंत साधारण था। कच्ची मिट्टी की दीवारें थी जिनमें बरसों की उमस समाई थी। दरवाजे पर एक झुकी हुई चौखट थी जिस पर हर आने जाने वाला सिर झुकाकर ही भीतर दाखिल होता। आंगन में एक टूटी चारपाई रखी थी जिस पर एक बोरी बिछी थी। एक कोने में पुराना मिट्टी का चूल्हा था जिसके पास लकड़ियां चटकती थी। छत बांस और टिन की थी जिसमें बारिश की हर बूंद अपनी आवाज छोड़ जाती। पंखा तो था पर पुराना इतना कि हवा कम और आवाज ज्यादा देता था। दीवारों पर कुछ फीके पड़े देवी देवताओं के चित्र थे और एक कांट की संदूक रखी थी जिसमें शायद कक्का के जीवन की सारी सहेज कर रखी गई यादें बंद थी। घर में एक वृद्धा चारपाई पर लेटी थी, शायद कक्का की माँ, और दो छोटे बच्चे थे जो सविता को देखते ही हर्षित हो गए और माँ पुकार कर उससे लिपट गए। यह दृश्य देखते ही निवान दरवाजे पर ही ठिठक गया। वह घर के आंगन की मिट्टी में बैठ गया। उसकी उंगलियां बार बार जमीन को कुरेदने लगी। वह धीरे धीरे कक्का के चेहरे की एक आकृति उकेरने की कोशिश कर रहा था। दो आंखें, बाल, एक बड़ी बिंदी और मुस्कुराता हुआ चेहरा, बिल्कुल वैसा ही जैसा उसे याद था। वह कुछ कह नहीं रहा था पर उस मिट्टी में अपनी पूरी भावना उतार रहा था। शायद वह जानता था
कि मिट्टी का यह चेहरा भी

0: थोड़ी देर बाद मिट जाएगा, जैसे उसका कक्का को लेकर मासूम विश्वास अब धीरे धीरे मिट रहा था। थोड़ी देर तक उसकी आंखों में कौतूहल था, वह मुस्कुराया। उसे लगा शायद यह कोई खेल है जिसमें सब कक्का को माँ कहते हैं, पर क्षण भर में ही उसकी मुस्कान मुरझा गई। उसके मन में मानो जैसे कोई धुंध उतर आई हो। कक्का अब किसी और की थाली में खाना परोस रही थी, किसी और के माथे से पसीना पोंछ रही थी, किसी और को थपकियां दे रही थी, जैसे वही उसका अपना हो। निवान चुपचाप एक कोने में जाकर बैठ गया, दीवार से सटकर कुछ सोचता हुआ। अब भी उसकी आंखों में थोड़ी सी आशा बची थी, शायद अभी कक्का मुझे पुकारेगी, शायद अभी बुलाएगी। लेकिन कुछ देर बाद वह भी बुझ गई। उसके नन्हे हाथ अब कक्का की साड़ी नहीं तलाशते थे। थोड़ी ही देर में खेलते समय एक बच्चा कुछ गिरा बैठा। कक्का ने बिना देखे ही कह दिया, निवान ये क्या किया तुमने? निवान ने कुछ नहीं कहा, ना सफाई दी ना ही उसकी आंखों में आंसू आए, बस एक बार कक्का की ओर देखा और फिर मुंह फेर लिया। उसका नन्हा मन अब कुछ पूछ नहीं रहा था, वह चुपचाप जान चुका था कक्का मेरी नहीं है, शायद कभी थी ही नहीं। रात को कक्का ने उसे गोद में उठाया, पर निवान ने मुंह फेर लिया, ना रोया ना कुछ कहा, बस चुपचाप जमीन पर लेट गया करवट लेकर। उसका मुंह दीवार की ओर था, आंखें खुली थीं, पर उनमें अब कोई प्रतीक्षा नहीं थी, ना कोई प्रश्न ना कोई आस, बस एक शून्यता थी भीतर जमी हुई। अगले दिन रविवार था। काम से छुट्टी होने के कारण निवान के पिता को फुर्सत मिली और वे स्वयं कक्का के घर आए निवान को लेने। कक्का ने उसका छोटा बैग बांधा, निवान पास बैठा रहा चुपचाप, ना कोई जिद की और ना ही कोई सवाल किए। पिता को देखते ही वह उठ खड़ा हुआ, लेकिन एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा। पिता ने उसका हाथ पकड़ना चाहा, तो उसने अपनी उंगलियां खींच ली। बस एक बार उसने कक्का की ओर देखा, उसकी आंखों में वह भोली सी उलझन थी जो एक 2.5 साल के बच्चे के मन में उठती है, जैसे पूछ रहा हो, क्या अब मैं कक्का की गोद में नहीं सोऊंगा? क्या अब वो मुझे खाना नहीं खिलाएगी? पर यह सब सवाल शब्दों में नहीं थे, बस उसकी आंखों में थरथराते हुए ठहरे थे। उसने एक बार कक्का कहा, धीरे से कांपती आवाज में, जैसे उस एक शब्द में उसने अपना पूरा भरोसा रख दिया हो, पर वह भरोसा उसी पल टूट गया। कक्का की गोद में किसी और बच्चे को बैठे देखना, वही गोद जो उसकी दुनिया थी, जो कल पहली बार उसके दिल में चुभा था, वह आज जवाब बनकर एक नन्हे से बच्चे के सामने आया। कक्का ने झुककर उसका माथा चूमा, पर कुछ कह नहीं पाई। निवान की आंखों की कोरे भीगी थी, उसने मुंह फेर लिया ताकि कोई देख न सके। जब वह निकल गया तो कक्का दरवाजे पर खड़ी रह गई बहुत देर तक। कहते हैं बच्चे जल्दी भूल जाते हैं, पर उस दिन निवान के चेहरे पर जो खामोशी थी वह शायद उम्र भर की थी। बच्चे जब किसी को अपना सब कुछ मान लेते हैं तो उन्हें यह बताने वाला कोई नहीं होता कि हर इंसान का एक अपना संसार भी होता है, और जब यह सच्चाई पहली बार उनके सामने आती है तो वे रोते नहीं हैं, बस कोई सिसकी उनके भीतर कहीं गूंजती रह जाती है जो बाहर कभी नहीं आती। अब भी निवान कक्का कहता है, पर उसमें अब वह बेसाख्ता मासूमियत नहीं रही। अब वह गोद नहीं मांगता, बस पास आकर बैठ जाता है, जैसे कोई बहुत कीमती चीज पीछे छूट गई हो जिसे पुकारने से भी अब वापस नहीं पाया जा सकता। और कक्का शायद वह सब जानती है पर कहती कुछ नहीं। कभी कभी उसकी हथेली निवान की पीठ पर ठहर जाती है, पर वह भी उतनी अपनी नहीं लगती। कुछ रिश्तों की दूरी ना तो बोली जाती है ना पूरी तरह समझी जाती है, बस धीरे धीरे महसूस होती है।
1: बहनों, अभी आप सुन रही थी ये प्यारी सी कहानी मेरी कक्का, कहानीकार अदिति सिन्हा से। बहनों, हम जैसे आप तक हर बात पहुंचाते हैं, आपसे बातें करते हैं, मनोरंजन करते हैं, तो ये हमारी कनेक्टिविटी है और आज का युग ही कनेक्टिविटी का है। 1865 में एक टेलीग्राम भेजने से शुरू हुआ ये सफर आज AI और सैटेलाइट इंटरनेट तक पहुंच गया है। लेकिन इस तकनीकी सफर की असली कामयाबी तब है बहनों, जब एक किसान को मौसम की सही जानकारी मिले, एक विद्यार्थी को गाँव में बैठ कर विश्व स्तरीय शिक्षा मिले और हर नागरिक डिजिटल रूप से सुरक्षित महसूस करे। बहनों, तकनीक को विकास का जरिया बनाया जाए, ना कि केवल एक लत। और विश्व दूर संचार और सूचना समाज दिवस यानी कि आज का ये अवसर ऐसा है जब हम इस बात पर चर्चा करें। आज की सबसे बड़ी चुनौती बहनों तकनीक का होना नहीं बल्कि उसकी पहुंच का समान ना होना है। जहां शहरों में 5G की बात हो रही है वहीं दूर दराज के ग्रामीण इलाकों में आज भी बुनियादी इंटरनेट संघर्ष का विषय है। इस दिवस पर विशेष टिप्पणी ये होनी चाहिए कि तकनीक तभी सफल है जब वह समावेशी हो। सूचना समाज यानी कि इंफॉर्मेशन सोसाइटी का मतलब केवल डेटा का आदान प्रदान नहीं है। आज इंटरनेट पर सूचनाओं की बाढ़ है लेकिन उनमें से सही और सटीक जानकारी चुनना एक कला है। हमें सूचना समाज से ज्ञान समाज की ओर बढ़ना होगा जहां लोग तकनीक का उपयोग केवल मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि सशक्तिकरण और शिक्षा के लिए करें। जैसे जैसे हम डिजिटल हो रहे हैं साइबर अपराध और डेटा चोरी का खतरा भी बढ़ रहा है। बहनों डिजिटल साक्षरता के साथ डिजिटल सुरक्षा की समझ भी उतनी ही जरूरी है। पासवर्ड की सुरक्षा और अनजान लिंक से सावधानी अब बुनियादी जीवन कौशल बन चुके हैं। दूर संचार ने हमें मीलों दूर बैठे व्यक्ति से तो जोड़ दिया है लेकिन कभी कभी यह हमें अपने पास बैठे व्यक्ति से दूर कर देता है। तकनीक का उपयोग जुड़ने के लिए करें उलझने के लिए नहीं। संचार के साधन हमें करीब लाने के लिए हैं, मानवीय संवेदनाओं को खत्म करने के लिए नहीं। इसलिए बहनों आज विश्व दूर संचार और सूचना समाज के दिन मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगी कि हम सबको एक दूसरे से जुड़े रहना है। इंटरनेट और नई तकनीकों के उपयोग से समाज और अर्थव्यवस्था में आने वाले बदलावों के बारे में समझना है। दुनिया के उन हिस्सों तक तकनीक पहुंचाना है जहां आज भी इंटरनेट या संचार के साधन उपलब्ध नहीं है। सूचना और संचार तकनीक के माध्यम से गरीबी दूर करने और शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने पर हमें जोर देना होगा। आज के दौर में 5G सैटेलाइट इंटरनेट और ऑप्टिकल फाइबर ने दुनिया को एक ग्लोबल विलेज बना दिया है। क्या आप जानती हैं बहनों कि भारत दुनिया के सबसे बड़े दूर संचार बाजारों में से एक है। तो बहनों जरूरी है कि जैसे कि हमारा आकाशवाणी है और अन्य संचार माध्यम है उस सबके जरिए हम ये एक दूसरे से बात करें कि कैसे तकनीक ने आम आदमी के जीवन को सुगम बनाया है और साइबर सुरक्षा के प्रति सतर्क रहना क्यों जरूरी है। इस पर हम अक्सर बातचीत करते रहते हैं और ये सतर्कता बहुत जरूरी है। हम सबको मिलकर इस पर काम करना होगा और आखिरी व्यक्ति तक तकनीक की पहुंच को सुनिश्चित करना होगा, तभी हम डिजिटल खाई को पाट पाएंगे और सूचना की जगह ज्ञान को तरजीह दे पाएंगे। सुरक्षा और निजता उतनी ही जरूरी है जितना कि हमारा ज्ञान जरूरी है और साथ ही मानवीय स्पर्श उसमें बना रहे। इस सब का ध्यान रखते हुए मैं बस आप सबसे इतना ही कहना चाहूंगी कि अपने घर परिवार और समाज से तकनीक के जरिए जरूर जुड़े रहें, ना कि उनसे दूर हो जाएं। और फिलहाल वक्त का ये इशारा है कि हमें आपसे लेनी होगी विदा। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। इसी दुआ और शुभकामनाओं के साथ अपने दोस्त और बहन जयश्री को दीजिए विदा। पुनः मिलने के वादे के साथ आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार जोहार।
2: अंगना, महिलाओं का कार्यक्रम अपना अंगना।

लिसनर्स, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, एक बजने को हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। 1:10 पर समय होगा प्रादेशिक समाचार का, रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। बने रहिए हमारे साथ, समाचार प्रसारित किए जाएंगे बस कुछ ही देर में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन की दो दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के निमंत्रण पर श्री मोदी स्वीडन जा रहे हैं। श्री मोदी की यात्रा का उद्देश्य तकनीक में तेज परिवर्तनों और जटिल भू राजनीतिक चुनौतियों के दौर में सहयोग के नए आयाम तलाशना है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस दौरान श्री मोदी प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। दोनों प्रधानमंत्रियों के साथ साथ यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन भी यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को संबोधित करेंगी।
1: प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर स्वीडन के उद्योग जगत में उत्साह का माहौल है और कारोबारी समुदाय इस दौरे के परिणामों को लेकर काफी आशावान है। आकाशवाणी से बातचीत में इंडियन स्वीडन बिजनेस काउंसिल के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी श्री रॉबिन सुखिया ने जन से जन संपर्कों के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि भारतीय प्रधानमंत्री की दूसरी बार मेजबानी करना स्वीडन के लिए अत्यंत उत्साह और गर्व का विषय है। इस बैठक में दोनों देशों के बीच समग्र द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की जा सकती है और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सहयोग के नए अवसरों पर भी चर्चा करी जा सकती है। दोनों नेता हरित परिवर्तन, एआई, उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप, मजबूत सप्लाई चेन, रक्षा, अंतरिक्ष, क्लाइमेट एक्शन और जन से जन संपर्कों जैसे क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं पर भी विचार विमर्श कर सकते हैं। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
0: इससे पहले कल हेग में प्रधानमंत्री मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटन के बीच वार्ता के बाद भारत और नीदरलैंड्स ने आपसी संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, जल प्रबंधन, स्वच्छ ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। सहयोग को मजबूत करने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री मोदी ने नीदरलैंड्स को भारत का एक प्रमुख यूरोपीय साझेदार बताया। नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटन ने कहा कि भारत के साथ संबंधों का महत्व लगातार बढ़ रहा है और दोनों देशों के बीच मजबूत आर्थिक और रणनीतिक सहयोग जरूरी है। भारत ने कहा है कि हॉर्मुस जलडमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमले स्वीकार्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वत नेनी हरीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों को निशाना बनाने तथा जहाजों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को उचित नहीं ठहराया जा सकता। श्री हरीश ने ये बात वैश्विक ऊर्जा के संबंध में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद की एक विशेष बैठक में कही। मकानों की गिनती का पहला चरण 5 राज्यों में शुरू हो गया है। इसके तहत राजस्थान, मेघालय, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली में मकानों की सूची तैयार की जाएगी। घर घर जाकर सूची तैयार करने का काम आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी चल रहा है। स्वगणना सुविधा आज से गुजरात, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पुदुचेरी में शुरू की गई है। ये सुविधा 31 मई तक उपलब्ध रहेगी। स्वगणना सुविधा उत्तर प्रदेश में भी जारी है जो 21 मई तक चलेगी। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज से सीएनजी की कीमतों में 1 रुपए की बढ़ोतरी की है। इस सप्ताह की शुरुआत में भी आईजीएल ने सीएनजी की कीमतों में 2 रुपए की वृद्धि की थी। सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि सोने और प्लेटिनम से मढ़ी हुई चांदी सहित चांदी के आयात की नीति को संशोधित करके मुक्त से प्रतिबंधित कर दिया गया है। सरकार ने बुधवार को कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। दिल्ली मेट्रो निजी वाहनों के बजाय मेट्रो के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए अतिरिक्त ट्रेनें चलाएगी। दिल्ली मेट्रो के अनुसार ये फैसला ऊर्जा और धन की बचत तथा पर्यावरणीय सुरक्षा में मेट्रो की भूमिका को देखते हुए लिया गया है। इसके लिए प्रत्येक सोमवार को 24 अतिरिक्त मेट्रो ट्रेन चलाई जाएंगी। टेनिस में यूक्रेन की एलिना स्वितोलिना ने इटालियन ओपन का महिला सिंगल्स खिताब जीत लिया है। 7वीं वरीयता प्राप्त एलिना ने फाइनल में अमरीका की कोको गॉफ को हराया। आज इटली के यानिक सिनर का मुकाबला नॉर्वे के कैस्पर रूट से होगा। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया के लिया रूली कार्नेंडो और डेनियल मार्टिन की जोड़ी से जारी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं आसिया नाजली। पहले मुख्य समाचार। स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक नियुक्ति परीक्षा विवाद मामले में फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने राज्य सरकार से मांगी पूरी जानकारी, 23 मई को होगी अगली सुनवाई। केंद्र सरकार ने चांदी के आयात पर लगाया प्रतिबंध, मुक्त से प्रतिबंध श्रेणी में रखी गई चांदी अब आयात के लिए सरकारी लाइसेंस जरूरी। रांची के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री देश के सर्वश्रेष्ठ जिलाधिकारियों की सूची में हुए शामिल, देश के 100 जिलाधिकारियों को भी सूची में मिला स्थान। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस को लेकर राज्य भर में चलाया जा रहा है जागरूकता अभियान, हेल्पलाइन नंबर 104 पर 24 घंटे मरीजों को दी जा रही है सलाह। और भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान सलीमा टेटे ने कहा, ऑस्ट्रेलिया दौरे और FIH महिला हॉकी नेशंस कप में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेगी टीम। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स में हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया पिछले कुछ समय से कोविड महामारी, वर्तमान में जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की भूमि बनकर उभर रहा है।
1: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशिएंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नीदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं, इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
0: स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा से जुड़े नियुक्ति विवाद मामले में गठित वन मैन फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के अध्यक्ष गौतम कुमार चौधरी ने मामले की सुनवाई की। इस दौरान राज्य सरकार को नियुक्त अभ्यर्थियों से संबंधित पूरी जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। इसमें नियुक्ति से जुड़े कार्यालय आदेश, विषयवार और श्रेणीवार प्राप्तांक, जिलावार मेरिट सूची सहित अन्य दस्तावेज शामिल हैं। SDPO बैजू राम ने बताया कि मामले की अगली सुनवाई 23 मई को होगी।
2: JSSC और राज्य सरकार दोनों को पिछले 2 डेट से डायरेक्शन मिला था रिवाइज मेरिट लिस्ट सबमिट करने के लिए। JSSC के द्वारा आज रिवाइज मेरिट लिस्ट सबमिट कर दिया गया है और राज्य सरकार के द्वारा जो दस्तावेज लाए गए थे वो कुछ अपूर्ण थे, पूरे कम्प्लीट नहीं थे, तो कोर्ट ने उनको 1 हफ्ते का और समय दिया गया। अब अगले शनिवार को इस केस की फिर से सुनवाई होगी।
0: कीमती धातुओं पर भारी सीमा शुल्क लगाने के कुछ ही दिनों बाद सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा कि सोने और प्लैटिनम से मढ़ी हुई चांदी सहित चांदी के आयात की नीति को मुक्त से प्रतिबंधित करके संशोधित कर दिया गया है। सरकार ने पिछले सप्ताह कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। प्रतिबंधित श्रेणी के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं के आयात के लिए सरकारी लाइसेंस की आवश्यकता होती है। रांची के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री को फेम इंडिया मैगजीन और एशिया पोस्ट द्वारा जारी देश के सर्वश्रेष्ठ जिलाधिकारियों की सूची में स्थान मिला है। देश भर के करीब 800 जिलों के अधिकारियों के कार्यों के अध्ययन के बाद तैयार इस सूची में उन्हें बेहतर प्रशासन, जन सरोकार और विकास कार्यों के आधार पर चुना गया है। चयन प्रक्रिया में प्रशासनिक क्षमता, प्रभावी गवर्नेंस, नवाचार, संकट प्रबंधन और जन भागीदारी जैसे मानकों को शामिल किया गया। इस सूची में देश भर के 100 जिलाधिकारियों को स्थान मिला है। पूर्वी सिंहभूम में जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय ने वन विभाग की DFO सबा आलम अंसारी के साथ मानगो से सटे दलमा पहाड़ की तलहटी के विभिन्न क्षेत्रों का संयुक्त निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान क्षेत्र को पर्यावरण और पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने की योजना पर सहमति बनी। प्रस्ताव के तहत चंद्रावती नगर, गोपाल नगर, कुमरुम बस्ती और पार्डी के आसपास पार्क, तालाब, पाथवे और बच्चों के लिए चिल्ड्रन पार्क विकसित किए जाएंगे। इन क्षेत्रों को इको टूरिज्म केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना है। विधायक ने कहा कि दलमा की तलहटी प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर है और यहाँ पर्यावरण अनुकूल विकास कार्य किए जाएंगे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक सैंडल ATIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक सैंडल ATIR न्यूज _ रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। आज विश्व उच्च रक्तचाप दिवस है। इसका उद्देश्य उच्च रक्तचाप के बारे में वैश्विक जागरूकता, रोकथाम, पहचान और नियंत्रण को बढ़ावा देना है। इस वर्ष का विषय है उच्च रक्तचाप को मिलकर नियंत्रित करें, नियमित रूप से अपने रक्तचाप की जांच करें और इस बीमारी को हराएं। इधर राज्य के स्वास्थ्य विभाग की ओर से नागरिकों को नियमित व्यायाम करने, फल और सब्जियों का अधिक सेवन करने और वजन नियंत्रित रखने की सलाह दी गई है। स्वास्थ्य संबंधी जानकारी या शिकायत के लिए 24 घंटे संचालित हेल्पलाइन नंबर 104 पर संपर्क करने की सुविधा उपलब्ध है। रांची पुलिस ने वरीय पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन के निर्देश पर चलाए गए ऑपरेशन प्रहार के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए पिछले दो दिनों में 100 से अधिक अपराधियों को गिरफ्तार किया है। अभियान के दौरान 220 से ज्यादा लंबित वारंटियों को अभी निष्पादन किया गया, जिसमें रांची पुलिस की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई में से एक माना जा रहा है। रांची पुलिस ने कहा है कि अपराध नियंत्रण और संगठित अपराध पर कार्रवाई के लिए भविष्य में भी इस तरह के अभियान लगातार जारी रहेंगे। रांची के कांके थाना क्षेत्र में पुलिस ने पेट्रोल पंप संचालकों को सख्त चेतावनी जारी की है कि ईंधन की कृत्रिम कमी पैदा करने, जमाखोरी या सप्लाई रोकने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 और पेट्रोलियम अधिनियम 1934 के तहत कार्रवाई होगी। पुलिस ने निर्देश दिया है कि सभी पंपों पर पेट्रोल डीजल की आपूर्ति सामान्य रखी जाए, स्टॉक और सरकारी दरें बोर्ड पर प्रदर्शित हों और एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और आपातकालीन वाहनों को प्राथमिकता दी जाए। बिना हेलमेट वाले दोपहिया चालकों और खुले बर्तन में पेट्रोल डीजल देने पर पूरी तरह रोक लगाई गई है। साथ ही भीड़ होने पर तुरंत पुलिस को सूचना देने को कहा गया है। थाना प्रभारी साक्षी जमुआर ने कहा कि नियमों की अनदेखी करने वालों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। देवघर जिले की पुलिस ने नशे के कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 30 किलो अवैध गांजा बरामद किया है। देवघर के SP प्रवीण पुष्कर ने बताया कि इस मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।
3: गुप्त सूचना के आधार पर STPO सदर के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया और वहां पे छापामारी की गई, तो वहां पे 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई। ये लोग गांजा अगरतला से लेके आए थे और यहां पे डिलीवर करने वाले थे। उसके बाद उन तीनों का प्रयुक्ति बयान के आधार पे और 3 नाम सामने आए और वो तीनों देवघर के रहने वाले थे जो उनसे गांजा खरीदते थे और यहाँ पे सप्लाई करते थे।
0: कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने भोजपुरी और मगही भाषा पर कहा है कि जिन भाषाओं को बिहार में ही पूर्ण मान्यता नहीं मिली है, उन्हें झारखंड में अलग दर्जा देना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि झारखंड की अपनी क्षेत्रीय और जनजातीय भाषाओं की समृद्ध पहचान है, जिनके संरक्षण और संवर्धन को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। बंधु तिर्की ने कहा कि राज्य की मूल भाषाओं और संस्कृति को मजबूत करना सरकार की जिम्मेदारी है।
4: भोजपुरी कोई भाषा नहीं है, वो कुछ जिलों में बोली के रूप में जाना जाता है। मगही आपका बोली के रूप में जाना जाता है और भोजपुरी और मगही को तो खुद भी आपका बिहार में इसका मान्यता नहीं है और ऐसे में यहाँ पर उन भाषा का दर्जा देना ये कहीं से भी उचित नहीं है।
0: भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान सलीमा टेटे ने कहा है कि महिला टीम आगामी ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले बंगलुरु स्थित भारतीय खेल प्राधिकरण में तैयारियों पर कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। भारतीय टीम 26 से 30 मई के बीच पर्थ हॉकी स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 मैच खेलेगी। यह न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में होने वाले आगामी FIH महिला हॉकी नेशंस कप के लिए एक महत्वपूर्ण चरण है। बता दें कि भारतीय टीम की कप्तान सलीमा टेटे झारखंड के सिमडेगा की रहने वाली हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक नियुक्ति परीक्षा विवाद मामले में फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने राज्य सरकार से मांगी पूरी जानकारी, 23 मई को होगी अगली सुनवाई। केंद्र सरकार ने चांदी के आयात पर लगाया प्रतिबंध, मुक्त से प्रतिबंधित श्रेणी में रखी गई चांदी अब आयात के लिए सरकारी लाइसेंस जरूरी। रांची के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री देश के सर्वश्रेष्ठ जिलाधिकारियों की सूची में हुए शामिल, देश के 100 जिलाधिकारियों को भी सूची में मिला स्थान। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस को लेकर राज्य भर में चलाया जा रहा है जागरूकता अभियान। हेल्पलाइन नंबर 104 पर 24 घंटे मरीजों को दी जा रही है सलाह। और भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान सलीमा टेटे ने कहा, ऑस्ट्रेलिया दौरे और FIH महिला हॉकी नेशंस कप में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेगी टीम। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से। लिसनर्स, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। 1:20 हुए हैं श्रोताओं, समय है कार्यक्रम फिल्म संगीत का।

दिन भर की भागदौड़ के बाद ये समय है थोड़ा रुकने का, थोड़ा ठहरने का, कुछ पल अपनों के साथ बिताने का। श्रोताओं, इन पलों में साथ हो संगीत का तो ये पल बेहद खूबसूरत बीतेंगे। करते हैं श्रोताओं फिल्म संगीत में कार्यक्रम का आगाज इस गीत के साथ।

किसी का भाई किसी की जान फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे श्रोताओं कमाल खान और पलक मुचल की आवाज में। शब्बीर अहमद के लिखे गीत को संगीत में पिरोया था हिमेश रेशमिया ने। कार्यक्रम में श्रोताओं अगला गीत आप सुनेंगे इस छोटे से अंतराल के बाद।

0: हमार बाबूजी के कहना बा बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: नमस्कार जमशेदपुर का एक अलग अंदाज,
3: ज्ञान विज्ञान
4: इतिहास के पन्नों से,
3: सेहत और बॉलीवुड की बातें,
2: मौसम का मिजाज,
3: अपने शहर की खबरें,
4: बातों मुलाकातों के साथ
2: सुरीला मनोरंजन
3: और भी बहुत कुछ।
2: आप सुनते हैं कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर में
4: दिन के 11:05 से 12 बजे तक
3: आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से।
2: नमस्कार जमशेदपुर।

0: हेलो डॉक्टर,
1: आकाशवाणी जमशेदपुर का लाइव फोन इन कार्यक्रम
0: हेलो डॉक्टर।
1: सुनिए हर माह के आखिरी बुधवार को रात 8 बजे से FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर विशेषज्ञों से कीजिए बातें लाइव कार्यक्रम के दौरान और पाइए अपनी समस्याओं से निदान। तो कॉल कीजिए साथियों 0657-2960-445 पर। नंबर एक बार पुनः सुनिए 0657-2960-445 और बातें कीजिए लाइव डॉक्टर के साथ।
0: हेलो डॉक्टर।

सुनिए हमारा खास कार्यक्रम हेलो आपकी फरमाइश, हर मंगलवार रात 10 बजे से 11 बजे तक एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। और हाँ, अपनी फरमाइश रिकॉर्ड करवाने के लिए हमें कॉल करें हर बुधवार दोपहर 12:30 बजे से 1 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है 0657-296-0445। हेलो आपकी फरमाइश, संगीत वही जो आप चाहें।

विशाल मिश्रा, शिल्पा राव, विशाल शेखर की आवाज़ में अभी आपने सुना फाइटर फिल्म का ये गीत। कुमार के लिखे गीत को संगीत दिया था विशाल शेखर ने। श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत आप सुनेंगे अरिजीत सिंह की आवाज़ में। फिल्म का नाम है लापता लेडीज। गीत लिखा है प्रशांत पांडे ने, संगीत दिया है राम संपत ने।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत आप सुनेंगे इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
0: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत अपनी रेडियो दोस्त रिंकी के साथ आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से FM के 102.4 MHz पर। अगला गीत श्रोताओं आप सुनेंगे वारिशु फिल्म से। हर्षवर्धन बावरे के आवाज है, गीत लिखा है निशांत सिंह ने, संगीत है थामन एस का।

आदित्य रिखारी और तुलसी कुमार की आवाज में अभी आप सुन रहे थे भूल भुलैया 3 फिल्म का ये गीत। गीत और संगीत आदित्य रिखारी का।

राहत फतेह अली खान की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे लव आजकल फिल्म का ये गीत। इरशाद कामिल के लिखे गीत को संगीतबद्ध किया था प्रीतम ने। श्रोताओं, इसी गीत के साथ आज का फिल्म संगीत का हमारा ये सफर बस यहीं तक। दीजिए अपनी रेडियो दोस्त रिंकी को इजाज़त। लिसनर्स, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। 2 बजने को है श्रोताओं, अब आप सुनेंगे मिड डे न्यूज। उसके ठीक बाद 2:15 पर दोपहर समाचार का प्रसारण किया जाएगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। बने रहिए हमारे साथ, समाचार प्रसारित किए जाएंगे बस कुछ ही देर में।

0: in the Kota Division around 5:20 a.m. Ratlam Railway Division's Public Relations Officer Mukesh Kumar informed there has been no casualty in this incident. The cause of the fire is being investigated. The India Meteorological Department IMD has issued an orange alert for heavy to very heavy rainfall at isolated places over Andaman and Nicobar Islands, sub-Himalayan West Bengal and Sikkim for the day. The Met Department has predicted thunderstorms accompanied by lightning and gusty winds over Bihar, Chhattisgarh, Jharkhand, Madhya Maharashtra and northeastern states for the next 2 days. IMD has said Madhya Pradesh, Rajasthan, Uttar Pradesh and Vidarbha may experience heat wave conditions till tomorrow. Severe heat wave grips Madhya Pradesh. Temperature crosses 43 degrees in 15 cities. A report.
1: Madhya Pradesh is reeling under severe heat. Life has become difficult for people. Indore and Ujjain divisions are the worst affected. Yesterday, Khandwa and Nogaon recorded temperatures above 44 degrees Celsius. In 15 cities across the state, the mercury touched 43 degrees or above. According to the IMD, a strong heat wave is likely in Ratlam, Khargone and Khandwa today. Temperature may cross 44 degrees there. Heat wave conditions will also continue in Indore, Ujjain, Sagar, Rewa, Chhatrapur and more than a dozen other districts. The IMD says severe heat will continue across most part of the state till May 19. No rain alert has been issued anywhere today. Abhinav Goyal, Akashvani, Bhopal.
0: On to sports now. In badminton, world number 4, Indian pair Satvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty went down 12-21, 23-25 to Indonesia's Leo Rolikanando and Daniel Martin in the men's doubles final of the Thailand Open in Bangkok today. In tennis, Ukraine's Alina Svitolina stunned world number 4 Coco Gauff of the US 6-4, 6-7, 6-2 to win the women's title at the Italian Open yesterday. In the men's section, Jannik Sinner will face Norway's Casper Ruud in the final today. The match will start at 8:30 p.m. Indian Standard Time. In IPL cricket, today Punjab Kings will take on Royal Challengers Bengaluru at Himachal Pradesh Cricket Association Stadium in Dharamshala. The match is scheduled to begin at 3:30 p.m. In another match, Delhi Capitals will face Rajasthan Royals at Arun Jaitley Stadium in Delhi. The match will begin at 7:30 p.m. World Hypertension Day is being observed today. The theme for this year is Controlling Hypertension Together. Check your blood pressure regularly. Defeat the silent killer. The day is a part of Hypertension Awareness Month, aiming to raise global awareness about high blood pressure, promote prevention, detection and control. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to reach Gothenburg this afternoon on a two-day visit to Sweden will hold talks with Swedish Prime Minister Ulf Kristersson to review cooperation in trade, green transition, AI and defence. India and Netherlands elevate bilateral relationship to strategic partnership. 17 agreements signed to strengthen collaboration in key areas. India condemns attacks on commercial shipping in Strait of Hormuz as unacceptable, says disrupting freedom of navigation cannot be justified. World Health Organization declares Ebola outbreak in Congo and Uganda a public health emergency of international concern. IMD issues heavy to very heavy rainfall alert at isolated places over Andaman and Nicobar Islands, sub-Himalayan West Bengal and Sikkim today. And Nepali mountaineer Kami Rita Sherpa creates history by climbing Mount Everest for 32nd time, breaking his own record. And with that, we end the midday news.
2: Namaskar. आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर स्वीडन की 2 दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। वे स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ व्यापार, प्रदूषण रहित तकनीक अपनाने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रक्षा क्षेत्र में सहयोग पर वार्ता करेंगे। भारत और नीदरलैंड्स ने आपसी संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने के लिए 17 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। भारत ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में व्यापारिक जहाजों पर हमलों की निंदा करते हुए उन्हें अस्वीकार्य बताया। कहा, जहाजों की बेरोक टोक आवाजाही में बाधा उचित नहीं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो और युगांडा में इबोला के प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का विषय बताया। मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज वर्षा की चेतावनी जारी की और नेपाल के पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए 32वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर इतिहास रचा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन की 2 दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के निमंत्रण पर स्वीडन जा रहे हैं। श्री मोदी की यात्रा का उद्देश्य तकनीक में तेज परिवर्तनों और जटिल भू राजनीतिक चुनौतियों के दौर में सहयोग के नए आयाम तलाशना है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस दौरान श्री मोदी प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। दोनों प्रधानमंत्रियों के साथ साथ यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन भी यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को संबोधित करेंगी।
3: प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर स्वीडन के उद्योग जगत में उत्साह का माहौल है और कारोबारी समुदाय इस दौरे के परिणामों को लेकर काफी आशावान है। आकाशवाणी से बातचीत में इंडियन स्वीडन बिजनेस काउंसिल के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी श्री रॉबिन सुखिया ने जन से जन संपर्कों के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि भारतीय प्रधानमंत्री की दूसरी बार मेजबानी करना स्वीडन के लिए अत्यंत उत्साह और गर्व का विषय है।
4: मैं एक बिजनेस काउंसिल की सोच के साथ काम करता हूँ, जहाँ लोगों और मीटिंग्स को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। हर मीटिंग हमारे लिए आगे बढ़ने का एक नया कदम होती है। उनके स्वीडन आने से हमें बेहद खुशी और गर्व है। वे जिन क्षेत्रों पर काम कर रहे हैं उनकी जल्द घोषणा होने की उम्मीद है। इससे कई उद्योगों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। मुझे भरोसा है कि इस आर्थिक सहयोग से हमें बेहतर और मजबूत परिणाम देखने को मिलेंगे।
3: इस बैठक में दोनों देशों के बीच समग्र द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की जा सकती है और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सहयोग के नए अवसरों पर भी चर्चा करी जा सकती है। दोनों नेता हरित परिवर्तन, AI, उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप, मजबूत सप्लाई चेन, रक्षा, अंतरिक्ष, क्लाइमेट एक्शन और जन से जन संपर्कों जैसे क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं पर भी विचार विमर्श कर सकते हैं। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
2: कल अपनी यात्रा के दूसरे चरण में भारत और नीदरलैंड्स ने आपसी संबंधों को रणनीतिक स्तर पर ले जाकर 17 समझौते किए। ये समझौते रक्षा, महत्वपूर्ण खनिज और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों से संबंधित हैं। नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटन के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया और विशेषकर ऊर्जा आपूर्ति में बाधा से विश्व व्यापार पर पड़ने वाले प्रभाव पर चिंता प्रकट की। श्री मोदी और रॉब येटन ने कहा कि हॉर्मुज की खाड़ी से होकर जहाजों की बेरोकटोक आवाजाही होनी चाहिए और इसे नियंत्रित करने का कोई भी प्रयास स्वीकार्य नहीं है। दोनों नेताओं ने यूक्रेन रूस संघर्ष पर भी चर्चा की। वे यूक्रेन समस्या का समाधान बातचीत और राजनयिक प्रयासों से किए जाने पर सहमत हुए। बातचीत के बाद भारत और नीदरलैंड्स ने व्यापार और निवेश, रक्षा और सुरक्षा, महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में संबंधों को बढ़ावा देने के लिए एक रोडमैप जारी किया। इनमें सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष, यांत्रिक मेधा और क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र के में सहयोग भी शामिल है। दोनों नेताओं ने ग्रीन हाइड्रोजन के विकास के लिए भी साझा रोडमैप जारी किया। प्रधानमंत्री मोदी ने नीदरलैंड्स को भारत का एक प्रमुख यूरोपीय साझेदार बताया।
5: हमें नीदरलैंड की एक्सपर्टीज और भारत की स्पीड और स्केल को हर क्षेत्र में जोड़ना चाहिए। इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट, सस्टेनेबिलिटी और डिफेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग को नए आयामों तक पहुंचाना है। इसी साझा दृष्टि के साथ भारत नीदरलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं।
2: नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटन ने कहा कि भारत के साथ संबंधों का महत्व लगातार बढ़ रहा है और दोनों देशों के बीच मजबूत आर्थिक और रणनीतिक सहयोग जरूरी है। भारत ने कहा है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमले स्वीकार्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतनेनी हरीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों को निशाना बनाने तथा जहाजों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को जायज नहीं ठहराया जा सकता। श्री हरीश ने ये बात वैश्विक ऊर्जा के संबंध में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद की एक विशेष बैठक में कही। कुछ दिन पहले ओमान के तट के पास भारतीय ध्वज वाले एक जहाज पर हमला हुआ था। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस

0: डीप टेक्नोलॉजी ही भविष्य की अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार होंगे। आज गुजरात के अहमदाबाद में मिलियन माइंड्स टेक पार्क के पहले चरण और ग्रेमी सिटी कैंपस का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि भारत विश्व के हर उभरते क्षेत्र में अग्रणी बन गया है।
1: आने वाले 25 साल में जो सेक्टर विश्व की अर्थनीति को, विश्व के अर्थतंत्र को दिशा देंगे, वो सभी क्षेत्र में आज भारत फाउंडर बनकर अपनी मजबूत उपस्थिति को दर्ज करा रहा है और यही बता रहा है कि भारत का भविष्य बहुत सुनहरा है। एआई और डीप टेक के जो भविष्य है, इसके लिए इसके जैसे टेक पार्क बहुत बड़ा काम भी करेंगे और इसको आगे भी बढ़ाएंगे।
0: श्री अमित शाह ने गांधीनगर में राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान में नवाचार और इनक्यूबेशन केंद्र का उद्घाटन भी किया। वे गांधीनगर निगम के विकास कार्यों का भी उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। श्री शाह गांधीनगर जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड मधुर डेयरी के नवनिर्मित 5,00,000 लीटर क्षमता वाले संयंत्र का भी उद्घाटन करेंगे। श्री शाह 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। मकानों की गिनती का पहला चरण 5 राज्यों में शुरू हो गया है। इसके तहत राजस्थान, मेघालय, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली में मकानों की सूची तैयार की जाएगी। एक रिपोर्ट।
2: घर घर जाकर सूची तैयार करने का काम आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी चल रहा है। सूची तैयार करने के लिए घर के सामानों, उपलब्ध सुविधाओं और परिसंपत्तियों का विवरण जुटाया जा रहा है। स्वगणना सुविधा आज से गुजरात, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पुदुचेरी में भी शुरू की गई है। ये सुविधा 31 मई तक उपलब्ध रहेगी। स्वगणना सुविधा उत्तर प्रदेश में भी जारी है जो 21 मई तक उपलब्ध रहेगी। अब तक 25 राज्यों में 1,44,00,000 से अधिक घरों के निवासी स्वगणना प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ASI ने मध्य प्रदेश के धार जिले में भोजशाला परिसर में हिंदुओं को पूजा पाठ और अन्य कार्यक्रमों के लिए प्रवेश की अनुमति दे दी है। इससे पहले मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भोजशाला को देवी सरस्वती का मंदिर घोषित किया था। उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के 7 अप्रैल 2003 के उस आदेश को भी रद्द कर दिया था जिसमें मुसलमानों को हर शुक्रवार को भोजशाला परिसर के भीतर नमाज अदा करने की अनुमति दी गई थी। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज से CNG की कीमतों में 1 रुपए की बढ़ोतरी की है। अब दिल्ली में 1 किलोग्राम CNG की नई दर 80 रुपए 9 पैसे, गाजियाबाद और नोएडा में 88 रुपए 70 पैसे और गुरुग्राम में 85 रुपए 12 पैसे हो गई है। इस सप्ताह की शुरुआत में भी CNG की कीमतों में 2 रुपए की वृद्धि की गई थी। सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि सोने और प्लेटिनम से मढ़ी हुई चांदी सहित चांदी के आयात की नीति को संशोधित करके मुक्त से प्रतिबंधित कर दिया गया है। दिल्ली सरकार महिला स्व सहायता समूहों और स्टार्टअप्स को 10 करोड़ रुपए तक की बिना गारंटी वाला ऋण उपलब्ध कराएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि सरकार स्वयं इन ऋणों की गारंटर बनेगी। दिल्ली मेट्रो निजी वाहनों के बजाय मेट्रो के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए अतिरिक्त ट्रेन चलाएगी। दिल्ली मेट्रो के अनुसार ये फैसला ऊर्जा और धन की बचत तथा पर्यावरणीय सुरक्षा में मेट्रो की भूमिका को देखते हुए लिया गया है। इसके लिए प्रत्येक सोमवार को 24 अतिरिक्त मेट्रो ट्रेन चलाई जाएंगी। केरल से दिल्ली आ रही तिरुवनंतपुरम हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस के B1 कोच में आज तड़के आग लग गई। हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, कुछ रेलगाड़ियों की आवाजाही पर असर पड़ा है। ये घटना मध्य प्रदेश के रतलाम में कोटा डिवीजन के लूणी रिच्छा और विक्रमगढ़ आलोट स्टेशनों के बीच तड़के 5:20 पर हुई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो और युगांडा में इबोला के प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए आपात स्थिति घोषित किया है। इस बीमारी से 300 से अधिक लोग पीड़ित हैं और 88 की मौत हुई है। हालांकि संगठन ने स्पष्ट किया है कि इबोला का संकट COVID-19 जैसी महामारी जैसा नहीं है। संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को बंद न करने की सलाह भी दी है। इबोला के इलाज के लिए फिलहाल कोई टीका या उपचार उपलब्ध नहीं है। आज विश्व उच्च रक्तचाप दिवस है। इसका उद्देश्य उच्च रक्तचाप के बारे में वैश्विक जागरूकता, रोकथाम, पहचान और नियंत्रण को बढ़ावा देना है। इस वर्ष का विषय है उच्च रक्तचाप को मिलकर नियंत्रित करें, नियमित रूप से अपने रक्तचाप की जांच करें और इस बीमारी को हराएं। आज विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस भी मनाया जा रहा है। आज ही के दिन 1865 में पेरिस में संयुक्त राष्ट्र डिजिटल प्रौद्योगिकी एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना की गई थी। इस दिवस का उद्देश्य इंटरनेट और इससे जुड़ी तकनीकों के सकारात्मक उपयोग को बढ़ावा देना है। नेपाल के पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए 32वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर इतिहास रच दिया है। 56 वर्षीय कामी रीता एवरेस्ट पर सबसे अधिक बार चढ़ाई करने वाले शेरपा हैं। इस बीच पर्वत रानी के नाम से मशहूर लाखपा शेरपा ने भी एवरेस्ट पर लगातार 11वीं बार सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली पहली नेपाली महिला होने का अपना रिकॉर्ड बरकरार रखा है। विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा ने कहा है कि भारत संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के साथ अपनी साझेदारी के माध्यम से डोमिनिका के कलिनागो समुदाय को सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मार्गरीटा ने डोमिनिका के कलिनागो क्षेत्र का दौरा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत डोमिनिका के साथ साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और दक्षिण दक्षिण सहयोग पर आधारित अपनी मैत्री को और प्रगाढ़ कर रहा है। मौसम विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल के हिमालय से सटे इलाकों और सिक्किम में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, दक्षिण कर्नाटक के भीतरी इलाकों, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारिकाल, केरल, माहे और लक्षद्वीप में भी भारी बारिश हो सकती है। अगले दो दिन तक बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, ओडिशा, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कोंकण, गोवा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तर पूर्वी राज्यों में बिजली और तेज हवाओं के साथ तूफान की संभावना है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक लू की स्थिति रह सकती है। मध्य प्रदेश में इंदौर और उज्जैन भीषण गर्मी की चपेट में है। कल खंडवा और नौगांव में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया, जबकि प्रदेश के 15 शहरों में पारा 43 डिग्री या उससे अधिक रहा। एक रिपोर्ट।
3: मौसम विभाग के अनुसार आज रतलाम, खरगोन और खंडवा में तेज लू चलने की संभावना है और तापमान 44 डिग्री के पार जा सकता है। इसके अलावा इंदौर, उज्जैन, सागर, रीवा, छतरपुर समेत प्रदेश के दर्जन भर से ज्यादा जिलों में लू का असर बना रहेगा। मौसम वैज्ञानिकों ने लोगों को दोपहर 12 से 3 बजे के बीच जरूरी काम होने पर ही घर से निकलने की सलाह दी है। साथ ही दिन भर पर्याप्त पानी पीते रहने और शरीर को हाइड्रेट रखने की अपील भी की है। मौसम विभाग के मुताबिक 19 मई तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भीषण गर्मी का दौर जारी रहेगा। आज कहीं भी बारिश का अलर्ट नहीं है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
0: अभी प्राप्त समाचार के अनुसार रेल मंत्रालय ने त्रिवेंद्रम नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस के 2 पिछले डिब्बों में लगी आग की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। मंत्रालय ने बताया कि डिब्बे की सुरक्षा प्रणाली के कारण ट्रेन स्वतः रुक गई। और अब खेल खबरें। आईपीएल क्रिकेट में आज धर्मशाला में दोपहर बाद 3:30 बजे से पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। इधर दिल्ली में शाम 7:30 बजे से राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स आमने सामने होंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर स्वीडन की 2 दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। वे स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ व्यापार, प्रदूषण रहित तकनीक अपनाने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रक्षा क्षेत्र में सहयोग पर वार्ता करेंगे। भारत और नीदरलैंड्स ने आपसी संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने के लिए 17 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए और भारत ने होर्मुज जलडमरू मध्य में व्यापारिक जहाजों पर हमलों की निंदा करते हुए उन्हें अस्वीकार्य बताया। कहा, जहाजों की बेरोक टोक आवाजाही में बाधा उचित नहीं। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। 2:30 हुए हैं श्रोताओं, समय है कार्यक्रम फिल्म संगीत का। लेकर हाजिर होंगे हम बस कुछ ही देर में।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: फिल्म संगीत के आज के इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बेहद स्वागत और आपकी रेडियो दोस्त रिंकी का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, करते हैं कार्यक्रम का आगाज इस दिलकश गीत के साथ।

केके की आवाज में दोस्तों अभी आप सुन रहे थे जिस्म टू फिल्म का ये गीत। गीतकार हैं मुनीश मखीजा आर्को प्रावो, संगीत है आर्को प्रावो मुखर्जी का। कार्यक्रम का अगला गीत श्रोताओं आप सुनेंगे जावेद बशीर की आवाज में। फिल्म का नाम है वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा। रजत अरोड़ा के गीत को संगीतबद्ध किया है प्रीतम ने।

अगला गीत श्रोताओं आप सुनेंगे अलका याग्निक और बाबुल सुपुरियो की आवाज में। फिल्म का नाम है गुनाह। गीतकार हैं प्रवीण भारद्वाज, संगीतबद्ध किया है आनंद राज आनंद ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अंतिम गीत आप सुनेंगे कुमार सानू सुनिधि चौहान की आवाज में। फिल्म का नाम है अजनबी। समीर के लिखे गीत को संगीत में पिरोया है अनु मलिक ने।

अभी आप सुन रहे थे श्रोताओं कार्यक्रम फिल्म संगीत। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। 2:55 होने को है श्रोताओं, अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र से।

0: रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूजा कुमारी। हजारीबाग के सांसद मनीष जायसवाल का जनसंवाद अभियान लगातार जारी है। इसी कड़ी में आज उन्होंने हजारीबाग नगर निगम क्षेत्र स्थित वार्ड 31 और 32 के विभिन्न इलाकों का पैदल भ्रमण किया। मौके पर उन्होंने स्थानीय जनता से सीधा संवाद कर उनकी समस्याओं को सुना और उनके समाधान के लिए सकारात्मक पहल करने का भरोसा दिलाया। भाजपा नेता अनिल टाइगर हत्याकांड का मुख्य सरगना अभिषेक कुमार सिन्हा उर्फ सूरज सिन्हा को रांची पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उस पर 20 लाख रुपए सुपारी के लिए कटहल मोड़ के छड़ सीमेंट व्यवसायी राधेश्याम साहू पर जानलेवा हमला करने का षड्यंत्र रचने का भी आरोप है।
1: अनिल टाइगर का जो केस हुआ था जिसमें उनकी हत्या कर दी गई थी, तो उसमें जो मेन आदमी था वह सूरज सिन्हा था। जमीन संबंधी विवाद था। उस विवाद में सूरज सिन्हा को कॉन्ट्रैक्चुअल किलिंग के लिए एक सुपारी मिली थी जिसमें उसे अनिल टाइगर की हत्या करनी थी। उसे टोटल 5 लाख रुपए दिए गए थे इस काम को करने के लिए।
0: रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री को फेम इंडिया मैगजीन और एशिया पोस्ट द्वारा जारी देश के सर्वश्रेष्ठ जिला अधिकारियों को सूची में स्थान मिला है। देश भर के करीब 800 जिलों के अधिकारियों के कार्यों के अध्ययन के बाद तैयार इस सूची में उन्हें बेहतर प्रशासन, जन सरोकार और विकास कार्यों के आधार पर चुना गया है। चयन प्रक्रिया में प्रशासनिक क्षमता, प्रभावी गवर्नेंस, नवाचार, संकट प्रबंधन और जन भागीदारी जैसे मानकों को शामिल किया गया। इस सूची में देश भर के 100 जिला अधिकारियों को स्थान मिला है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। साहिबगंज जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में गुम हुए मोबाइल के पुनर्वितरण को लेकर साहिबगंज के सिद्धो कानो सभागार में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। सामुदायिक पुलिसिंग के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में मोबाइल धारकों के बीच मोबाइल का वितरण कर जन विश्वास को बढ़ावा दिया जा रहा है। यह कार्यक्रम उपायुक्त दीपक दुबे, पुलिस अधीक्षक अमित कुमार सिंह और वन प्रमंडल पदाधिकारी प्रबल गर्ग की देखरेख में आयोजित किया जा रहा है।
2: 300 के आसपास मोबाइल फोन जो स्टोलेन अथवा लॉस्ट है उनको रिकवर करने में सफल रहा है। जो आप सूचना है वो लोकल माध्यम से अगर पुलिस विभाग को देते हैं तो एक तंत्र जो है उपलब्ध है जिसके माध्यम से हम सभी प्रकार के टेक्निकल एनालिसिस करते हुए उसको ट्रेस भी करते हैं और उसको सम्मान नागरिकों को वापस भी करते हैं।
0: जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय ने वन विभाग के जिला वन पदाधिकारी सबा आलम अंसारी के साथ मानगो के सटे दलमा पहाड़ की तलहटी के विभिन्न क्षेत्रों का संयुक्त निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान क्षेत्र को पर्यावरण और पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने की योजना पर सहमति बनी। प्रस्ताव के तहत चंद्रावती नगर, गोपाल नगर, कुमरुम बस्ती और पारडी के आसपास पार्क, तालाब, पाथवे और बच्चों के लिए चिल्ड्रन पार्क विकसित किए जाएंगे। इन क्षेत्रों को इको टूरिज्म केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना है। विधायक ने कहा कि दलमा की तलहटी प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर है और यहां पर्यावरण अनुकूल विकास कार्य किए जाएंगे। आज विश्व उच्च रक्तचाप दिवस है। इसका उद्देश्य उच्च रक्तचाप के बारे में वैश्विक जागरूकता, रोकथाम, पहचान और नियंत्रण को बढ़ावा देना है। इस वर्ष का विषय है उच्च रक्तचाप को मिलकर नियंत्रित करें, नियमित रूप से अपने रक्तचाप की जांच करें और इस बीमारी को हराएं। इधर राज्य के स्वास्थ्य विभाग की ओर से नागरिकों को नियमित व्यायाम करने, फल और सब्जियों का अधिक सेवन करने तथा वजन नियंत्रित रखने की सलाह दी गई है। स्वास्थ्य संबंधी जानकारी या शिकायत के लिए 24 घंटे संचालित हेल्पलाइन नंबर 104 पर संपर्क करने की सुविधा उपलब्ध है। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

प्रादेशिक समाचार श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। 3 बजने को है श्रोताओं, अब आप सुनेंगे रोजगार समाचार।

रोजगार समाचार कुछ इस प्रकार हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF ने कांस्टेबल, तकनीकी ट्रेड्समैन और पायोनियर के 9175 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किया है। आवेदन प्रक्रिया शुरू है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट RECT CRPF.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता के अनुसार एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए 10वीं पास हो, कांस्टेबल के लिए 10वीं पास के साथ हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, कुल तकनीकी ट्रेड्स में ITI की डिग्री होना आवश्यक है। आवेदन शुल्क के अनुसार EWS OBC 100 रुपये आवेदन शुल्क निर्धारित किया गया है। महिला एवं एक्स सर्विसमैन निःशुल्क हैं। कांस्टेबल के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम 27 वर्ष है। अन्य सभी न्यूनतम वर्गों के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और 23 वर्ष है। सरकारी नियमों के अनुसार अधिकतम उम्र में छूट दी जाएगी। आवेदन करने हेतु ऑफिशियल वेबसाइट RECT.CRPF.gov.in पर लॉगिन कर होम पेज पर रिक्रूटमेंट सेक्शन पर क्लिक करें। ऑनलाइन आवेदन लिंक पर क्लिक कर मांगी गई सारी डिटेल्स को दर्ज करें। जरूरी डॉक्यूमेंट्स फोटो सिग्नेचर अपलोड कर फीस का भुगतान कर फॉर्म सबमिट करें और उसका एक प्रिंटआउट अवश्य रखें। चयन प्रक्रिया के अनुसार फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी PET, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट PST, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT, ट्रेड स्किल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट के आधार पर चयन किया जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 19 मई 2026 निर्धारित की गई है।

रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी में साइट इंजीनियर के 40 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है। इस भर्ती के लिए ऑफलाइन एवं ईमेल आईडी के जरिए आवेदन करना होगा। शैक्षणिक योग्यता के अनुसार मान्यता प्राप्त संस्थान से 55% अंकों के साथ सिविल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीई बीटेक की डिग्री होनी चाहिए। एमटेक डिग्री होल्डर्स को एक्स्ट्रा वेटेज दिया जाएगा। संबंधित क्षेत्र में 2 साल का अनुभव और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्क में एक्सपीरियंस के आधार पर आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा के अनुसार अधिकतम 45 वर्ष, रिजर्व कैटेगरी के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार अधिकतम उम्र में छूट दी जाएगी। आवेदन शुल्क सभी उम्मीदवारों के लिए निःशुल्क होंगे। आवेदन करने हेतु site.engg.rlda@gmail.com पर सारे डॉक्यूमेंट्स जरूर भेजें। चयन प्रक्रिया के अनुसार इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर चयन किया जाएगा। आवेदन भेजने की अंतिम तिथि 22 मई 2026 निर्धारित की गई है। आईडी एक बार फिर सुने site.engg.rlda@gmail.com। रोजगार समाचार संपन्न हुए।

ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। 3:05 होने को है श्रोताओं, अब आप सुनेंगे कार्यक्रम सुगम संगीत।

सुगम संगीत के आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे सुमोना रॉय विश्वास की आवाज में गजल। कार्यक्रम का आगाज इस गजल के साथ।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे सुमोना रॉय विश्वास की आवाज़ में गज़ल, और इसी गज़ल के साथ आज का हमारा सुगम संगीत का ये सफ़र यहीं तक। दीजिए इजाज़त।

आकाशवाणी जमशेदपुर का ये प्राइमरी चैनल है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। 3:15 हुए हैं श्रोताओं, अगला कार्यक्रम आप सुनेंगे झारखंड के लोकगीत।

0: कार्यक्रम झारखंड के लोकगीत सुनने वाले सभी सुधी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार, जोहार और बहुत बहुत स्वागत। आइए सुनते हैं नरेश कुमार सिन्हा और साथियों के स्वर में पंच परगनिया लोकगीत।
1: ए संतक

देहिया जरे देहिया जरे जैसे कपूर और दूर हो गेला देहिया जरे जैसे कपूर।

एफएम बैंड के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम झारखंड के लोकगीत। आज के कलाकार हैं नरेश कुमार सिन्हा और साथी। आइए सुनते हैं पंच परगनिया में ये अगली प्रस्तुति।

रस टप टप टप के महुआ मदन रस टप टप टप के टप टप टप के टप

0: नरेश कुमार सिन्हा और साथियों के स्वर में गाए इस पंच परगनिया लोकगीत के साथ ही आज का कार्यक्रम झारखंड के लोकगीत अब यहीं पर संपन्न होता है। अनिमेश को दीजिए अनुमति।
1: लिसनर्स, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र FM के 102.4 MHz पर। 3:30 होने को है श्रोताओं, अब आप सुनेंगे कार्यक्रम उपशास्त्रीय संगीत।

उपशास्त्रीय संगीत के आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे पंडित हरि प्रसाद चौरसिया का बांसुरी वादन, राग होगा ठुमरी धुन।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे थे पंडित हरि प्रसाद चौरसिया की आवाज़ में बांसुरी वादन। इसी के साथ उपशास्त्रीय संगीत का आज का हमारा ये सफर यहीं तक। दीजिए इजाज़त। लिसनर्स, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र FM के 102.4 MHz पर। 3:45 हुए हैं श्रोताओं, अगला कार्यक्रम आप सुनेंगे लोकगीत।
1: कार्यक्रम लोकगीत सुनने वाले सभी सुधी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार, जोहार और बहुत बहुत स्वागत। आइए सुनते हैं शारदा सिन्हा और साथियों के स्वर में भोजपुरी लोकगीत।

एफएम बैंड के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लोकगीत। आज के कलाकार हैं शारदा सिन्हा और साथी। आइए सुनते हैं भोजपुरी में ये अगली प्रस्तुति।

0: शारदा सिन्हा और साथियों के स्वर में गाए भोजपुरी लोकगीत के साथ ही आज का कार्यक्रम लोकगीत अब यहीं पर संपन्न होता है। अनिमेश को दीजिए अनुमति।
1: लिसनर्स, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। 4 बजने को है श्रोताओं, अब आप सुनेंगे समाचार मुख्यांश, रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र से।

नमस्कार। अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूजा कुमारी। केंद्र सरकार ने कहा है कि CBSE की 12वीं की परीक्षा में ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली से मूल्यांकन में पारदर्शिता और निष्पक्षता बढ़ी है। 12वीं परीक्षा के परिणामों पर आज नई दिल्ली में स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव संजय कुमार ने बताया कि विद्यार्थियों ने मार्किंग और उत्तीर्णता प्रतिशत में मामूली गिरावट पर चिंता जताई है। जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय ने वन विभाग के जिला वन पदाधिकारी सबा आलम अंसारी के साथ मानगो से सटे दलमा पहाड़ की तलहटी के विभिन्न क्षेत्रों का संयुक्त निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान क्षेत्र को पर्यावरण और पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने की योजना पर सहमति बनी। रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री को फेम इंडिया मैगजीन और एशिया पोस्ट द्वारा जारी देश के सर्वश्रेष्ठ जिला अधिकारियों की सूची में स्थान मिला है। देश भर के करीब 800 जिलों के अधिकारियों के कार्यों के अध्ययन के बाद तैयार इस सूची में उन्हें बेहतर प्रशासन, जन सरोकार और विकास कार्यों के आधार पर चुना गया है। हजारीबाग के सांसद मनीष जायसवाल का जनसंवाद अभियान लगातार जारी है। इसी कड़ी में आज उन्होंने हजारीबाग नगर निगम क्षेत्र स्थित वार्ड 31 और 32 के विभिन्न इलाकों को पैदल भ्रमण किया। मौके पर उन्होंने स्थानीय जनता से सीधा संवाद कर उनकी समस्याओं को सुना और उनके समाधान के लिए सकारात्मक पहल करने का भरोसा दिलाया। सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर कानरा मुख्य मार्ग स्थित BSNL कार्यालय के समीप कल रात एक सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल बाइक सवार युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। आदित्यपुर थाने की गश्ती पुलिस ने उसे देर रात घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया था। भाजपा नेता अनिल टाइगर हत्याकांड का मुख्य सरगना अभिषेक कुमार सिन्हा और सूरज सिन्हा को रांची पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उस पर रांची के कटहल मोड़ निवासी छड़ सीमेंट व्यवसायी राधेश्याम साहू पर जानलेवा हमला

0: करने का षड्यंत्र रचने का भी आरोप है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र FM के 102.4 MHz पर। 4:02 हुए हैं श्रोताओं, अब आप सुनेंगे कार्यक्रम सामुदायिक गीत पाठ।
2: अच्छा बच्चों, आज हम तुम्हें असमिया भाषा का एक गीत सिखाएंगे। सीखना चाहते हो ना असमिया भाषा गीत? अच्छा, ये जो गीत है इसमें अपने देश की मट्टी के प्रति देशवासियों के प्रेम का प्यार का वर्णन है। तो मैं सिखाऊंगा ये गाना और मेरी मदद करेंगी नलिनी जी साथ। सबसे पहले तुम गीत के बोल लिख लो। ए माती रे, ए माती रे मोरो मोते, माटी के तुमी लो, माटी के सुमी लो, माटी के सुमी लो। हो गया ना यहाँ तक? आगे लिखो। ए माटी ते माटी ते जीवन, ए माटी ते जय नहीं बोलना, इसको ज बोलना। ये ए माटी ते जीवन सोबी, जीवन जी कैसे जय से उनके बिंदी लगा लेना है ना। तो जीवन सोबी आकी आकी, दो बार आकी आकी आकी मोसी लो। पहला अंतर आएगा इसके बाद। दूर आकाहार, ये जो ना आका आकाश श को बोलते वहां ख की तरह से, तो आका ये ख और ह के बीच में आका खार भी नहीं आकाहार भी नहीं आकाहार आकाहार लिखो। दूर आकाहार रोहन कियोनु लागे लागे खागोर टोलीर खागोर खागोर ख नहीं बोलना ह खागोर टोलीर खागोर मतलब समुद्र के तल में। तो खागोर तोलीर मानिक कियो, मानिक कियो नू, मानिक कियो नू लागे लागे, इसके आ गया है आहा आहा मातीर बुकुत, मातीर बुकुत मोनोर मालोती बुतोलो। मोनोर मालोती बुटोलो, इसके बाद फिर वही आ जाएगा ए माती रे मोरो मोते। फिर दूसरा अंतर है मोनोर कोरोनी रे, हुरोर और पापोरी रे, पापोरी रे।

0: आजी
1: आजी
0: इतना हो गया ना आगे हुकुमार थापो नाहुजुवा हुकुमार थापो नाहुजुवा आगे लिखा है ना
1: जी
0: हुंदौर खुदीनौर खुदीनौर नहीं खनी खुदीनौर नौतून दृष्टि ये ट को जरा त जैसा बोलना सॉफ्ट करके दृष्टि दृष्टि क्षमी सही बोलना दृष्टि दृष्टि कौनो ना हुआ आगे ना अच्छा ठीक है गाना सिखाना शुरू करते हैं स्वर दीजिएगा

Itu orang kan? अच्छा अब शुरू से लेंगे सारा गाना है ना एक दो तीन चार

अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीत। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है एफएम बैंड के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 4:30 हो चुके हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत।

श्रोताओं, फिल्म संगीत के कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला नगमा फिल्म शोर से।

मेरे जीवन साथी, आप कीजिएगा हाँ मैंने भी प्यार किया। इस फिल्म में अभी आप सुन रहे थे कुमार सानू और अलका याग्निक की युगल आवाजों को। शब्द रचना समीर की थी और नदीम श्रवण का संगीत था।

किशोर कुमार की आवाज़ में मेरे जीवन साथी इस फिल्म का ये नगमा अभी आप सुन रहे थे। इसके बोल लिखे थे मजरूह सुल्तानपुरी ने और इसकी धुन बनाई थी राहुल देव बर्मन ने।

किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी की मिलीजुली आवाज़ों में यादों की बारात इस फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे। इस गीत के बोल लिखे थे मजरूह सुल्तानपुरी ने और इसकी धुन बनाई थी राहुल देव बर्मन ने।

0: हेलो डॉक्टर,
1: आकाशवाणी जमशेदपुर का लाइव फोन इन कार्यक्रम।
0: हेलो डॉक्टर,
1: सुनिए हर माह के आखिरी बुधवार को रात 8 बजे से FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर विशेषज्ञों से कीजिए बातें लाइव कार्यक्रम के दौरान और पाइए अपनी समस्याओं से निदान। तो कॉल कीजिए साथियों 0657-2960-445 पर। नंबर एक बार पुनः सुनिए 0657-2960-445 और बातें कीजिए लाइव डॉक्टर के साथ।
0: हेलो डॉक्टर, हेलो डॉक्टर,
1: आकाश
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
3: कार्यक्रम का आखिरी गीत आइए सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज में, चलते चलते। इस फिल्म से गीत के बोल लिखे हैं अमित खन्ना ने और इसकी धुन बनाई है बाप्पी लाहिरी ने।

चलते चलते फिल्म के इस गाने के साथ ही कार्यक्रम फिल्म संगीत से मुझे यानी विभा को दीजिए इजाजत। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्म संगीत। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है एफएम बैंड के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय शाम के 5 बजने ही वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र से समाचार मुख्यांश।

0: नमस्कार। अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूजा कुमारी। केंद्र सरकार ने कहा है कि CBSE की 12वीं की परीक्षा में ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली से मूल्यांकन में पारदर्शिता और निष्पक्षता बढ़ी है। 12वीं परीक्षा के परिणामों पर आज नई दिल्ली में स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव संजय कुमार ने बताया कि विद्यार्थियों ने मार्किंग और उत्तीर्णता प्रतिशत में मामूली गिरावट पर चिंता जताई है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने रांची के होटवार केंद्रीय जेल में बंद एक महिला कैदी के साथ जेल अधीक्षक के द्वारा यौन शोषण और गर्भवती किए जाने का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जेल IG मामले को दबाने, फाइलें गायब करने और सबूत मिटाने के लिए महिला कैदी को गुप्त स्थानों व अस्पतालों में ले जा रहे हैं, जबकि गवाह कर्मियों का तबादला कर उन्हें चुप कराया जा रहा है। जमशेदपुर में कोल्हान प्रमंडल के झारखंड विद्युत श्रमिक संघ की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें श्रमिकों ने बकाया PF, ESI और अन्य सुविधाओं को लेकर गहरी नाराजगी जताई। बैठक में श्रमिकों ने संबंधित ठेकेदार पर मनमानी और कर्मचारियों की समस्याओं की अनदेखी करने का आरोप लगाया। सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर कांडरा मुख्य मार्ग स्थित BSNL कार्यालय के समीप कल रात एक सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल बाइक सवार युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। आदित्यपुर थाने की गश्ती पुलिस ने उसे देर रात घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया था। लोहरदगा के मंडल कारा में जेल अदालत, विधिक जागरूकता शिविर सह मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। इस दौरान डालसा सचिव मनोरंजन कुमार ने जेल में संचालित जेल विधिक सहायता क्लिनिक और शिशु गृह के बारे में जानकारी ली। जमशेदपुर में आयोजित झारखंड राज्य कबड्डी संघ की विशेष बैठक में वर्ष 2026-2030 के लिए नई कार्यकारिणी के गठन पर चर्चा की गई। महासचिव संजय कुमार झा की अध्यक्षता में हुई बैठक में निर्णय लिया गया कि जून के द्वितीय सप्ताह में चुनाव के माध्यम से नई कमेटी का गठन किया जाएगा। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: आकाशवाणी रांची से अभी आप सुन रहे थे समाचार मुख्यांश। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM बैंड के 102.4 MHz पर। इस समय शाम के 5:02 हो चुके हैं। श्रोताओं, चुके आज दिन रविवार है, इसलिए आइए सुनते हैं युवा श्रोताओं को संबोधित अंग्रेजी कार्यक्रम यूथ टाइम्स।

0: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 इयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
1: हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
4: And we are back. Well, that was Miley Cyrus reminding us of the power of self-care. Now, let's get down to the 5 non-negotiable steps for youth to handle and prevent hypertension, as guided by the Ministry of Health and Family Welfare. First, the 5-gram rule. Limit your daily salt intake to less than 5 grams. Second, move for 30. Engage in at least 30 minutes of moderate physical activity, 5 days a week. Third, the 7-hour reset. Aim for 7 to 8 hours of quality sleep on daily basis. Fourth, screen time breaks. Manage screen time and stay away as much as possible. Fifth, know your numbers. Do get your BP checked once a month, even if you feel perfectly healthy. Remember, your health is the very foundation of every success you will ever achieve. While physical health keeps our bodies strong, the strength of a nation lies in the power of mind. Stay tuned as we discuss why education for all is the ultimate tool for a brighter India.

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

कार्यक्रम यूथ टाइम्स अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है एफएम बैंड के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 5:30 हो चुके हैं और अब प्रस्तुत है श्रमिक श्रोताओं का अपना पसंदीदा कार्यक्रम कल का।

श्रोता साथी, कभी एक जमाना था जब चिट्ठियों के जवाब आने में कई दिन लग जाते थे। फिर आया टेलीफोन, उसके बाद मोबाइल फोन, इंटरनेट, और अब हम पहुंच चुके हैं 5G और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI के दौर में। आज तकनीक केवल सुविधा नहीं बल्कि हमारी जीवन शैली बन चुकी है। बात करते हैं श्रोताओं 5G की, तो 5G यानी 5वीं पीढ़ी की मोबाइल नेटवर्क तकनीक। ये सिर्फ तेज इंटरनेट नहीं बल्कि एक ऐसी क्रांति है जो हमारे काम करने, पढ़ने, इलाज कराने और संवाद करने के तरीके को पूरी तरह बदल रही है। यहीं से जुड़ता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI, जो मशीनों को सीखने और निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करती है। श्रोताओं, जब ये दोनों साथ आते हैं 5G और AI, तो तकनीक की ताकत कई गुना बढ़ जाती है। पर हर तकनीक के साथ चुनौतियां भी आती हैं, जैसे आंकड़े की सुरक्षा, निजता की समस्या। श्रोताओं, हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि हम तकनीक के गुलाम न बने, सिर्फ उसे अपनी मदद के लिए शामिल करें। समाज में डिजिटल शिक्षा और जागरूकता बेहद जरूरी है, क्योंकि इससे हर व्यक्ति हर वक्त डिजिटलीकरण के कारण जुड़ा रहेगा, संचार तेज होगा और स्मार्ट तरीके से होगा। समाज को आगे बढ़ाने के लिए नई नई तकनीकों का प्रयोग बेहद जरूरी है। जरूरत है संतुलन, समझदारी और जिम्मेदारी की, मानवता और मूल्यों को आगे रखने की।

0: बहरहाल श्रोताओं, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे कर्ज फिल्म के गीत के साथ। शब्द रचना आनंद बख्शी के, संगीत निर्देशन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, आवाजें किशोर कुमार और लता मंगेशकर की।
1: सोलह

0: श्रोता साथी, प्रत्येक वर्ष 17 मई को वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे मनाया जाता है ताकि इसके प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ाई जा सके। इस वर्ष इस दिवस का थीम है श्रोताओं, मिलकर उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करें। मिलकर उक्त रक्तचाप को नियंत्रित करें, नियमित रूप से रक्तचाप की जांच कराएं और इस साइलेंट किलर को हराएं। श्रोताओं, इसी विषय पर वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे के मौके पर आइए सुने भेंट वार्ता, रक्तचाप नियंत्रित कैसे रखें। जानकारी देंगे डॉक्टर निर्मल कुमार। आइए लेते हैं जानकारी इस भेंट वार्ता के जरिए। श्रोता साथी, मानव शरीर ईश्वर की एक अनुपम रचना है। इसमें आंतरिक अंगों और बाह्य यानी दृश्य अंगों के मेलजोल से ही व्यवस्थित रूप से कार्य होता है। एक मानव के शरीर में या मानव के द्वारा प्रत्येक अंग की अलग अलग विशेषता और अलग अलग कार्य, किसका महत्व ज्यादा है और किसका कम, ये मापना कठिन है। शरीर के अंदर संचरण करने वाला या बहने वाला तरल पदार्थ, जो शिराओं के द्वारा हृदय में जमा होता है और धमनियों के द्वारा पुनः हृदय से संपूर्ण शरीर में बहता है यानी परिसंचरण करता है, ये तरल पदार्थ ही रक्त है। ये रक्त के बहाव में एक दबाव होता है, इस दबाव को कहते हैं रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर। इसी विषय यानी रक्तचाप से संबंधित विषय पर अधिक जानकारी के लिए हमने आज स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर निर्मल कुमार को, जो शहर के जाने माने चिकित्सक हैं। तो डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार।
1: नमस्कार
0: डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि रक्तचाप क्या होता है।
1: जैसा कि आपने बताया अभी कि रक्त सबसे पहले हार्ट में आता है, वहाँ से रक्त धमनियों के द्वारा शरीर के प्रत्येक अंग में पहुँचता है, वहाँ पर ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन का फैलाव होता है उससे। तो उसके कारण जो रक्त के बहाव के कारण जो प्रेशर ब्लड वेसल वॉल पे होता है, उसी को रक्तचाप बोलते हैं।
0: तो हम जब बात कर रहे हैं ब्लड प्रेशर की, रक्तचाप की, तो ये जानना भी जरूरी हो जाता है डॉक्टर साहब कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए, क्योंकि लोग कहते हैं कि 80 और 120 के बीच में होना चाहिए, तो ये कितना सही है?
1: यह धारणा तो गलत है, क्योंकि ब्लड प्रेशर एक खास करके एक रेंज होता है। जैसे ऊपर वाली ब्लड प्रेशर को सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं और नीचे वाली ब्लड प्रेशर को डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं। तो बहुत से लोगों में ऐसा देखा गया है कि लोग समझते हैं कि ब्लड प्रेशर प्रत्येक व्यक्ति का 120/80 होना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। ऊपर का जो ब्लड प्रेशर जिसे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, उसका एक रेंज है, जैसे 90-140, ये बिल्कुल नॉर्मल रेंज के अंदर। तो कोई भी रीडिंग इसके बीच है तो वो नॉर्मल है। उसी तरह से नीचे वाली जो ब्लड प्रेशर है जिसे डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं, उसका रेंज है 60-90। सो कोई भी रीडिंग ऊपर के रेंज के और नीचे के रेंज में आता है, वो ब्लड प्रेशर नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। तो ये नंबर नहीं है, और प्रत्येक बार अगर ब्लड प्रेशर लिया जाएगा तो हर बार अलग अलग रीडिंग आएगा। ये नॉर्मल फेनोमेना है। ब्लड प्रेशर भी बहुत वैरी करता है, लेकिन शरीर की ऐसी संरचना है कि उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है कि सिस्टोलिक भी

0: कोई लक्षण नहीं होती है। पहला लक्षण ही एक तरह से कैटास्ट्रोफी के रूप में हो सकता है कि स्ट्रोक के रूप में हो, हार्ट अटैक के रूप में हो या किसी और कारण से। लेकिन कुछ लोगों में ऐसा देखा गया है कि ब्लड प्रेशर अधिक होने पर सर में भारीपन, चिड़चिड़ापन और नहीं तो फिर थोड़ा सा एनर्जी की कमी होना या काम करने की इच्छा ना होना, किसी किसी लोगों में थोड़ा चक्कर, सर हल्का लगना, ये सभी हो सकती है। कभी कभी अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ होता है तो नाक से खून भी चलने लगता है। ये एक तरह से भगवान का दिया हुआ डिफेंस मैकेनिज्म है, क्योंकि अगर मान लिया कि नाक में जो ब्लड प्रेशर था वो ब्लड प्रेशर बढ़ने के अंदर रप्चर किया, रप्चर के कारण नाक से ब्लड गिरा, लेकिन यही रप्चर के ब्रेन में हो जाएगा तो स्ट्रोक हो जाएगा, तो साधारण से एक तरह से गंभीर हो जाएगा, जान चली जाएगी, पैरालिसिस हो जाएगा। तो अगर नाक से ब्लड आ गया तो इसलिए जब कभी भी नाक से खून आता है तो निश्चित रूप से डॉक्टर से दिखाते हैं, उसका ब्लड प्रेशर निश्चित रूप से चेक करके देख लिया जाता है कि यह नाक से खून आया तो क्या ब्लड प्रेशर के कारण है या नाक के अंदर बहुत सी बीमारियां होती है जिसके कारण नाक से भी खून आती है। लेकिन सबसे पहले जरूरी है कि उसको ब्लड प्रेशर को चेक करना और अगर बढ़ा हुआ है तो उसे निश्चित रूप से कंट्रोल कर लेना ताकि किसी तरह के कोई दुष्प्रभाव ना हो।
1: अच्छा, मतलब हम बात कर रहे थे कि कितने प्रकार की समस्या होती है। एक आपने बताया उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर।
0: जी हाँ, हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर के कारण सिर्फ ब्रेन का ही स्ट्रोक ही नहीं, हार्ट पर भी प्रॉब्लम कर सकता है, जैसे कि उसको इस्कीमिक हार्ट डिजीज है, हार्ट फेलियर भी कर सकता है उसमें, या किडनी पर भी उसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। किडनी का फंक्शन जो होता है, अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहेगा तो निश्चित रूप से धीरे धीरे किडनी का फंक्शन गड़बड़ाने लगता है और किडनी में खराब होने की संभावना होती है। जिसमें ऐसा देखा गया है कि अगर मान लिया कि ब्लड प्रेशर के कारण किडनी में कोई खराबी हुई तो वो ब्लड प्रेशर के कारण किडनी में खराब हुई और किडनी जब खराब हुआ तो वो भी ब्लड प्रेशर बढ़ाने में मदद करता है। एक तरह से एक विशेष सर्किल है। तो इस विशेष सर्किल को तोड़ने के लिए निश्चित रूप से ब्लड प्रेशर कंट्रोल होना अत्यंत आवश्यक है।
1: अच्छा, तो ये तो हाई ब्लड प्रेशर की बात होगी। ब्लड प्रेशर यदि लो है तो कोई समस्या उत्पन्न होती है क्या?
0: सबसे पहली तो बात है कि जैसे मैंने कहा कि नीचे का जो रीडिंग है सिस्टोलिक का 90 और डायस्टोलिक का 60 होना चाहिए। कुछ लोगों में ऐसा है कि 90/60 से भी कम होता है और कोई लक्षण न हो, लेकिन साधारणतः ऐसी अवस्था में सर हल्का लगना, कमजोरी लगना, काम करने की इच्छा न होना या चक्कर आना, और कभी कभी अगर बहुत ज्यादा रक्तचाप नीचे चला जाता है तो बेहोशी भी हो सकती है।
1: अच्छा,
0: ऐसे हो सकती है। लो ब्लड प्रेशर के लिए कोई रीडिंग की बात नहीं है, बात है क्या पेशेंट को सिम्टम्स हो रहा है। किसी व्यक्ति को 90/60 में कोई सिम्टम नहीं होता है, लेकिन किसी व्यक्ति को 100/70 में भी सिम्टम्स हो रहा है तो उस शरीर है वो उसके लिए एक तरह से लो ब्लड प्रेशर की तरह से वो बिहेव करता है।
1: जी, तो इस लो ब्लड प्रेशर में, निम्न रक्तचाप में क्या कोई गंभीर परेशानी हो सकता है क्या?
0: ज्यादातर तो गंभीर नहीं होती है, लेकिन कभी कभी अगर मान लिया कि ब्लड प्रेशर मेंटेन नहीं रहा तो किडनी का फंक्शन एक स्पेसिफिक ब्लड प्रेशर पर अच्छा से काम करता है, नहीं होने पर हो सकता है उसका थोड़ा सा दुष्प्रभाव किडनी पर पड़े। लेकिन ऐसा है कि अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा लो हो जाएगा तो उसे बेहोशी की अवस्था भी हो सकती है, या इस तरह के मान लिया गिर गए तो दूसरे तरह का फ्रैक्चर हो जाए, इस तरह की बात हो सकती है।
1: अच्छा, चोट वगैरह लग
0: चोट लगती है। जी,
1: ये तो हम बात कर रहे थे कैसी समस्या हो सकती है रक्तचाप के कारण।
0: ब्लड प्रेशर के लिए मेंटेन करने के लिए बॉडी में एक ऑटो रेगुलेशन सिस्टम है, अगर वो बढ़ता है तो उसको कम करना जाता है और नीचे अगर होता है तो बढ़ना होता है। ये ऑटो रेगुलेशन बहुत ही सेंसिटिव मैकेनिज्म है, इसके द्वारा ब्लड प्रेशर मेंटेन होता है, जिसमें मल्टीपल फैक्टर्स आते हैं, जिसमें हॉर्मोन्स है और तरह की चीजें भी हैं, फ्लूइड का मात्रा हो या इलेक्ट्रोलाइट्स है, काफी चीजें का इसमें मिलान है और उसके कारण ये ब्लड प्रेशर मेंटेन रहता है। उसमें कहीं गड़बड़ी आने के कारण उच्च रक्तचाप या निम्न रक्तचाप हो जा सकता है।
1: अच्छा, और यदि ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो फिर क्या करना चाहिए?
0: अगर रक्तचाप बढ़ गया है तो निश्चित रूप से उसे कंट्रोल करने के लिए, और रक्तचाप कितना बढ़ा ये इम्पोर्टेंट है। कभी कभी रक्तचाप इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि इमीडिएटली ब्रेन में उसका इफेक्ट हो सकता है, आंख में इफेक्ट हो सकता है, विजुअल लॉस हो सकता है। तो इस सब को देखते हुए पहला चीज अधिक बढ़ा हुआ है तो निश्चित रूप से ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना है। कुछ इमरजेंसी है और कुछ अर्जेंसी है, दोनों बात होती है यहाँ पर। इमरजेंसी कहने मतलब हुआ कि इमीडिएटली जल्दी से जल्दी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जाए, लेकिन हड़बड़ा करके बहुत ज्यादा कंट्रोल भी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उसका ऑटो रेगुलेशन जो मैंने कहा भी उसका उस पर दुष्प्रभाव पड़ता है और उसके कारण हो सकता है कि ब्रेन उसका अफेक्ट हो, विजुअल लॉस हो, इस तरह से। तो एक स्पेसिफिक टाइम में कुछ ऐसी अवस्थाएं हैं जहाँ पे ब्लड प्रेशर इमीडिएटली विद इन आवर्स कंट्रोल करने की बात होती है, और कुछ ऐसी अवस्थाएं होती है जो कि दिन में बात करते हैं, 1-2 दिन में कंट्रोल करने के लिए, जैसे किसी को एक्सेलरेटेड ब्लड प्रेशर है या किसी को मैलिग्नेंट है, इसका मतलब है कि उसको ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना है। काफी ज्यादा है ब्लड प्रेशर, लेकिन कंट्रोल धीरे धीरे कुछ घंटों से लेकर के कुछ दिन में किया जाता है।
1: अच्छा।
0: जबकि इमरजेंसी में इमीडिएटली कंट्रोल करने की आवश्यकता,
1: इमीडिएटली। अच्छा, एक सवाल मेरे मन में आ रहा था कि कार्यालय में कोई व्यक्ति है या घर पे है और अचानक ये सिम्टम्स होने लगे, तो घर में कुछ ऐसा घरेलू उपचार या कुछ ऐसा कर सकते जिससे

0: थोड़ा सा
1: कंट्रोल
0: वो कंट्रोल में आए और उसको डॉक्टर के पास ले जाया जा सके।
1: एज सच ऐसा कोई उपाय तो नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि किसी तरह का फिजिकल वर्क कर रहा हो वो तो इमिडिएटली उसको रेस्ट में डाल
0: उसको
1: दें
0: रोक दिया
1: या लिटा
0: जाए।
1: दें, है ना, क्योंकि फिजिकल वर्क करने से मसल कंट्रैक्ट करता है, उसके कारण ब्लड प्रेशर बढ़ता है। एक तो वो कर सकते हैं, दूसरा थोड़ा सा उसको सांत्वना देकर रिलैक्स करने की कोशिश करें ताकि घबराए नहीं, और डॉक्टर की चिकित्सा उपलब्ध कराई जा रही है चाहे उन्हें अस्पताल ले जाया जा रहा है, ताकि उनमें एक तरह का फियर हो जाती है या डर हो गया तो उसका जो बुरा प्रभाव ब्रेन पर पड़ता है या ब्लड प्रेशर भी पड़ता है वह न हो, और
0: अच्छा।
1: इमीडिएटली डॉक्टर से संपर्क करके उसके ब्लड प्रेशर का रीडिंग देख करके उसके अनुसार उसको कंट्रोल करना भी अत्यंत आवश्यक है।
0: अच्छा, ये अचानक ये लक्षण उत्पन्न होने लगते हैं रक्तचाप बढ़ने या घटने के,
1: जी
0: तो उनको शारीरिक और मानसिक रिलैक्स करना ज्यादा जरूरी है कि रिलैक्स किया जाए और आगे उसको चिकित्सक के पास ले जाना भी जरूरी है। तो जो सवाल मैं आपसे कर रही थी कि कैसे मापा जाता है ये ब्लड प्रेशर को?
1: ब्लड प्रेशर मापने के लिए जो डॉक्टर लोग साधारणतः इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उसको स्फिग्मोमैनोमीटर बोलते हैं
0: जी।
1: तो और स्फिग्मोमैनोमीटर से ब्लड प्रेशर नापा जाता है, जिसमें सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक दोनों ही ब्लड प्रेशर मालूम हो जाती है। ऐसा भी देखा गया है कि बहुत लोग जो डॉक्टर के पास जाते हैं तो वहाँ पर उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ मिलता है, घबराहट है या चिंता है जो भी हो, और जब घर पर हैं या बाहर हैं तो वो ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है। इस तरह का जब होता है
0: डॉक्टर से दूरी से वो नॉर्मल हो जाता है।
1: हाँ जी, इसका स्पेसिफिक नाम इसे व्हाइट कोट हाइपरटेंशन बोलते हैं। मतलब डॉक्टर लोग व्हाइट कोट पहने हुए हैं वहाँ गए तो वो घबरा जाते हैं, जबकि व्हाइट कोट नर्सेज या दूसरे स्टाफ भी पहने रहते हैं तो वहाँ उनका ब्लड प्रेशर करीब ठीक ही आता है।
0: अच्छा अच्छा।
1: अगर ऐसे लोग हैं या मान लिया कि किसी व्यक्ति को ब्लड प्रेशर का इलाज किया जा रहा है और हर बार उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ आ रहा है, तो ऐसे हम लोग एडवाइस करते हैं कि होम मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड प्रेशर होना चाहिए। घर में अपने से इंस्ट्रूमेंट देख ले, उसमें डिजिटल आजकल काफी प्रचलित है, उसको करता है
0: आजकल लोग घर पे भी रखते हैं
1: और उस पर उसके रीडिंग पर कुछ शंकाएं होती है लोगों को, लेकिन साधारण तो दो दो मिनट के अंतर पर तीन रीडिंग लेकर के उसको एवरेज ले।
0: अच्छा।
1: तो अगर एक तो मैंने कहा व्हाइट कोट हाइपरटेंशन, दूसरा मैंने कह रहा था कि बहुत से लोगों को इलाज के रूप में है, इलाज चल रही है उनकी, लेकिन ब्लड प्रेशर हमेशा बढ़ा हुआ आ रहा है
0: जी।
1: तो ऐसे में और खास करके अगर मान लिया किसी का ब्लड प्रेशर अचानक बहुत नीचे हो जाए, जिसके लेवाइल हाइपरटेंशन बोलते हैं, अचानक ब्लड प्रेशर बहुत काफी बढ़ गया, अचानक कम हो गया, अगर ऐसी चीजें अगर किसी व्यक्ति में है या एग्जैक्टली जानना है कि दिन भर में ब्लड प्रेशर क्या चल रहा है, जैसे साधारणतः मॉर्निंग में ब्लड प्रेशर जो है वो कम रहता है, फिर धीरे धीरे बढ़ता है शाम में, रात में फिर उसको कम हो जाता है, तो फिर सुबह में फिर धीरे धीरे बढ़ता है, ये नॉर्मल फेनोमेना है
0: जी।
1: तो इस तरह की चीज को जानने के लिए एम्बुलेटरी बीपी मॉनिटरिंग करते हैं। एम्बुलेटरी मीन्स वो इंस्ट्रूमेंट उसके शरीर में लगा हुआ है और वो अपना दैनिक कार्य कर रहा है, दैनिक चल रहा है उसका, और बीपी उसका रिकॉर्ड होता चला जा रहा है, तो ये भी काफी मशहूर इंस्ट्रूमेंट है, तो इससे भी ब्लड प्रेशर नापा जाता है और काफी एक्यूरेट है। सिर्फ देखना ये है कि जो बीपी का रीडिंग ऑफिस में लिया गया है और इसमें जो लिया गया, तो तीन तरह की रीडिंग है, एक तो है कि एवरेज हुआ दिन रात 24 घंटे का, एक होता है सिर्फ दिन का रीडिंग देखना है, एक है सिर्फ रात का। तो जब इलाज की बात करते हैं तो साधारणतः दिन का जो रीडिंग है एम्बुलेटरी बीपी मॉनिटरिंग में उसका हम लोग रीडिंग के अनुसार इलाज करते हैं, न कि रात में क्या है और उसके अनुसार नहीं। तो ये भी काफी हेल्पफुल है और इसको धीरे धीरे लोग ज्यादा यूज करने लगे हैं और पेशेंट के लिए भी अच्छा है और एग्जैक्ट रीडिंग भी देता है और ट्रीटमेंट में भी बहुत
0: आसानी हो जाती है। हाँ, डॉक्टर्स के लिए भी ये सुविधाजनक हो जाता है। प्रेशर यदि हाई है या लो है तो आहार में क्या लेना चाहिए उन्हें?
1: अगर प्रेशर हाई है तो कारण में देखें तो क्या क्या कारण हो सकती है। एक तो कारण जैसे कि किसी को एंजाइटी टेंशन वरी है बहुत ज्यादा, काफी स्ट्रेस है उसको, या किसी व्यक्ति को मोटापा, काफी शरीर मोटापा है, या सिगरेट पी रहे हैं, और या फिर बहुत से लोगों को ऐसा देखा गया है कि मोटापा के साथ साथ अल्कोहल का काफी उपयोग करते हैं
0: जी।
1: तो ये सारी चीजों को जो है ना उसको देखना है कि उसको कंट्रोल करना है और उसको बंद करना है। दूसरी बात है खान पान में, अगर कोई व्यक्ति नमक की मात्रा बहुत ज्यादा यूज कर रहा है
0: जी।
1: या ऐसी चीजें खा रहा है जिससे कारण ब्लड प्रेशर बढ़ता है, तो उस पर भी ध्यान देना है। तो खाने पीने की चीज में जो हाई ब्लड प्रेशर के लिए सबसे अच्छा है वो है कि जहां तक हो सके फल और सब्जी की मात्रा अधिक होनी चाहिए
0: जी।
1: खाने में नमक की मात्रा 3 ग्राम से कम होनी चाहिए ताकि उसका ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रहे, और अगर मछली वगैरह का ऑयल होता है वो काफी लाभदायक है तो उसका भी सेवन कर सकते हैं।
0: खान पान पर ध्यान दें, आपका प्रेशर हाई है या लो है, आप अपने खान पान पर विशेष ध्यान दें
1: जी।
0: मतलब अपने आहार व्यवहार में आप ध्यान दें और साथ ही चिकित्सक के संपर्क में रहें। डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए और रक्तचाप से संबंधित इतनी अच्छी जानकारी हमारे श्रोताओं को दी, आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।

आप सुन रहे थे भेंट वार्ता, रक्तचाप नियंत्रित कैसे रखें। भेंट वार्ताकार थे डॉक्टर निर्मल कुमार। हम आपको बता दें श्रोताओं, इस भेंट वार्ता का पुनः प्रसारण किया गया। बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे। आया सावन झूम के फिल्म के गीत के साथ शब्द रचना आनंद बख्शी के, संगीत निर्देशन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, आवाजें मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की।

मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर को आपने सुना आया सावन झूम के फिल्म में। श्रोताओं, इसी के साथ कल कारखाने का आज का ये अंक यहीं संपन्न होता है। दीजिए अपनी दोस्त स्नेहलता को अनुमति। आप सभी को मेरा नमस्कार।

0: कार्यक्रम कल कारखाने अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है एफएम बैंड के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 6 बजने ही वाले हैं, अगली प्रस्तुति होगी आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से बस कुछ ही पलों में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 5 देशों की यात्रा के तीसरे चरण में स्वीडन के गोथेनबर्ग पहुंच गए हैं। स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। स्वीडन की 2 दिवसीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी आज अपने स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता आपसी संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे, साथ ही व्यापार, पर्यावरण अनुकूल विकास, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उभरती प्रौद्योगिकी, स्टार्टअप, मजबूत आपूर्ति श्रृंखला, रक्षा, अंतरिक्ष, जलवायु संरक्षण के प्रयास और आपसी संपर्क जैसे क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसरों पर भी चर्चा करेंगे। दोनों प्रधानमंत्री यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन के साथ यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को भी संयुक्त रूप से संबोधित करेंगे। गोथेनबर्ग रवाना होने से पहले नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रोब येटेन स्वयं एम्स्टर्डम हवाई अड्डे पहुंचे और प्रधानमंत्री मोदी को विदाई दी। नीदरलैंड्स की 2 दिवसीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रोब येटेन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों देशों ने रक्षा, महत्वपूर्ण खनिजों और अन्य प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए 17 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति और उसके वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति तथा व्यापार नेटवर्क पर पड़ रहे प्रभाव को लेकर गहरी चिंता भी व्यक्त की। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उनकी नीदरलैंड्स यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों को नई गति दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री रोब येटेन के साथ प्रसिद्ध अफ्सलाउटाइक बांध का भी दौरा किया। ये यात्रा गुजरात की महत्वाकांक्षी कल्पसर परियोजना के लिए भारत नीदरलैंड्स तकनीकी सहयोग की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। इस परियोजना के तहत खंबात की खाड़ी पर 30 किलोमीटर लंबा बांध बनाकर विशाल मीठे पानी का जलाशय तैयार किया जाएगा। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के गांधीनगर स्थित राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान में नवाचार और इंक्यूबेशन केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री शाह ने राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान के महत्व का उल्लेख करते हुए कहा कि एक ऐसा संस्थान है जो रचनात्मकता को उद्यमिता से जोड़ता है। उन्होंने कहा कि NID जैसे संस्थान युवाओं को नवाचार और कौशल विकास के लिए सही मंच प्रदान करते हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वर्चुअल माध्यम से बेंगलुरु और मुंबई के बीच नई एक्सप्रेस रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने कहा कि दक्षिण और उत्तर कर्नाटक के लोगों की लंबित मांगें अब पूरी हो रही हैं। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु और मुंबई के बीच वंदे भारत स्लीपर रेलगाड़ी जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। रेल मंत्रालय ने त्रिवेंद्रम नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस के 2 पिछले डिब्बों में लगी आग की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। मंत्रालय ने बताया कि डिब्बे की सुरक्षा प्रणाली के कारण ट्रेन स्वतः रुक गई। घटना में कोई भी यात्री घायल नहीं हुआ। जनगणना 2027 के लिए मकानों की गिनती का पहला चरण 5 राज्यों में शुरू हो गया है। इसके तहत राजस्थान, मेघालय, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली में मकानों की सूची तैयार की जाएगी। एक रिपोर्ट।
2: घर घर जाकर सूची तैयार करने का काम आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी चल रहा है। स्वगणना सुविधा आज से गुजरात, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पुदुचेरी में भी शुरू की गई है। ये सुविधा 31 मई तक उपलब्ध रहेगी। स्वगणना सुविधा उत्तर प्रदेश में भी जारी है जो 21 मई तक उपलब्ध रहेगी। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: भारत ने कहा है कि हॉर्मुज जल डमरू मध्य में व्यवसाय

0: नागरिक जहाजों पर हमले स्वीकार्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वत नैनी हरीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों को निशाना बनाने और जहाजों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को जायज नहीं ठहराया जा सकता। ईरान ने घोषणा की है कि रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हॉर्मुज जल डमरू मध्य से सैन्य उपकरणों से लदे शत्रु पोतों को गुजरने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय सुभद्रा रामचंद्रन।

0: when reports last came in. Earlier put into bat, Royal Challengers Bengaluru posted 222 runs for the loss of 4 wickets in their allotted 20 overs. In badminton, India Shreyansi Vali Shetty clinched the silver medal in women's singles at the Baoji China Masters in China today. She went down to local favourite An Chi Yuan in straight sets 14-21, 6-21 in the summit clash of the Super 100 event at Baoji City Gymnasium. And that is the end of this news bulletin.
1: समाचारों का प्रसारण आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है एफएम बैंड के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 6:10 हो चुके हैं और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम झारखंड के लोकगीत।
2: कार्यक्रम झारखंड के लोकगीत सुनने वाले सभी सुधीर श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार और जोहार। आइए सुनते हैं थॉमस बाजराय और साथियों के स्वर में मुंडारी लोकगीत।

0: पन होता है, निमेश को दीजिए अनुमति।
1: झारखंड के लोकगीत, ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है एफएम बैंड के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 6:20 होने ही वाले हैं। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।

संस्कृत में समाचार अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी दिल्ली से। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है एफएम बैंड के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय शाम के 6:30 हो चुके हैं और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि जगत।

0: एफएम बैंड के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर ज्ञान, सूचना, मनोरंजन और जानकारियों से भरपूर कार्यक्रम कृषि जगत सुनने वाले मेरे प्यारे किसान भाई बहनों, साथ ही कार्यक्रम सुन रहे सभी सुनी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार, जोहार और बहुत बहुत स्वागत। आज के ज्ञानवर्धक अंक के साथ हूँ मैं आपका रेडियो मित्र अनिमेश कुमार बक्सी।
1: बोल बोल के थक गया, क्या हुआ?
2: नया किडबैग चाहिए।
1: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
2: करेक्ट।
1: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर सीएमएस पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर सीएमएस पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर। चले ले आ गया नया किडबैग।
3: आरबीआई कहता है
4: पहले अपना बैंक फिर आरबीआई ओम्बुड्समैन।

0: कृषक मित्रों, आज के अंक में विश्व उच्च रक्तचाप दिवस पर स्वास्थ्य की देखभाल विषय पर सुनिएगा भेंटवार्ता। भेंटवार्ताकार होंगे बहरागोड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर उत्पल मुर्मू जी। लोकगीतों के साथ सुनिएगा जरूरी सूचनाएं और जानकारियां। लेकिन इन सबसे पहले बातें कर लेते हैं नमस्ते योजना के बारे में। कृषक मित्रों, नमस्ते योजना यानी नेशनल एक्शन फॉर मेकानाइज सैनिटेशन इकोसिस्टम भारत सरकार द्वारा सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई करने वाले कर्मचारियों की सुरक्षा और उत्थान के लिए चलाई जा रही एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य स्वच्छता कार्यों में होने वाली मौतों को शून्य करना और कर्मचारियों का मानव मल से सीधा संपर्क समाप्त करना है। इस योजना का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि सीवर और सेप्टिक टैंक की सभी सफाई का काम केवल कुशल श्रमिकों द्वारा और मशीनों या सुरक्षा उपकरणों की मदद से किया जाए। दूसरा, स्वास्थ्य बीमा कवर। इसके तहत चिन्हित सफाई कर्मचारियों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के माध्यम से स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाता है। तीसरा लक्ष्य है सुरक्षा उपकरण और प्रशिक्षण। कर्मचारियों को सुरक्षा किट प्रदान की जाती है और उन्हें मशीनीकृत उपकरणों के उपयोग के लिए प्रशिक्षित भी किया जाता है। चौथा है आर्थिक सहायता। इस योजना के तहत सफाई कर्मियों और उनके आश्रितों को स्वच्छता से संबंधित उपकरण या प्रोजेक्ट्स खरीदने के लिए पूंजीगत सब्सिडी और आसान ऋण भी प्रदान किए जाते हैं। मित्रों, आपको बता दूं कि इस योजना का कार्यान्वयन सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय तथा आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। मित्रों, यह थी जानकारी नमस्ते योजना के बारे में। और आइए अब थोड़ी बातें कर लेते हैं विश्व उच्च रक्तचाप दिवस के बारे में। कृषक मित्रों, बदलती जीवन शैली, बढ़ता तनाव और अनियमित खानपान के कारण हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर तेजी से लोगों को अपनी चपेट में लेता जा रहा है। और मित्रों, सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि बड़ी संख्या में लोगों को लंबे समय तक यह पता ही नहीं चलता कि वह इस बीमारी से जूझ रहे हैं। जब हृदय शरीर में रक्त का संचार करता है तो धमनियों पर एक दबाव पड़ता है जिससे ब्लड प्रेशर कहा जाता है। यदि यह दबाव लगातार सामान्य स्तर से ऊपर बना रहता है तो इसे हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। यह धीरे धीरे शरीर के महत्वपूर्ण अंगों को नुकसान पहुंचा सकता है। सामान्य ब्लड प्रेशर 120/80 होना चाहिए, जो कि आदर्श ब्लड प्रेशर यह माना जाता है। अगर किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर 130/80 के करीब पहुंच रहा है तो उसे सतर्क होने की जरूरत है। लगातार इससे ऊपर रहने पर हाइपरटेंशन की श्रेणी में रखा जाता है। हाई ब्लड प्रेशर को साइलेंट किलर भी कहा जाता है, क्योंकि शुरुआती चरण में इसमें कोई अस्पष्ट लक्षण दिखाई नहीं देते। लगभग 50% मरीजों को यह पता ही नहीं चलता कि उन्हें हाई ब्लड प्रेशर हो गया है। कई मामलों में हार्ट अटैक, स्ट्रोक या किडनी संबंधी समस्या के कारण जांच में यह बीमारी सामने आती है। इसी वजह से इसे साइलेंट किलर भी कहा जाता है। मित्रों, हाई ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखना बहुत ही जरूरी है और हमारी आज की जो भेंटवार्ता है वह इसी विषय से संदर्भित है। विषय है विश्व उच्च रक्तचाप दिवस पर स्वास्थ्य संबंधी देखभाल। भेंटवार्ताकार है डॉक्टर उत्पल मुर्मू जी, जो कि बहरागोड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थापित हैं, और इनसे बातचीत की है आपके रेडियो मित्र अनिमेश ने। आइए सुनते हैं यह महत्वपूर्ण भेंटवार्ता। ग्रामीण किसान भाई बहनों, आज के कार्यक्रम कृषि जगत में हम बातें करने वाले हैं विश्व रक्तचाप दिवस के बारे में। जी हाँ, आज 17 मई का दिन है और 17 मई को प्रतिवर्ष हम लोग विश्व रक्तचाप दिवस मनाते हैं। और विश्व रक्तचाप दिवस पर हम अपने स्वास्थ्य की देखभाल किस तरह से कर सकते हैं, इन सभी बातों पर जानकारियों को साझा कर रहे हैं डॉक्टर उत्पल मुर्मू जी, जो बहरागोड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थापित है। सर, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार।
1: थैंक यू सर। चलिए, आपने हमको सम्मिलित किया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: और सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे हमारे सभी सुनने वालों को और सभी किसान भाई बहनों को कि विश्व रक्तचाप दिवस पर स्वास्थ्य का ध्यान कैसे रखें?
1: विश्व रक्तचाप दिवस 17 मई को है, जो हर साल मनाया जाता है। तो इसके लिए जो अभी सबसे अधिक प्रॉब्लम हो गया, आपका 20% के आसपास जो है ना, हर 30 और 30 ईयर से ज्यादा वाला का जो ना कहीं ना कहीं आपको ब्लड प्रेशर मिल रहा है सर।
2: हाँ, हाँ,
1: ठीक है। और ये ब्लड प्रेशर जो है ना अभी उनके लिए जो है ना सही देखभाल सही इलाज जरूरी है, जिसके तहत एजे अगर मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज बारावड़ा से अगर बात करेंगे तो आपका हर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पीएससी में और हमारा HWC हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जिसको आम सेंटर बोलते हैं मेरा स्टाफ इसी चीज के लिए जो है ना दवाई और ब्लड प्रेशर का जो दिया जाता है। इसके साथ साथ जो है ना 30 और 30 साल से अधिक उम्र के जितना भी हमारे लाभार्थी है वो उनको जो है ना अपना ब्लड प्रेशर रेगुलर नियमित तौर से जांच कराना चाहिए। अगर कोई केस मिल जाता है ब्लड प्रेशर का एक जिसको नॉर्मल हम लोग बोलते हैं 120/70/80 लेकिन 140/90 अगर मिल जाता है यानी कि बॉर्डर लाइन में आ गया, उनको जो है ना नजदीकी आपका स्वास्थ्य केंद्र या CSC या PSC में जाकर जो है ना दवाई लेना चाहिए और ये मुफ्त सरकार की तरफ से मिल रहा है सर। और रही बात कि हर एक एक साल पर, ठीक है, 30 और 30 साल से अधिक उम्र वाले जितने भी लाभार्थी हैं उनको जो है ना अपना रक्तचाप नजदीकी अस्पताल में ये में जांच करवाना चाहिए सर। और ये दवाई शुरुआत में हम लोग 2 से 3 महीने के लिए देते हैं, उसके बाद फिर हम लोग फॉलोअप के लिए बुलाते हैं, फॉलोअप के बाद दवाई उससे सूट कर जाता है उससे ठीक हो जाता है तो फिर हम लोग जो है ना उसी को कंटिन्यू रखेंगे और इसी तरह जो है ना नियमित चलते रहता है सर। और रहा बात खान पान के लिए, खान पान जैसे हम लोग तेल चीज नहीं खाएंगे, मांस मछली नहीं खाएंगे, अधिक नमक नहीं खाएंगे और इसके साथ जो है ना एक छोटा कुछ एक्सरसाइज होता है, एक्सरसाइज को भी रेगुलर हम लोग करते रहेंगे और हमारा ये सब सेंटर में भी किया जाता है दिया जाता है और लोगों को भी हम लोग जो सरकारी डॉक्टर के अनुसार हमारे सेंटर में भी जो है ना लोगों को शिक्षित भी करते हैं कैसे योगा करना है नहीं करना है सर। ये सब करने से नियमित करने से जो है ना देखा गया है कि ये जो दवाई के साथ और ये योगा जो करेंगे और डॉक्टर के एडवाइस से देखे कि उम्र का परसेंटेज जो है ना वो लाभार्थी को ज्यादा बढ़ जाता है सर।
2: अच्छा, कौन कौन से योग और आसन करने चाहिए?
1: सर योग तो बहुत सारा है आपका, जैसे आपका क्या वज्रासन हो गया, पद्मासन हो गया, भुजंगासन है, सर्वासन है, इसको करने से जो है ना आपका जो है ना अगर बदनात या डाइजेशन और या मान लीजिए कि दूसरा कुछ बीमारी है साथ में ये सब जो है ना लाभ मिलेगा इससे भी।
2: और एक स्वस्थ मनुष्य की पहचान क्या होनी चाहिए?
1: सरल भाषा में बोलेंगे अगर बात कर रहा है सीधा से, टेंशन फ्री है, मुक्त है, हंस रहा है, खुश रहा है, खुशी हो रहा है और हम लोग से इंटरेक्ट कर रहा है, इसका मतलब हम लोग समझेंगे कि स्वस्थ है।
2: अच्छा, कई बार डॉक्टर साहब ऐसा देखा गया है कि जो बहुत बातचीत करने वाले लोग होते हैं उनमें सिम्टम्स पता ही नहीं चलता है कि उनमें मतलब हाइपरटेंशन की शिकायत हो गई है या फिर रक्तचाप जो है उनका बहुत ज्यादा बढ़ गया है, वो अचानक से चुपचाप रहने लग जाते हैं, तो इसके क्या कारण हो सकते हैं सर?
1: सर बिल्कुल सही मैंने ये कहा कि हर इंसान अगर 30 और 30 साल से उम्र ज्यादा है तो उनको एक बार ब्लड प्रेशर जो है ना चेक कराना चाहिए।
2: अच्छा।
1: और अभी जो देख रहे हैं कि 30 आपका 14 15 साल वाला बच्चे को भी मिल रहा है, क्यों? ये खान पान के चलते हो रहा है, जैसे हम लोग जो है ना फास्ट फूड खा रहे हैं, अंडा खा रहे हैं और करी खा रहे हैं, तो ये सब जो वजह है जिसके चलते जो है ना कोलेस्ट्रॉल हमारा शरीर में जमा हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल कहीं ना कहीं जो रक्त वाहिनी सब रक्त कोशिकाओं को जो है ना दिक्कत करवा दे रहा है जिसके चलते जो है ना ब्लड प्रेशर के रोग अग्रसित हो रहे हैं।
2: तो कोलेस्ट्रॉल के निदान के लिए अगर आपसे पूछा जाए तो क्या सलाह देना पसंद करेंगे?
1: सर तेलिया चीज नहीं खाना है, अंडा नहीं खाना, अंडा का पीला वाला भाग नहीं करना है, खस्सी मांस नहीं करना है, अवॉइड कीजिए है ना। बहुत अगर जरूरत है, अगर मन कर रहा है, इवन आपके पोल्ट्री भी नहीं खाना है, बहुत अगर मन कर रहा है तो आप जो है ना छोटा मछली खा सकते हैं या देसी चिकन एक आध दो पीस खा सकते हैं।
2: अच्छा, मतलब पूरी तरह से अपने आप को जो आपके मन की इच्छाएं हैं उनको आपको मारना नहीं है बल्कि उसको मात्रा को कम कर देना है।
1: कम करना है
2: तो कम करने से हम रक्तचाप की जो संबंधी बीमारियां होती हैं हम उनसे बच सकते हैं, टेंशन से तनाव से भी हम मुक्ति पा सकते हैं। अच्छा सर, ये एक चीज मैं पूछना चाहूंगा कि जिनमें प्रेशर की शिकायत होती है तो क्या तनाव उनमें अपने आप आ जाता है या फिर ये एक प्रक्रिया के तहत होता है?
1: आपका बात बिल्कुल सही है, प्रेशर के चलते तनाव भी आ सकता है और एक बार डॉक्टर अगर डायग्नोसिस कर देता है उसके बाद और भी तनाव आ जाता है।
2: हाँ,
1: आप कैसे खुश रह सकते हैं, आप कैसे तनाव को कम कर सकते हैं, जैसे आप बच्चों के साथ बिताइए समय, कुछ अगर अगल बगल आपको दुकानदारी जाना है या दूध लाने जाना है तो आप कोशिश कीजिए कि गाड़ी छोड़ के पैदल जाइए, घूमिए फिरिए, शाम का जो है ना इवनिंग वॉकिंग कीजिए। अगर जैसे एक पुराना जमाने में बोला जाता है कि जिस घर में पशु रहता है, भेड़ बकरी या गाय बैल रहता है, लोग चराते हैं, किसी ना या कुत्ता रहता है, किसी ना किसी माध्यम से जो है ना वो एक्सरसाइज होता है। एक्सरसाइज होने से क्या हुआ, ये हम लोग जो है ना पूरा अगर बोला जाए तो 1 किलोमीटर जाना है और 1 किलोमीटर ना, 2 किलोमीटर अगर डेली रोजाना अगर पैदल चल रहे हैं ना तो हमारा कहीं ना कहीं जो है ना शारीरिक संरचना में कोलेस्ट्रॉल जमा नहीं होगा, ये भी हम लोग नहीं कर पाते जिसके चलते जो है ना कोलेस्ट्रॉल जमा हो रहा है बस। और पहले के जमाना में ये सब गाय बैल भैंस बकरी है ना कुत्ता कहीं ना कहीं जो है ना चराना होता है, खिलाना पड़ता है, दाना देना पड़ता है, तो ये कुछ ना कुछ एक्सरसाइज होते रहता था जिसके चलते जो है ना उस जमाने के लोग जो है ना इस तरह की बीमारी से नहीं ग्रसित थे।
2: मतलब ये अगर जितना आप वॉक करोगे उतना आप स्वस्थ रहोगे
1: रहेंगे ये।
2: हाँ बिल्कुल, जितनी आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो जितना काइनेटिक होते चली जाएगी उतना आपका कोलेस्ट्रॉल जो है वो कम होता जाएगा
1: हाँ।
2: है ना, तो और क्या सलाह देना चाहेंगे, अभी आपको पूरी दुनिया सुन रही है, क्या सलाह देना चाहेंगे सभी देशवासियों?
1: सर इसमें हमारे जितना भी लाभार्थी भाई बंधु जो भी हो, हम बारागुड़ा से हैं, बारागुड़ा के अलावा अभी और लोग अगर जिला या राज्य या भारत सरकार के जो भी मेरे लाभार्थी भाई बंधु सुन रहे हैं, बस मैं एक ही सलाह लूंगा, आप लोग नियमित तौर से ब्लड प्रेशर की जांच कराइए और आपके जो है ना नजदीकी सब सेंटर में पीएससी में सीएससी में इवन एक की मेडिकल कॉलेज में भी जो है ना फ्री दवा या फ्री चेकअप हो रहा है, इवन एक जो है ना शहरी क्षेत्र में भी जो है ना कहीं छोटा मोटा क्लिनिक है वहां भी आप जांच कर सकते हैं। और ये जो है ना भारत सरकार ने तय किया हुआ मानक तय किया हुआ है, जो मिनिमम जो दवाई चाहिए जिसमें हम लोग ब्लड प्रेशर के लिए जैसे आपके एम्लोडिपिन हो गया, एटिनल हो गया, एटोरबा हो गया, ये दवाई आपका वहाँ है सर, और आपको जो है ना फ्री ऑफकोर्स ये दवाई मिलेगा और मिलता भी है, और हमको नहीं लग रहा है कि जो ब्लड प्रेशर चेक करने में ज्यादा दिक्कत है, बस आप नियमित जांच

0: कैसे स्वस्थ रखें, किस तरीके से अपने दिनचर्या को हम नियंत्रित करें, व्यवस्थित करें, और कौन कौन से प्राणायाम, कौन कौन से आसन करें, और इमरजेंसी में कौन कौन सी दवाएं अपने पास रखें, इस सारी बातों को, सारी जानकारियों को साझा कर रहे थे तो हमारे साथ डॉक्टर साहब। इतनी महत्वपूर्ण जानकारियों को साझा करने के लिए और हमारे कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आपका पूरी आकाशवाणी परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।
1: सर आप सभी को बहुत धन्यवाद, और मैंने कुछ टिप्स दिया है, आप लोग अगर नियमित तौर निजी डेली की जिंदगी में अपनाइएगा तो आप खुशहाल रहिएगा सर। थैंक यू।
2: किसान भाई बहनों, अभी आप विश्व उच्च रक्तचाप दिवस पर स्वास्थ्य संबंधी देखभाल विषय पर डॉक्टर उत्पल मुर्मू जी से ली गई भेंट वार्ता का प्रसारण सुन रहे थे। बाह्य ध्वनि अंकन पर आधारित थी यह भेंट वार्ता। आगे बढ़ने से पहले सुनते हैं कुछ संदेश।
3: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
4: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
3: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
4: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
3: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
4: 8700001-4242।
5: बोल बोल के थक गया। क्या हुआ? नया किडबैग चाहिए तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
6: करेक्ट।
5: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी ना मंजूर। चले ले आ गया नया किडबैग।
7: RBI कहता है
8: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।

किसान भाई बहनों, अभी आप मीनू शाही और साथियों के स्वर में ये राष्ट्र भक्ति से ओतप्रोत भोजपुरी लोकगीत सुन रहे थे। और आइए अब थोड़ी बातें कर लेते हैं खरीफ फसलों की एमएसपी के बारे में। मित्रों, केंद्र सरकार ने खरीफ विपणन सीजन 2026-27 के लिए सभी 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी में बढ़ोतरी की मंजूरी दे दी है। धान की एमएसपी 72 रुपए बढ़ाकर 2441 रुपए प्रति क्विंटल और धान ग्रेड ए का एमएसपी 2461 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। आइए एक नजर खरीफ एमएसपी पर डाल लेते हैं। धान सामान्य 2441 रुपए प्रति क्विंटल, धान ग्रेड ए 2461 रुपए प्रति क्विंटल, बाजरा 2900 रुपए प्रति क्विंटल, मक्का 2410 रुपए प्रति क्विंटल, ज्वार हाइब्रिड 4073 रुपए प्रति क्विंटल, ज्वार मालदंडी 4103 रुपए प्रति क्विंटल, रागी 5205 रुपए प्रति क्विंटल। दलहन की बात करें तो अरहर 8450 रुपए प्रति क्विंटल, मूंग 8780 रुपए प्रति क्विंटल, उड़द की बात करें तो 8200 रुपए प्रति क्विंटल, कुलथी 8200 रुपए प्रति क्विंटल, तिलहन की बात करें तो तिल 10346 रुपए प्रति क्विंटल, सूरजमुखी के बीज 8343 रुपए प्रति क्विंटल, मूंगफली 7517 रुपए प्रति क्विंटल, सोयाबीन 5708 रुपए प्रति क्विंटल और राम तिल 8267 रुपए प्रति क्विंटल। नकदी फसल की बात की जाए तो कपास में मध्यम रेशा की कीमत है 8667 रुपए प्रति क्विंटल और कपास लंबा रेशा की कीमत है 8867 रुपए प्रति क्विंटल। मित्रों, इस महत्वपूर्ण जानकारी के बाद एक नजर बाजार भाव पर डाल लेते हैं। कृषि उत्पादन बाजार समिति परसोडी जिला पूर्वी सिंहभूम से प्राप्त बाजार भाव कुछ इस तरह से है। चावल में उसना उत्तम किस्म का भाव रहा 5870 रुपए से 5890 रुपए प्रति क्विंटल, मध्यम 3780 से 3790 रुपए प्रति क्विंटल, अन्य 3270 से 3345 रुपए प्रति क्विंटल, अरवा उत्तम किस्म का भाव रहा 5890 से 6280 रुपए, मध्यम 3879 से 4470 और अन्य 3478 से 3557 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं दालों में अरहर का भाव रहा 12290 से 12349, चना दाल का भाव रहा 8669 से 9455 रुपए प्रति क्विंटल, मसूर दाल का भाव रहा 7987 रुपए से 8998 रुपए प्रति क्विंटल, मूंग दाल का भाव रहा 11534 से 11875 रुपए प्रति क्विंटल। कृषक मित्रों, यह थी बाजार भाव की सूचना। मित्रों, यह समय मशरूम उत्पादन के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। मशरूम बहुत ही पौष्टिक आहार माना जाता है और इसकी खेती प्रायः सभी किसान भाई बहन करते हैं। इसके लिए विशेष प्रशिक्षण की भी आवश्यकता होती है। आप अपने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र में जाकर मशरूम उत्पादन के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और इसकी खेती कर अपनी आर्थिक स्थिति को भी मजबूत कर सकते हैं। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यह समय जो है वो विश्व में तनातनी का चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में हम अपने देश की बागडोर को कैसे संभाले, अपने घर के बजट को कैसे संभाले, इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। कम तेल में कैसे हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी की बचत कर सकते हैं, इस पर भी ध्यान देने की हम सबों की आवश्यकता है। तेल बचत भी आज के समय की आवश्यकता है और भविष्य के आने वाले जो परिस्थितियां हैं उस पर भी ये रोक लग सकती है। तो किसान भाई बहनों, इस जानकारी के बाद ही आज का कार्यक्रम कृषि जगत बस यहीं तक। अपने रेडियो में तन्मेश को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

कार्यक्रम कृषि जगत अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है एफएम बैंड के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 6:55 हो चुके हैं। अगली प्रस्तुति होगी आकाशवाणी रांची से, जहां से आप सुनेंगे

0: अभी आप सुन रहे थे खेतीबाड़ी और हमारी दुनिया। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। प्रादेशिक समाचार कुछ ही पलों में।
1: तीन महीने में पैसे डबल,
2: वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी।
1: क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ
3: और कल होगा भी नहीं।
1: तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है?
4: ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं।
1: और RBI कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे।
3: और फास्ट रिटर्न से बच के
1: और फास्ट बॉलिंग से भी।
5: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: दी, ये देख कैसे?
2: हैप्पी बर्थडे भाई।
1: दीका,
3: हाँ मेरा फेवरेट कलर
2: हमेशा शॉपिंग।
4: आई नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है, राइट?
5: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
6: आई नो पा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
4: आई नो ना,
6: RBI कहता है
7: करो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
8: प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस के यात्रियों
9: को तुमने इसे मोबाइल चार्ज करना,
2: दिमाग चार्ज कर रखना।
6: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक।
2: देखा
4: पापा, रुको मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल,
6: अब क्या करोगे?
4: तेरी वाईफाई है ना?
2: बुद्धू सुधर जा।
6: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई,
4: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय।
6: RBI कहता है
7: करो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है, आइए सुनते हैं प्रादेशिक समाचार।
2: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूजा कुमारी। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने कहा है कि CBSE 12वीं की परीक्षा में ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली से मूल्यांकन में बढ़ी है पारदर्शिता। गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे ने आज देवघर जिले के रोहिणी नावाडी में रेलवे ओवरब्रिज का किया उद्घाटन। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने रांची के होटवार केंद्रीय जेल में बंद एक महिला कैदी के साथ हुए यौन शोषण का उठाया मुद्दा, की कार्रवाई की मांग। मौसम में बदलाव जारी, राज्य का सबसे ठंडा जिला रहा लातेहार, वहीं पलामू राज्य का सबसे गर्म जिला रहा। और धनबाद में आयोजित 5वीं झारखंड स्टेट किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में रांची जिले के खिलाड़ियों ने किया शानदार प्रदर्शन, कई स्वर्ण पदक अपने नाम किए। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने कहा है कि CBSE की 12वीं की परीक्षा में ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली से मूल्यांकन में पारदर्शिता और निष्पक्षता बढ़ी है। 12वीं के परिणामों पर आज नई दिल्ली में स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव संजय कुमार ने बताया कि विद्यार्थियों ने मार्किंग और उत्तीर्णता प्रतिशत में मामूली गिरावट पर चिंता जताई है। सचिव ने बताया कि CBSE ने इस वर्ष ऐसी प्रणाली लागू की है जिससे मूल्यांकन में अधिक पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित होती है। सचिव ने कहा कि CBSE ने पुनर्मूल्यांकन शुल्क कम कर दिया है।
1: CBSE ने वर्ष 2014 में OSM की शुरुआत किया था और इसको हम लोगों ने इस वर्ष रीइंट्रोड्यूस किया है। OSM विश्व में ऐसे बहुत से इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके द्वारा ये किया जा रहा है और ये एक नॉर्म है जो विदेशों में भी बन गया है, क्योंकि इसमें टेक्नोलॉजी के माध्यम से पूरी सिस्टम को ट्रांसपेरेंटली तरीके से कर पाने के लिए हम सक्षम हो पाते हैं।
0: सिमडेगा के महुआबुआंग थाना में पदस्थापित एक जवान की अपने ही हथियार से गोली लगने से मौत हो गई है। वहीं रांची जिले के तिरगा गांव में के रहने वाले थे। घटना उस वक्त की हुई जब जवान अपने हथियार की सफाई कर रहे थे। जिले के पुलिस अधीक्षक श्रीकांत एस खोटरे ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला दुर्घटनावश गोली चलने का प्रतीत हो रहा है।
2: माधवन थाना से अपना प्राथमिक इसमें आरक्षी राजू तिरपिन में प्रतियुक्त उनके अपने हथियार से गोली लगने के कारण मृत्यु हुई है। प्रथम दृष्टया एक्सीडेंटल पाने का मामला सामने आ रहा है।
0: रांची और आसपास के इलाकों में अपराध का अंकुश लगाने के लिए रांची पुलिस ने कल रात बड़ा अभियान चलाया। वरीय पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन के निर्देश पर जिले भर में ऑपरेशन प्रहार के तहत एक साथ छापेमारी की गई। इस कार्रवाई में 100 से अधिक अपराधियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि 220 से ज्यादा लंबित वारंटों का निष्पादन भी किया गया। इस संबंध में वरीय पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पुलिस टीमों ने अलग अलग थाना क्षेत्रों में दबिश देकर फरार अपराधियों, वारंटियों और संदिग्धों को गिरफ्तार किया। गढ़वा में जनगणना के प्रथम चरण का कार्य आज से शुरू हो गया है। गढ़वा के उपायुक्त अनन्य मित्तल ने बताया कि कर्मचारी शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में घर घर जाकर सर्वेक्षण कार्य कर रहे हैं तथा परिवारों से आवश्यक जानकारियां एकत्रित कर रहे हैं। जिला प्रशासन की ओर से इस महत्वपूर्ण कार्य को सफलतापूर्वक सम्पन्न कराने के लिए पूरी तैयारियाँ की गयी। राज्य में संचालित केंद्र सरकार की नल जल योजना पर भाजपा और कांग्रेस आमने सामने आ गई है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने राज्य सरकार पर नल जल योजना को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाने का आरोप लगाते हुए कहा कि इस योजना के लिए सरकार के पास खजाने में 7,000 करोड़ पड़े हुए हैं, लेकिन खर्च नहीं किए जा रहे हैं।
3: नल जल योजना जो माननीय प्रधानमंत्री जी का महत्वाकांक्षी योजना है, सारे देश के सारे राज्यों में योजना बहुत अच्छे प्रकार से प्रत्येक घरों के दरवाजे तक पहुंची है, लेकिन झारखंड में योजनाएं फिसड्डी साबित हुई है। आज भी सरकार के खजाने में 7,000 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं, तो उस पैसे को खर्च करने की इनमें मादा नहीं है। जो पैसे खर्च किए गए हैं इस योजना में, उस पैसे को भी भ्रष्टाचार के आखंड में डुबाने का काम किया।
0: इस मामले में मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने भाजपा के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि केंद्र सरकार राज्य को भीख नहीं दे रही है, यह हमारा अधिकार है।
4: जल नल योजना किसकी है? केंद्र की है। केंद्र अपनी राशि दे रही है, राज्य सरकार अपनी राशि दे रही है, और राज्य की ये परेशानी है कि जब तक केंद्र अपना आवंटन नहीं करता, राज्य अपने हिस्से का पैसा उस प्रोजेक्ट में नहीं लगा सकता है। और कोई हम लोग किसी से भीख तो नहीं मांग रहे, ये हमारा अधिकार है, केंद्र हम लोगों पर कोई मेहरबानी नहीं कर रही, लेकिन जो एक भ्रम फैलाने का ये लोग प्रयास करते हैं।
0: झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा के साथ पिछले दिनों चाईबासा परिसदन में जिला प्रशासन की ओर से किए गए कथित उपेक्षापूर्ण व्यवहार पर भाजपा ने कड़ा ऐतराज जताया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने आज सोशल मीडिया पर कहा है कि किसी का पद स्थायी नहीं होता, लेकिन लोकतांत्रिक परंपरा हर हाल में कायम रहनी चाहिए। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि अर्जुन मुंडा के साथ जिस प्रकार का व्यवहार किया गया वह केवल एक व्यक्ति का नहीं बल्कि लोकतांत्रिक परंपराओं, प्रशासनिक मर्यादाओं और जनजातीय समाज के सम्मान का भी विषय है। श्री साहू ने आगे कहा कि इसके पहले चाईबासा उपायुक्त की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री मधुकोड़ा के साथ भी असम्मानजनक व्यवहार किया जा चुका है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में जनगणना 2027 के चल रहे पहले चरण, मकान सूचीकरण और आवास गणना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम में गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कार्यालय में उप रजिस्ट्रार जनरल V.A. वारड़े स्टूडियो में मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी पूछ सकते हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने रांची के होटवार केंद्रीय जेल में बंद एक महिला कैदी के साथ जेल अधीक्षक के द्वारा यौन शोषण और गर्भवती किए जाने का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जेल IG मामले को दबाने, फाइलें गायब करने और सबूत मिटाने के लिए महिला कैदी को गुप्त स्थानों व अस्पतालों में ले जा रहे हैं, जबकि गवाह कर्मियों का तबादला कर उन्हें चुप कराया जा रहा है। श्री मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को चेतावनी दी कि यदि दोषी अधिकारियों को बर्खास्त कर गिरफ्तार नहीं किया गया तो यह माना जाएगा कि सरकार भी इस कृत्य में शामिल है। उन्होंने राष्ट्रीय महिला आयोग, मानवाधिकार आयोग और उच्चतम न्यायालय से संज्ञान लेकर झारखंड की जेलों में महिला कैदियों के उत्पीड़न पर कार्रवाई की मांग की है। गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे ने आज देवघर जिले के रोहिणी नावाड़ी में रेलवे ओवरब्रिज का उद्घाटन किया। इसका निर्माण प्रधानमंत्री के विकसित भारत 2047 के मिशन अंतर्गत किया गया है। मौके पर सांसद ने कहा कि इस रेलवे ओवरब्रिज के चालू होने से देवघर से एम्स और रांची की दूरी कम होगी। वहीं लोगों ने इस कार्य के लिए रेल मंत्री वैष्णव के प्रति आभार व्यक्त किया है। झारखंड में मौसम लगातार करवट बदल रहा है। पिछले 15 दिनों से राज्य के विभिन्न जिलों में हो रही बारिश के कारण लोगों को भीषण गर्मी से काफी राहत मिली है। आज राज्य का सबसे ठंडा जिला लातेहार रहा, जहां अधिकतम तापमान 33.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं पलामू राज्य का सबसे गर्म जिला रहा, जहां अधिकतम तापमान 41.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। राजधानी रांची समेत कई जिलों में बीते दिनों हुई बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे मौसम अपेक्षाकृत सुहावना बना हुआ है। लोहरदगा जिला के 47वें स्थापना दिवस के अवसर पर आज जिला प्रशासन की ओर से रन फॉर लोहरदगा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवा, विद्यार्थी और आम नागरिकों ने भाग लिया। इस अवसर पर उपायुक्त संदीप कुमार मीना ने युवाओं से अपील करते हुए कहा कि स्वास्थ्य के प्रति सजग रहकर खेल कूद को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना चाहिए। जमशेदपुर में आयोजित झारखंड राज्य कबड्डी संघ की विशेष बैठक में वर्ष 2026-2030 के लिए नए कार्यकारिणी के गठन पर चर्चा की गई। महासचिव संजय कुमार झा की अध्यक्षता में हुई बैठक में निर्णय लिया गया कि जून के द्वितीय सप्ताह में चुनाव के माध्यम से नई कमेटी का गठन किया जाएगा। बैठक में सभी जिला कबड्डी संघों को 31 मई तक अपनी बैठकों का आयोजन कर वार्षिक कार्यक्रमों की रूपरेखा राज्य संघ को सौंपने का निर्देश दिया गया। वहीं वर्ष 2026-27 के खेल कैलेंडर को सर्वसम्मति से मंजूरी दी गई और सीनियर राज्य कबड्डी प्रतियोगिता 4 जून से धनबाद में आयोजित करने का फैसला किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने कहा है कि CBSE 12वीं की परीक्षा में ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली से मूल्यांकन में बढ़ी है पारदर्शिता। गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे ने आज देवघर जिले के रोहिणी नावड़ी में रेलवे ओवरब्रिज का किया उद्घाटन। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने रांची के होटवार केंद्रीय जेल में बंद एक महिला कैदी के साथ हुए यौन शोषण का उठाया मुद्दा, की कार्रवाई की मांग। मौसम में बदलाव जारी, राज्य का सबसे ठंडा जिला रहा लातेहार, वहीं पलामू राज्य का सबसे गर्म जिला रहा। और धनबाद में आयोजित 5वीं झारखंड स्टेट किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में रांची जिले के खिलाड़ियों ने किया शानदार प्रदर्शन, कई स्वर्ण पदक अपने नाम किए। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
5: ये आकाशवाणी रांची है, आइए सुनते हैं जिले में आजकल।
6: जिले में आजकल।

0: इस अंक में आप सुनेंगे सिमडेगा जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे सिमडेगा संवाददाता।
1: झारखंड अधिविद्य परिषद द्वारा इस वर्ष आयोजित इंटरमीडिएट की परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले सिमडेगा जिले के टॉप 10 विद्यार्थियों को उपायुक्त कंचन सिंह ने अपने आवासीय परिसर में सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि
2: 12th के एग्जाम में सिमडेगा के बच्चों ने अच्छा प्रदर्शन किया, विशेषकर से वाणिज्य और कला के क्षेत्र में जो बच्चे थे उनका प्रदर्शन बहुत ही अच्छा रहा। और वाणिज्य में तो हमारे ही जिले का एक बच्चा स्टेट टॉपर भी है, तो उनको सम्मानित करने के लिए, उनको प्रेरित करने के लिए और आगे बढ़ने की शुभकामनाएं देने के लिए आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स तीनों के जो टॉपर्स बच्चे थे उनको आज मैंने अपने आवास पर बुलाया था ताकि उनके साथ कुछ समय व्यतीत कर सकूँ, उनके भविष्य के लिए मोटिवेट कर सकूँ और उनके घर कुछ समस्याएं हैं तो उनका समाधान कैसे प्रशासन कर सकता है इसके बारे में जान सकते। हर पंचायत भवन में एक ज्ञान केंद्र है जिसमें कि काफ़ी संख्या में पुस्तकें हैं, कंप्यूटर है, इंटरनेट है और उसकी सुविधा का लाभ बच्चे उठा सकते हैं, ना सिर्फ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बल्कि सामान्य रूप से भी अगर उनको घर में पढ़ने का माहौल नहीं है तो वहाँ पर उनको एक बेहतर माहौल मिलेगा, फिर पढ़ाई कर सकते।
1: सिमडेगा नगर परिषद के अध्यक्ष ओलिवर लकड़ा ने नगर परिषद क्षेत्र में सभी आवश्यक जन सुविधाएं उपलब्ध कराने की बात कही है। नगर परिषद की एक बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि
3: नगर परिषद एरिया, उस एरिया में जितना स्कूलें हैं विद्यार्थियों के लिए भी कुछ हम लोग प्रोग्राम लाए हैं, एक्टिविटीज लाए हैं जो कि ये सिमडेगा नगर परिषद के लिए पहला मतलब ऐसा पहल है, चाहे वह शिक्षा के क्षेत्र में बोले चाहे वह खेल के क्षेत्र में बोले, ये हमारे बोर्ड की बैठक में सर्वसम्मति से ये पारित किया गया है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देशवासियों से खर्चों में कटौती को लेकर की गई अपील पर सिमडेगा वासी सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं। शिक्षक पुरुषोत्तम कुमार ने कहा कि वैश्विक स्थिति को देखते हुए हमें पहले से ही सावधानी बरतने की जरूरत है।
4: ये इस विषय में कहावत है, आग लगने से पहले कुआं कोड़ना चाहिए, तो ये कहावत जो है हमारे मुखिया है प्रधानमंत्री जी और वे पहले ही लोगों को हिदायत कर रहे हैं कि हमें जो है सो उपाय ये है कि वे जैसे घर के बजट को, घर का मुखिया जो है सो सोचता है कि हम किस प्रकार से घर को चलाएंगे उसका पहले से ही व्यवस्था करने का उपाय सोचता है। इसी प्रकार हमारे देश के प्रधानमंत्री जो हैं लोगों को कह रहे हैं कि ईरान, इजराइल, अमेरिका में जो युद्ध चल रहा है इस युद्ध के चलते जो है हमारा खर्च में जो हो जाएगा उस खर्च को बचाने के लिए कटौती करने के लिए कह रहे हैं कि कुछ हमारे जो है सो इस प्रकार बचत करें। आज युद्ध हो रहा है, कब तक चलेगा कहना मुश्किल है, अपना बजट को बचा करके चले, आने वाला समय में हमें काम दे, इसलिए इनका अपील बहुत ही अच्छा है लोगों के लिए, इनको हमें अमल करना चाहिए।
1: सिमडेगा जिले में जनगणना 2027 के तहत प्रथम चरण में 16 मई से 14 जून तक मकान सूचीकरण एवं आवास संबंधी जानकारी संकलित की जा रही है। मनोज कुमार सिन्हा, मनु, आकाशवाणी समाचार, सिमडेगा।
0: अभी आप सुन रहे थे सिमडेगा जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

जिले में आजकल ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है एफएम बैंड के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 7:15 हो चुके हैं और अब प्रस्तुत है बांग्ला कार्यक्रम।

0: मान रहे हैं। समुद्र की ऊपरी परत को उसका सतह कहते हैं। यही दुनिया भर के मौसम पैटर्न, समुद्र की पारिस्थितिकी तंत्र और वैश्विक जलवायु को प्रभावित करती है। दुनिया भर के वैज्ञानिक अलग अलग महासागरों की सतह के तापमान के डेटा को इकट्ठा कर जलवायु मॉडल तैयार करते हैं, जिससे उन्हें मौसम का पैटर्न समझने में मदद मिलती है। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये जलवायु संकट अब भविष्य की चेतावनी नहीं बल्कि वर्तमान की वास्तविकता है। अगर समुद्री तापमान यूं ही बढ़ना जारी रहा तो मौसम पैटर्न बदल जाएगा। उन्होंने बताया कि समुद्री हीट वेव बढ़ती जा रही है, आर्कटिक की बर्फ तेजी से घट रही है, यूरोप समेत कई क्षेत्रों में तापमान और बारिश का पैटर्न बदल रहा है, जो इस बात का संकेत है कि दुनिया की जलवायु चरम स्थितियों की ओर जा रही है। ऐसा लगातार होता रहा तो कई गंभीर खतरों से सामना करना पड़ सकता है। प्रकृति में कोई भी ऐसा तत्व या ऐसे कोई भी जीव नहीं है जिनकी आवश्यकता ना हो, लेकिन इन दिनों होने वाले जैव विविधता में कमी पर्यावरण के लिए संकट बन सकता है। जैव विविधता पर मंडराते हुए खतरों के बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं अमर सिंह। तो आइए सुनते हैं ये वार्ता।
1: विभिन्न सिद्धांतों के अनुसार पृथ्वी का विकास लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले माना गया है। पृथ्वी के विकास के लगभग 50 लाख वर्षों के बाद विभिन्न प्रजाति के जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों की उत्पत्ति आरंभ हुई। कालांतर में पृथ्वी पर अनेकों प्रकार के जीव जंतु एवं वनस्पतियों की उत्पत्ति कार्बनिक विकास के फलस्वरूप होती गई एवं करोड़ों प्रकार के जीव जंतु एवं वनस्पति आज इस पृथ्वी पर पाए जाते हैं, जिनकी संख्या का सही सही आंकड़ा अभी भी स्पष्ट नहीं है। जैव विविधता का विकास करोड़ों सालों के अनेकों भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तनों, विभिन्न खगोलीय घटनाओं एवं उत्परिवर्तनों के फलस्वरूप हुआ है। ये जीव जंतु एवं वनस्पति अपने रूप रंग संरचना एवं आकार में अलग अलग होते हैं, अर्थात इनमें विभिन्नता देखने को मिलती है। जीव जंतुओं अथवा वनस्पतियों में पाई जाने वाली इसी विभिन्नता को जैव विविधता कहते हैं, जिसे अनेकों प्रकार से परिभाषित किया गया है। यह जैव विविधता मुख्यतः तीन प्रकार की होती है, आनुवांशिक, प्रजातीय एवं पारिस्थितिकी। प्रकृति अपने जीवों में विभिन्नता लाना चाहती है, क्योंकि विभिन्नता के कारण जीवों के जीवन जीने की क्षमता एवं संभावनाएं बढ़ जाती हैं। जीव जंतु एवं वनस्पतियों के बीच घनिष्ठ संबंध होता है, जो पारस्परिक संबंध बनाते हुए एक दूसरे की जीवन संभावनाओं को बढ़ाते हैं। कई कारणों से आज के इस युग में दुर्भाग्य से जैव विविधता पर खतरे मंडरा रहे हैं। इन कारणों को मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, प्राकृतिक एवं मानव निर्मित। किसी भी जीव जंतु एवं वनस्पति की बाह्य और आंतरिक संरचनाएं इस प्रकार बनी होती हैं कि वे उस स्थान के वातावरण के कारकों की उपलब्धता के अनुरूप अनुकूलित रह सकें एवं उनके साथ सामंजस्य स्थापित कर सकें, और तभी वे जीव जंतु या वनस्पति वहां जिंदा रह सकते हैं। अनुकूलन एवं सामंजस्य के अभाव में जीवों को या तो अपनी संरचनाओं में बदलाव कर वहां के वातावरण के अनुरूप सामंजस्य बनाए रखते हुए अनुकूलित होना पड़ता है, या उस स्थान से भागना पड़ता है, अन्यथा उनकी मृत्यु हो जाती है। प्राकृतिक कारणों की अगर हम चर्चा करें तो यह समझना पड़ेगा कि पृथ्वी के वातावरण के विभिन्न कारक जैसे हवा, तापक्रम, आर्द्रता, रोशनी, जलवायु इत्यादि स्थिर अथवा एक जैसे नहीं रहते एवं उनमें बदलाव होते रहते हैं। अतः वातावरण के अनुसार अनुकूलित होने के लिए जीवों के शारीरिक संरचना में भी बदलाव लाने पड़ते हैं। जो जीव या वनस्पति बदलते वातावरण के अनुरूप अपनी शारीरिक संरचनाओं में बदलाव नहीं ला पाते, वे विलुप्त हो जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इसे हम प्राकृतिक कारणों से जैव विविधता का ह्रास कह सकते हैं। प्राकृतिक कारणों से इस पृथ्वी पर लाखों करोड़ों वर्ष पहले पाए जाने वाले अनेकों जीव जंतु एवं वनस्पति विलुप्त हो गए, जैसे डायनासोर की कई प्रजातियां, मैमथ, थैलेशियन टाइगर एवं कई स्थलीय एवं जलीय जीव जंतु एवं वनस्पति इत्यादि। प्राकृतिक रूप से बदलते वातावरण के कारकों के कारण अपने शारीरिक संरचना में अपेक्षित बदलाव न ला पाने के कारण अनेकों जीव जंतु विलुप्त हो गए एवं जो स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन उन्हें विलुप्त होने में करोड़ों वर्ष लगे। लेकिन मानव के विभिन्न क्रियाकलापों के कारण एवं विकास की अंधी दौड़ में वातावरण में जो भी बदलाव आते हैं वे बड़ी तेजी से आते हैं एवं उसी तीव्रता से जीव जंतु एवं वनस्पतियों को की अपने शारीरिक संरचना में बदलाव नहीं ला पाना, यह इस प्रकार की विविधता में ह्रास के प्रमुख कारण बन जाते हैं।

जिस वातावरण के कारकों के साथ स्थापित नहीं कर पाते एवं तनावग्रस्त तथा रोगग्रस्त हो जाते हैं तथा उनकी प्रजनन क्षमता कम या नष्ट हो जाती है तथा फलस्वरूप एक विशेष प्रजाति के जीव जंतु एवं वनस्पति या तो नष्ट हो जाते हैं या विलुप्त हो जाते हैं। विकास की अंधी दौड़ में वातावरण और पृथ्वी को बुरी तरह से नजरअंदाज किया गया है। इस प्रकार हम पाते हैं कि मानव निर्मित कई कारणों की वजह से आज जैव विविधता पर खतरे मंडरा रहे हैं। मानव जनित या मानव निर्मित कुछ प्रमुख कारणों की चर्चा यहाँ करना उचित होगा जिसके कारण पूरे विश्व में जैव विविधता खतरे में है। अनेक जीवों एवं वनस्पतियों के विलुप्त होने के खतरे दिनों दिन बढ़ते गए हैं। मानव सभ्यता के विकास से जुड़ी हुई कई चीजें जैसे ऑटोमोबाइल की संख्या में बेतहाशा वृद्धि, जीवाश्म ईंधनों का बढ़ता उपयोग, सीमेंट एवं चूना फैक्ट्री के धूलकण, कोयला उत्खनन से निकले कोल डस्ट के साथ साथ नदियों, तालाबों, झीलों एवं समुद्रों के प्रदूषण भी बढ़ते गए हैं। विभिन्न प्रकार के प्रदूषण जीव जंतुओं में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं। वनस्पतियों के मेटाबॉलिक क्रियाएं प्रतिकूल ढंग से प्रभावित होती हैं जिसके कारण उनकी संख्या के कम होने एवं विलुप्त होने के खतरे बने रहते हैं। इमारती लकड़ियों के प्रयोग एवं जंगल माफिया की लालच के कारण जंगलों के क्षेत्रफल सिकुड़ते गए हैं जिसके कारण न केवल मनुष्य जानवरों के बीच झड़प बढ़े हैं बल्कि जंगलों के क्षेत्रफल घटने के कारण कई वन्य जीवों की जैव विविधता पर लगातार खतरे मंडरा रहे हैं। मनुष्य की बुद्धि पर सवार उसकी लालच ने एवं कई बार अन्य भिज्ञता ने वन्य उत्पादों का अवैज्ञानिक एवं अतिदोहन किया है जिसके कारण भी कई वनस्पतियां विलुप्त हो गई हैं। वन्य जीवों के गैरकानूनी शिकार एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उनके विभिन्न अंगों की उच्च मूल्य पर खरीद फरोख्त ने कई प्रजातियों के गैंडों, बाघों, हाथियों इत्यादि को विलुप्तता की कगार पर ला खड़ा किया है। बाघों की पूरी जनसंख्या घटती गई है। ज्ञात हो कि बाघों की पूरी जनसंख्या का 80% भारत में पाया जाता है। संकटापन्न प्रजातियों को रेड डाटा बुक के अंतर्गत सूचीबद्ध किया जाता है। अकेले कार्बन डाइऑक्साइड एवं मीथेन जैसी गैसों की वातावरण में बढ़ती मात्रा पूरी पृथ्वी को झुलसाने पर तुली हुई है। ओजोन परत के नष्ट होने से पराबैंगनी किरणों के वातावरण में प्रवेश ने कई जीवों को कैंसरग्रस्त होने की संभावनाओं को बढ़ा दिया है। पराबैंगनी किरणें कुछ ही क्षणों में सूक्ष्म जीवाणुओं को मार देती हैं जिनमें से अनेकों जीवाणु पृथ्वी पर जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक एवं उपयोगी हैं। इससे भी जैव विविधता खतरे में पड़ती है एवं जीवों के जीवन संघर्ष बढ़ जाते हैं। समुद्री प्रदूषण ने कई समुद्री जीव जंतुओं की जैव विविधता को अत्यंत प्रतिकूल ढंग से प्रभावित किया है। स्पर्म व्हेल, ओर्का व्हेल, डॉल्फिन्स सहित कई समुद्री जीवों की आबादी एवं जैव विविधता बहुत घट गई है एवं कई समुद्री जीव जंतु विलुप्त हो गए हैं। ग्लोबल वार्मिंग के कारण उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुवों के अस्थायी बर्फ परतें भी पिघलना शुरू हो गई हैं जो भूमंडल के सभी जीवों के लिए खतरे की घंटी है। और अगर ध्रुवों के स्थायी बर्फ परतों का पिघलना नहीं रुका तो अगले कुछ वर्षों में पृथ्वी का वातावरण 33 करोड़ साल पहले की स्थिति में पहुंच जाएगा जिसे हम योसीन इपोक कहते हैं। यह जैव विविधता के लिए अत्यंत भयावह स्थिति होगी। ब्राजील के अमेजन के जंगलों में पूरे विश्व की लगभग 80% जैव विविधता पाई जाती है लेकिन हाल के वर्षों में लगी आग ने न केवल 55 करोड़ हेक्टेयर में फैले इन जंगलों की जैव विविधता को नुकसान पहुंचाया बल्कि जंगलों में रहने वाले आदिवासियों के लिए भी खतरे उत्पन्न कर दिए हैं। जलवायु परिवर्तन ने जैव विविधता के ऊपर मंडराते खतरे को कई गुना बढ़ा दिया है। फसल चक्र परिवर्तित हो गए हैं जिससे फसलों के उत्पाद एवं उनकी जैव विविधता पर भी खतरे मंडराने लगे हैं। अभी हाल में ही पृथ्वी पर मंडराते अनेक खतरों एवं जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखकर 31 अक्टूबर 2021 से 12 नवंबर तक स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में अनेक देशों के राष्ट्राध्यक्षों का एक सम्मेलन आहूत किया गया था। इस सम्मेलन में ग्लोबल वार्मिंग को रोकने एवं जलवायु परिवर्तन की तीव्रता को कम करने के लिए कई समझौतों पर आम सहमति बनी। हालांकि चीन जैसे कुछ देश कार्बन उत्सर्जन को कम करने में अभी भी आनाकानी दिखलाते हुए नजर आए। यह सोच लेना होगा कि जब पृथ्वी बचेगी तभी जैव विविधता बचेगी एवं जैव विविधता की अक्षुण्णता सभी जीवों के सह अस्तित्व के लिए आवश्यक है। सरकारों को वैश्विक स्तर पर पर्यावरण को बचाते हुए जैव विविधता को संरक्षित करने की राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखलानी होगी। केवल सरकारों के भरोसे ही जैव विविधता नहीं बच सकती। समाज के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को सम्मिलित प्रयास करना होगा एवं जन सहभागिता से ही से इस पर मंडराते खतरों को कम किया जा सकता है। इसमें समाज के हर वर्ग को आगे आना होगा एवं जैव विविधता के संरक्षण

0: इनकी महत्ता को समझते हुए इसे बचाने के प्रयास करने होंगे। आखिर यह धरती सभी जीवों की है, इसके संसाधन सभी जीवों के लिए हैं, अतः संसाधनों पर सभी जीवों का समान अधिकार है। आज पूरे विश्व को चिपको आंदोलन के माध्यम से जंगलों को बचाने वाले कई सुंदरलाल बहुगुणा एवं अभी अभी पद्मश्री अवार्ड से विभूषित की गई कर्नाटक की तुलसी गौड़ा की जरूरत है। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों को विकसित करने के साथ साथ औद्योगिकरण की रफ्तार धीमी कर विकास की अवधारणा को बदलना होगा, तभी जैव विविधता पर मंडराते खतरों को कम किया जा सकता है। आदिवासी समाज की जल जंगल जमीन बचाने की संस्कृति को बढ़ावा देना होगा।
1: अभी आप सुन रहे थे अमर सिंह की वार्ता जैव विविधता पर मंडराते हुए खतरे। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आज का ये कार्यक्रम आपने सुना संतोषी झा के साथ। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए आज्ञा। नमस्कार।

साप्ताहिक कार्यक्रम हमारा पर्यावरण अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है एफएम बैंड के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। रात 8 बजे आप सुनेंगे फिल्म संगीत, लेकिन उससे पहले लेते हैं विराम और सुनते हैं जरूरी संदेश।

0: हेलो मन भावन, आप सुनेंगे नए अंदाज में मेरी यानी निमिषा के साथ। प्रत्येक रविवार दिन के 11 बजे आकाशवाणी जमशेदपुर के विविध भारती केंद्र से 100.8 मेगाहर्ट्ज पर। आपके फोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक बुधवार दोपहर 12 बजे से 12:30 बजे के बीच। हमारा टेलीफोन नंबर है 2960445 और कोड है 0657। तो आप भी जुड़ जाइए हेलो मनभावन कार्यक्रम से।
1: नमस्कार जमशेदपुर का एक अलग अंदाज,
2: ज्ञान विज्ञान
3: इतिहास के पन्नों से,
2: सेहत और बॉलीवुड की बातें,
1: मौसम का मिजाज,
2: अपने शहर की खबरें,
3: बातों मुलाकातों के साथ
1: सुरीला मनोरंजन
2: और भी बहुत कुछ।
1: आप सुनते हैं कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर में दिन के 11:05 से 12 बजे तक
3: आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से।
4: नमस्कार जमशेदपुर।
5: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
6: फिल्म संगीत के तमाम सुनने वालों को आपकी रेडियो दोस्त विभा का प्यार भरा नमस्कार और कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज की महफिल में हमने लिया है पहला गाना फिल्म कर्ज से।

लता मंगेशकर की आवाज़ में अभी ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म राम तेरी गंगा मैली से। हसरत जयपुरी का लिखा गीत था और संगीत रविंद्र जैन का।

0: फिल्म बॉर्डर से लिए इस गाने में अभी आप सुन रहे थे रूप कुमार राठौर को। शब्द रचना जावेद अख्तर की थी और संगीत निर्देशन अनु मलिक का।
1: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज़।

अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज़ों में अभी आप सुन रहे थे गुप्त फिल्म का ये गीत। शब्द रचना आनंद बख्शी की थी और संगीत निर्देशन बीजू शाह का।

आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में यादों की बारात, इस फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे। गीत लिखा था मजरूह सुल्तानपुरी ने और इसकी धुन बनाई थी राहुल देव बर्मन ने।

मेरी जंग फिल्म के इस गाने में अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और नितिन मुकेश को। शब्द रचना आनंद बख्शी की और संगीत निर्देशन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं फिल्म

0: गोलमाल फिल्म के इस गाने के साथ ही कार्यक्रम फिल्म संगीत की प्रस्तुति से मुझे यानी अपने रेडियो दोस्त विभा को दीजिए इजाज़त। हम फिर मिलेंगे, तब तक रखिए अपना पूरा पूरा ख्याल। नमस्कार। कार्यक्रम फिल्म संगीत अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है एफएम बैंड के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात के 8:45 होने ही वाले हैं। अगले कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से समाचार संध्या।
1: संध्या के साथ मैं सरफिरोजी।
2: मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंसन के साथ दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, नीदरलैंड्स की यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों को नई गति प्रदान की। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन कल केरलम के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। मॉस्को पर यूक्रेन के अब तक के सबसे बड़े ड्रोन हमले में एक भारतीय श्रमिक सहित 4 लोगों की मौत। मौसम विभाग ने कल उत्तर भारत में भीषण लू चलने का अनुमान व्यक्त किया। बैडमिंटन में भारत की श्रियांशी वरीशेट्टी ने बाउजी चाइना मास्टर्स के महिला सिंगल्स में रजत पदक जीता। और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीदरलैंड्स की 2 दिन की यात्रा के बाद 5 देशों की यात्रा के तीसरे चरण में आज स्वीडन के गोथेनबर्ग पहुंच गए हैं। स्वीडन की 2 दिन की यात्रा के दौरान श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंसन के साथ द्विपक्षीय वार्ता और द्विपक्षीय संबंधों की व्यापक समीक्षा करेंगे। दोनों पक्ष व्यापार

0: भी किया। एयरपोर्ट पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। भारतीय समुदाय के लोगों ने उनका बहुत ही गर्मजोशी के साथ स्वागत भी किया। गौरतलब है कि यात्रा का प्रमुख आकर्षण यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री होगा, जिसे दोनों प्रधानमंत्री यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लेयन के साथ संबोधित करेंगे। इसके अलावा दोनों प्रधानमंत्री यूरोपियन संघ के शीर्ष उद्योगपति और सीईओ के साथ राउंड टेबल बैठक में भी शामिल होंगे। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
1: इससे पहले गोथेनबर्ग रवाना होने से पूर्व श्री मोदी को नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रोब येटेन ने व्यक्तिगत रूप से एम्स्टर्डम हवाई अड्डे पर विदाई दी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: इस यात्रा ने भारत नीदरलैंड संबंधों को नई गति दी है। रिश्तों को रणनीति साझेदारी से लेकर जाने तक जल संसाधन, सेमीकंडक्टर, इनोवेशन, रक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने तक दोनों देशों ने भविष्य के लिए एक महत्वाकांक्षी रोड मैप तैयार किया है। उन्होंने विश्वास जताया कि भारत और नीदरलैंड की दोस्ती आने वाले सालों में और मजबूत होगी। उनकी यात्रा में यह एक ऐतिहासिक सांस्कृतिक पल था जब लाइडन यूनिवर्सिटी ने 11वीं शताब्दी की चोल युग की ताम्र पट्टिकाओं को भारत को सौंपा। यह भारत की विरासत और सभ्यता का अनमोल अध्याय है। यात्रा के अंत में 17 अहम नतीजे सामने आए। इसमें शामिल है नवीनीकरण ऊर्जा पर संयुक्त कार्य समूह और ग्रीन हाइड्रोजन रोड मैप, क्रिटिकल मिनरल्स में सहयोग, गुजरात की कल्पासर परियोजना में जल प्रबंधन पर डच सहयोग, त्रिपुरा में फ्लोरिकल्चर और बेंगलुरु में डेयरी प्रशिक्षण के लिए भारत डच सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, नालंदा और ग्रोनिंगन विश्वविद्यालय के बीच शिक्षा एवं शोध का समझौता और स्वास्थ्य एवं सीमा शुल्क में संस्थागत सहयोग। शुश्रुष शर्मा, आकाशवाणी, द हेग, नीदरलैंड्स।
1: कांग्रेस नेता वीडी सतीशन के नेतृत्व में केरलम की नई सरकार कल तिरुवनंतपुरम में शपथ लेगी। कांग्रेस ने 14 मई को वीडी सतीशन को केरलम का अगला मुख्यमंत्री घोषित किया था। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने केरलम विधानसभा चुनाव में 2/3 से अधिक बहुमत हासिल किया। हालांकि राजनीतिक खींचतान और जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं के विरोध के कारण गठबंधन मुख्यमंत्री पद के चेहरे पर फैसला नहीं कर पा रहा था।
3: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीडी सतीशन कल सुबह केरलम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। मुख्यमंत्री के साथ 20 अन्य मंत्री भी शपथ लेंगे। मनोनीत मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने आज शाम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर से मुलाकात की और उन्हें मंत्रियों की सूची सौंपी। समारोह के लिए तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में 12,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था सहित व्यापक इंतजाम किए गए हैं। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पलरोथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के गांधीनगर में 700 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। राज्य के 2-दिवसीय दौरे पर आए श्री शाह ने गांधीनगर निगम की 600 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ किया। उन्होंने शहर में 128 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित मधुर डेयरी के नवनिर्मित दूध प्रसंस्करण संयंत्र का भी उद्घाटन किया। इससे पहले दिन में श्री शाह ने गांधीनगर स्थित राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान में नवाचार और इंक्यूबेशन केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री शाह ने राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान के महत्व का उल्लेख करते हुए कहा कि एक ऐसा संस्थान है जो रचनात्मकता को उद्यमिता से जोड़ता है।
4: NID एक प्रकार से रचनात्मकता के आधार पर इनोवेशन और उद्यमिता, इन तीनों को जोड़ने वाला एक संस्थान। जब NID की स्थापना हुई हो तब मुझे लगता है कि इसके उद्देश्यों को बहुत अच्छे तरीके से सोचा हो।
1: नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश ने एक दिन में रिकॉर्ड 256.4 गीगावाट बिजली की मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया। श्री जोशी ने कहा कि भारत का बिजली ढांचा अब पहले से ज्यादा मजबूत, भरोसेमंद और भविष्य की जरूरतों के लिए तैयार हो गया है।
5: आज हमने एक ही दिन में 256.4 गीगावाट की अत्यधिक मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया है। ये अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि सिस्टम में लगातार सुधार हो रहा है। 256 गीगावाट में से जिसे हमने एक ही दिन में एक खास समय पर अत्यधिक मांग के तौर पर पूरा किया, उसका 33% हिस्सा नवीकरणीय ऊर्जा से आया है।
6: 33% इज फ्रॉम द रिन्यूएबल एनर्जी।
1: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वर्चुअल माध्यम से बेंगलुरु और मुंबई के बीच नई एक्सप्रेस रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने कहा कि दक्षिण और उत्तर कर्नाटक के लोगों की लंबे समय से लंबित मांगें अब पूरी हो रही हैं। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु और मुंबई के बीच वंदे भारत स्लीपर रेलगाड़ी जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने भारत म्यांमार सीमा पर अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है। एनसीबी ने दिल्ली से म्यांमार के सरगना थान सितवांग को गिरफ्तार किया है।

सितुआंग एनसीबी और मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े कई मामलों में वांछित था। ब्यूरो ने कहा कि वो वर्ष 2024 के एक एनसीबी मामले में मुख्य आरोपी है, जिसमें 14 किलोग्राम मेथमफेटामीन और 2 किलोग्राम से अधिक हेरोइन जब्त की गई थी। वर्ष 2025 के एनसीबी मामले में भी ऐजोल में 49 किलोग्राम से अधिक मेथमफेटामीन जब्त की गई थी। हिमाचल प्रदेश में 51 शहरी स्थानीय निकायों के लिए मतदान आज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। मतदान 25 नगर परिषदों और 22 नगर पंचायतों के साथ धर्मशाला, पालमपुर, सोलन और मंडी नगर निगमों में कराया गया था। राज्य चुनाव आयोग के अनुसार मतदान में 69% से अधिक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

शिक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रूस में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर सहित चार लोगों की मौत हो गई है। पिछले एक वर्ष में मॉस्को और करीबी इलाकों पर यूक्रेन का ये सबसे बड़ा ड्रोन हमला है। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोबियानी ने कहा कि रात भर हुए हमलों में 12 लोग घायल हुए। रूस के अधिकारियों ने दावा किया है कि मॉस्को को निशाना बनाने वाले 81 ड्रोन को रोक दिया गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने हमलों की पुष्टि करते हुए इन्हें पूरी तरह से सही ठहराया है। इस बीच रूस में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मॉस्को क्षेत्र में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर की मौत हो गई जबकि 3 अन्य घायल हुए। संयुक्त अरब अमीरात में आज अबू धाबी स्थित बाराका परमाणु ऊर्जा संयंत्र के बाहर ड्रोन हमले के कारण आग लग गई। अबू धाबी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार संयंत्र के बाहर स्थित एक विद्युत जनरेटर में आग लगी। अधिकारियों ने बताया कि इस हमले में कोई घायल नहीं हुआ है और रेडियोलॉजिकल सुरक्षा स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। भारत ने कहा है कि हॉर्मूज जल डमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमले स्वीकार्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वत नेनी हरीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों को निशाना बनाने और जहाजों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को जायज नहीं ठहराया जा सकता। श्री हरीश ने ये बात वैश्विक ऊर्जा के संबंध में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद की विशेष बैठक में कही। ईरान ने घोषणा की है कि वो रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हॉर्मूज जल डमरू मध्य से सैन्य पोतों को गुजरने की अनुमति नहीं देगा। ईरान के प्रथम उपराष्ट्रपति मोहम्मद रजा आरेफ ने कहा कि ईरान ने पहले इस जलमार्ग से सैन्य उपकरणों से लदे पोतों को गुजरने की अनुमति दी है जो ईरान के विरुद्ध ही प्रयोग किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब ये नीति बदल जाएगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून के केरलम में 26 मई तक पहुंचने की संभावना है, जिससे 4 दिनों का अंतर हो सकता है। मौसम विभाग ने कल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भीषण लू का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 2 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और विदर्भ में भी इसी तरह के मौसम रहने की संभावना है। अगले 3 से 4 दिनों में उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। भारत की श्रेयांशी वली शेट्टी ने चीन के बाओजी में चाइना मास्टर्स बैडमिंटन के महिला सिंगल्स में रजत पदक जीता। इस सुपर 100 प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में श्रेयांशी को चीन की आन क्यू युआन से सीधे गेमों में 14-21, 6-21 से हार का सामना करना पड़ा। आईपीएल क्रिकेट में आज धर्मशाला में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हरा दिया। बेंगलुरु के 223 रन के लक्ष्य के जवाब में पंजाब 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 199 रन ही बना सकी। इस जीत के साथ ही बेंगलोर प्लेऑफ में क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बन गई है। दिन का दूसरा मुकाबला दिल्ली में दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक राजस्थान रॉयल्स ने 16वें ओवर में 5 विकेट पर 168 रन बना लिए हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में जनगणना 2027 के चल रहे पहले चरण, मकान सूचीकरण और आवास गणना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम में गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कार्यालय में उप रजिस्ट्रार जनरल वीए वराडे स्टूडियो में मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए द्विपक्षीय वार्ता कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, नीदरलैंड्स की यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों को नई गति प्रदान की। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन कल केरलम के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। मॉस्को पर यूक्रेन के अब तक के सबसे बड़े ड्रोन हमले में एक भारतीय श्रमिक सहित 4 लोगों की मौत। मौसम विभाग ने कल उत्तर भारत में भीषण लू चलने का अनुमान व्यक्त किया। और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी है। आज प्रस्तुत है श्री विष्णु प्रभाकर का लिखा नाटक कूपे।

0: उन पर कोई भी दो यात्री सफर कर सकते हैं।
1: दो स्त्री दो पुरुष या एक स्त्री एक पुरुष?
2: जी हाँ, एक स्त्री और एक पुरुष दो ही होंगे इस कूपे में। अच्छा सफर कटेगा।
1: हाँ, नींद अच्छी आएगी या शायद बिल्कुल नहीं आएगी।
2: आप में जीवट है, लेकिन 10 दिनों तक तो आप
1: वहाँ सबको वैसा ही व्यवहार करना चाहिए था जैसा मैंने किया। साधना करने आए थे हम लोग।
3: अच्छा, मैम साहब आ गई। आप तो कह रहे थे।
2: सुनो कनेक्टर, 2 कप कॉफी मिलेगी? लेकिन रुको सांत्वना जी, अब तो डाइनिंग कार में चलने का वक्त हो गया है।
1: मैं नहीं जाऊंगी, रात को मैं नहीं खाती। कंडक्टर, मेरे लिए केवल एक कॉफी।
3: जी हाँ मैम साहब, कॉफी आ जाएगी।
2: मैं तो डाइनिंग कार में जाऊंगा। 10 दिन तक मन और तन दोनों ही भूखे रहे। ना ना, अब और मन को नहीं मार सकता।
1: तुमने मारा ही कहा है, मारने का ढोंग किया। अच्छा जाओ, मैं ध्यान करने के बाद कुछ देर काम करूंगी।
2: ओके, लौट कर बातें होंगी।
1: ओके।
3: मैम साहब, ये रही कॉफी, कुछ और चाहिए?
1: नहीं शुक्रिया। अब जरा एकांत मिला।

0: सोने से पहले अपनी डायरी लिख लो। गुरुजी दूसरे महात्माओं से कितने भिन्न हैं। वो न प्रभाव डालने के हथकंडे जानते हैं, न दूसरों पर छा जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे उन्होंने एक सहज सत्य का आविष्कार कर लिया है, क्योंकि उनमें एक मोहिनी शक्ति पैदा हो गई है। वही शक्ति देश विदेश के नाना प्रकार से त्रस्त व्यक्तियों को अपने पास खींच लेती है। अज्ञात शांति की खोज में भटकते ये व्यक्ति कैसे सहज विश्वास से अपने जीवन की कहानी खोल कर रख देते हैं इनके सामने। वो जूडिथ जिसकी नीली आंखों में गहरे आकाश की झलक है, जिस सहज भाव से खिलखिलाती है, उसी सहज भाव से अपने मन की सारी परतें खोल कर रख देती है। उस दिन वो अपनी प्यारी प्यारी सी बच्ची के लिए मेरे पास से गुजरी तो मैंने मुस्कुराकर कहा, हेलो जूडी, कितनी प्यारी है तुम्हारी बच्ची। कल बहुत देर तक मुझसे बातें करती रही।
1: ये जिसके पास जाती है उसी की हो जाती है, मेरी तरह। अब गुरुजी के पास सोने की जिद कर रही।
0: अच्छा,
1: मानती ही नहीं, इसीलिए इसके पिता के पास ले जा रही हूँ।
0: क्या तुम्हारे पति भी यहाँ आए हुए हैं?
1: मेरी शादी नहीं हुई है।
0: क्या?
1: लेकिन इसके पिता बहुत सुंदर है, ऊपर की मंजिल में ही तो ठहरे हैं। उनसे ही इस लंबी यात्रा में मैंने ये सुंदर बच्ची प्राप्त की है।
0: आप कितने दिन से घूम रही हैं?
1: कई वर्ष हो गए।
0: आपके बहुत मित्र हैं?
1: स्वाभाविक है, अनेक देशों के अनेक युवकों के संपर्क में आई हूँ। उनको समझा परखा है, प्यार दिया है, पाया है।
0: बुरा तो नहीं मानोगी, तुम ग्रास, डोप, चरस, एलएसडी आदि का सेवन करती हो?
1: करती हूँ। उनसे मुझे आनंद मिलता है, उस आनंद का मैं वर्णन नहीं कर सकती। वो अनुभव करने की वस्तु है, जैसे जैसे स्वर्ग का द्वार खुल जाता है, प्रतिभा मुक्त हो जाती है।
0: तो फिर वो क्या है जो तुम्हें खाए जा रहा है? क्या है जो तुम्हारे जैसे युवक युवतियों को दर दर भटकने के लिए विवश करता है? साधुओं, महात्माओं, योगियों के पास तुम क्या पाना चाहते हो?
1: बहुत दिनों तक ये सब करते करते मैंने अनुभव किया है कि नशे में जो आनंद मिलता है वो जैसे मैकेनिकल, जैसे उधार का आनंद है। एक महात्मा है जो दैहिक सेक्स के द्वारा समाधि की ओर ले जाने का दावा करते हैं, लेकिन मैं बिना किसी की सहायता से अपने ही अंतर में से स्वर्ग जाने का मार्ग खोल लेना चाहती हूँ। सुना था भारत के योगी इस मार्ग को जानते हैं, इसलिए भटकती हूँ।
0: जितने लोगों से मैंने बात की है वो सभी इन अनुभवों से गुजर चुके थे। सेक्स, नशा, सब कुछ उनके लिए सहज है, फिर भी वो भटक रहे हैं। कितनी सच्ची है उनकी ये भटकन। कुछ है जो परिवार के शासन से परेशान है, कुछ को आज के शोषण की राजनीति त्रस्त करती है। वो उद्योगीकरण से प्राप्त ऐश्वर्य और विलास से ऊब चुके हैं। ये यांत्रिक और कृत्रिम जीवन उनको खोखला कर रहा है और वो उस आनंद की तलाश में है जो उन्हें शांति के स्वर्ग द्वार के भीतर पहुंच जाने की शक्ति दे। आती हूँ।
2: बाहर अभी वर्षा होकर चुकी है, मौसम कितना सुहावना, कितना प्यारा है।
3: अरे आप एक लिखे जा रही हैं?
2: कैंप के अपने अनुभव लिख रही हैं शायद, देख सकता हूँ?
0: ये मेरी डायरी है।
2: तब नहीं देखूंगा, डायरी चोरी करके पढ़ने की चीज है।
0: बड़ी समझदारी की बातें कर रहे हैं।
2: समझदारी की बातें तो अब आरंभ होंगी। खिड़की खोल दूं, वर्षा से भीगी हवा आने लगी। मैं आपके पास बैठ सकता हूँ?
0: सब काम पूछकर ही करते हैं आप।
2: थैंक यू। मेरे पास स्कॉच है, 10 दिन से इसे छुआ ही नहीं। आप पीती हैं?
0: पीती तो नहीं, पर प्रतिज्ञा भी नहीं की।
2: तो मेरा साथ दीजिए, थकान भी तो उतारनी है।
0: मैं बिल्कुल नहीं थकी हूँ।
2: प्लीज, साथ देने के लिए एक पैक।
0: जी नहीं, आप ऊपर जाकर पीजिए।
2: और अगर मैं यहीं बैठकर पीऊं तो?
0: पीजिए।
2: बुरा मान ली, प्लीज। बात यह है कि मैं साथी के बिना रह ही नहीं सकता। बहुत घूमा हूँ, हिप्पियों के साथ, जिप्सियों के साथ, कितनी मुक्त और सहज हैं ये विदेशी युवतियां, बड़े मजे के साथ कह सकती हैं लॉट्स ऑफ बॉयफ्रेंड्स, लॉट्स ऑफ सेक्स। मैं भी कह सकता हूँ लॉट्स ऑफ गर्लफ्रेंड्स, लॉट्स ऑफ।
0: मैं आपकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ।
2: नहीं है तो हो जाएंगी। मुझे किसी के साथ एकाकार होते देर नहीं होती। दुई का भाव मुझे सुहाता ही नहीं। एक ओंकार, एक सत्ता, एक चेतना।
0: काफी गहरे उतर चुके हैं आप।
2: गणित विज्ञान और आध्यात्म की तरह नशे, सेक्स और योग की मंजिल एक ही है, ब्रह्मानंद सरोवर में डुबकी लगाना। प्लीज, मैंने कहा ना अकेले पीते अच्छा नहीं लगता। छोटा पैक लीजिए मेरे लिए, इस सुहावने मौसम के लिए।
0: मिस्टर सिंह, आप ऊपर नहीं जाना चाहते तो मैं जाती हूँ।
2: आप ऊपर कैसे जाएंगी?
0: जी हाँ, वो अधिकार तो जैसे आपका ही है, आप पुरुष है ना। मैं कहती हूँ ऊपर जाइए।
2: ना ना ना ना ना, नाराज ना होइए। अच्छा, मैं अब और नहीं पीऊंगा, आपके साथ बातें करूंगा। आप डाइनिंग कार में नहीं गई, वहां डिक था, वही जूडिथ के बच्चे का बाप। आपकी बहुत तारीफ कर रहा था, आना चाह रहा था, लेकिन जब उसे पता लगा कि हम कूपे में हैं तो मुस्कुरा कर लौट गया। अरे अब फिर नाराज हो रही है? प्लीज।
0: मैं बिल्कुल नाराज नहीं हूँ, जरा थोड़ा पीछे हटिए ना, मैं लेटना चाहती हूँ, फिर अपना भाषण जारी रख सकते हैं आप। आप तो जूडिथ के साथ बहुत रहे हैं।
2: बहुत से देशों में साथ साथ घूमा हूँ। We have made love many times, लेकिन वहाँ गुरुजी का आदेश था 10 दिन तक कुछ नहीं होना चाहिए, पूर्ण ब्रह्मचर्य, पूर्ण मौन। फिर दिख भी तो यही था, लेकिन उसे जरा भी ईर्ष्या नहीं हुई। जूडिथ को पूरी स्वतंत्रता है, वो किसी के साथ रहे,
0: इसलिए शायद वो तुम्हारे साथ आकर भी लौट गई।
2: उसके लौट जाने से मुझे दुख हुआ था, लेकिन तुम मिल गई, तुम उससे भी आकर्षक हो, सबसे आकर्षक। तुम्हारी मांसल देह, तुम्हारी चमकती आंखें, तुम्हारे लंबे सुनहरी बाल।
0: बहुत बहुत शुक्रिया। 10 बज चुके हैं।
2: प्लीज अभी कुछ देर और बैठूंगा।
0: बैठे रहो।
2: तुम्हारी डायरी पढ़ सकता हूँ?
0: नहीं।
2: तुम्हें छू सकता हूँ?
0: नहीं।
2: मेरी प्रेम कहानियां सुनोगे?
0: नहीं।
2: क्यों?
0: क्योंकि सब एक जैसी होती हैं, वैसे ही जैसे तुम सब पुरुषों का व्यक्तित्व एक जैसा होता है। सोने का समय हो गया, जाओ सो जाओ और स्वप्न देखो।
2: मेरा मन तो तुमसे बातें करने को करता है।
0: बातें मुंह से की जाती हैं, हाथों से नहीं।
2: सांत्वना, सांत्वना, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ सांत्वना।
0: मुझसे प्रेम करने वालों में एक और का इजाफा हुआ। लेकिन सरजीत, तुम सचमुच प्रेम करते होते तो जतलाते नहीं, प्रेम निर्लज्ज नहीं होता।
2: यानी नैतिक होता है। शरीर को बचाने के मुंह में तुम अच्छे तर्क कर लेती हो।
0: शरीर को बचाने का मुंह मुझे कभी नहीं रहा, परंतु वो मन से जुड़ा हुआ है। प्रेम का अर्थ केवल तन का मिलन नहीं है। जिन जूडिथ, मार्था और लिजा के लिए तन का मिलन सहज रहा है, वो भी मन के मिलने के लिए भटकती फिर रही हैं। न जाने कितनी गांठें पड़ी हैं उनके मन में, माँ बाप से विद्रोह, समाज से विद्रोह, अपने से विद्रोह। व्यवस्था को तोड़ने के लिए वो ड्रग का सेवन करती हैं, स्वर्ग के द्वार में प्रवेश करने।
2: वही वही वही तो आनंद का मार्ग है। तुमने कभी अनुभव किया है उसे, उस आनंद को? मेरे पास है, पियोगी?
0: सरजीत, तुम सीमा को लांघते जा रहे हो, अब चले जाओ।
2: और न जाऊं तो? नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। प्लीज प्लीज सांत्वना, प्लीज।
0: नहीं नहीं, पीछे हटो, हटो पीछे।
2: मैं नहीं हटूंगा, मैं नहीं हटूंगा। किसी स्त्री ने मुझे आज तक पीछे नहीं हटाया।
0: लेकिन मैं हटा दूंगी। मर्द है तो उसे औरत चाहिए।
2: प्लीज
0: मत तेज पूंछ है, औरत उसकी तेज को छेड़ने वाली है।
2: देखो
0: ये दलीलें अब बासी हो।
2: प्लीज

0: तुम्हारे लिए नारी केवल एक वेश्या है।
1: अब मैं नहीं,
0: मैं कहती हूँ चले जाओ यहाँ से, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं,
1: नहीं।
0: जाते हो या नहीं?
2: सांत्वना।
0: कौन है? क्यों आए हैं इस समय?
3: क्षमा कीजिए, आप ठीक तो हैं?
0: बिल्कुल ठीक हूँ। आप ही बीमार नजर आते हैं जो दूसरों के कंपार्टमेंट में झांकते फिरते हैं। कुछ कहना है तो कहिए, नहीं तो जाइए यहाँ से।
3: माफी चाहता हूँ, बराबर के कंपार्टमेंट में हूँ, लगा जैसे आपके साथ कोई जबरदस्ती कर रहा है। लेकिन यहाँ तो आपके पति का अतिरिक्त और कोई दिखाई नहीं देता।
0: तो फिर जाइए अपने कंपार्टमेंट में।
3: देखिए मुझे नींद कम आती है, आप लोग शोर मचाएंगे तो बेवश होकर मुझे।
0: क्या मतलब है आपका?
3: आप सब समझती हैं, इस डिब्बे में केवल आप दोनों ही नहीं है, आप जैसे जोड़े बहुत देखे हैं, इस उम्र में इतना आवेश नहीं होना चाहिए। आशा करता हूँ मुझे फिर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कंडक्टर, ये तुम्हारी जिम्मेदारी भी है कि हम लोग आराम से सो सके।
4: सचमुच मैम साहब, मैं तो डर गया था, कभी कभी फालतू आदमी भी चढ़ाते हैं।
0: मेहरबानी करके आप लोग चले जाइए। मैं माफी चाहती हूँ।
3: ठीक है मैं जाता हूँ, गुड नाइट।
4: दरवाजा अंदर से बंद कर लीजिए, कोई बात हो तो मैं पास ही में हूँ। मुझे बहुत दुख है दर्शन।
0: चुप रहो, ऊपर जाकर अपनी सीट पर बैठो।

0: सरजीत का इसमें कोई दोष नहीं है। उसका संबंध जूडेथ, मार्था और लिजा जैसी नारियों से रहा है, जिनके लिए देह है सब कुछ है। लेकिन फिर विद्रोहियों का बाना पहने इधर उधर क्यों भटक रही है? अंतर में कहीं न कहीं खोज की वो चाह है जो इन्हें स्थूल आनंद से ऊपर उठाती है। मैंने मार्था से पूछा था, मार्था बुरा तो न मानोगी, एक बात पूछूं?
1: खुशी से पूछो।
0: तुम माँ बनने वाली हो ना?
1: हाँ।
0: इसके पिता कौन है?
1: मेरे लिए जानना जरूरी नहीं है, मैं भी पुरुष की तरह प्यासी हूँ, मुझे भी तृप्ति चाहिए। पुरुष कोई भी हो, वो सरजीत भी हो सकता है, शायद वही है। लेकिन तुम ये सब क्यों जानना चाहते हो?
0: मैं जानना चाहती हूँ कि मुक्त साहचर्य और देह भोग के साथ सच्चे सुख की तलाश कैसे चल सकती है।
1: मुझे तो इसमें कोई विरोधाभास नहीं दिखाई देता। शरीर के अस्वीकार की बात तुम लोगों में ही है, हम लोगों में समर्पण की प्यास है। समर्पित होकर हम पूर्णता का अनुभव करते हैं। तुम्हारे लिए प्रेम एक बना बनाया सांचा है, विवाह किया और वो सांचा ओढ़ लिया।
0: नहीं, मैंने भी प्रेम विवाह किया था, उसी का परिणाम है मेरे दो बच्चे, उन्हीं के लिए मैं दूसरी बार विवाह नहीं कर रही।
1: लेकिन इससे क्या तुम्हारी देह की प्यास बुझ गई? इतने सारे वर्ष तुमने इस छद्म को पालने में लगा दिए। मैंने गुरुजी से बहुत बहस की है इस बारे में।
0: क्या उत्तर दिया उन्होंने?
1: देह की प्यास से उन्हें इनकार नहीं है, वो तो चाहते हैं कि साधना के इन 10 दिनों में परहेज किया जाए, उसके बाद जैसा अनुभव हो।
0: इसका अर्थ समझी?
1: समझी। वो कहना चाहते हैं जैसे जैसे साधना के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, देह भोग की प्यास वैसे वैसे शांत होती जाती है। सांत्वना, मैं नहीं जानती क्या होगा, मुझे चिंता नहीं कि वो प्यास शांत होती है या नहीं, लेकिन मुझे ऐसा अवश्य लगता है कि सच्चे सुख के प्राप्त हो जाने पर वो प्यास असंगत हो रहेगी।
0: फिर भी तुम कहती हो कि शरीर के अस्वीकार की बात हम ही लोगों में है।
1: अस्वीकार करने और असंगत हो रहने में अंतर है, क्या नहीं है?
0: कभी सोचा भी न था कि मुक्त देह मिलन के उपासक ये लोग इतनी गहराई में उतर सकते हैं। अस्वीकार करने और असंगत हो रहने का अंतर ही हम भूल चुके हैं, इसलिए अत्यधिक निषेध से परेशान होकर देह मिलन के लिए पागल हुए जा रहे हैं। मैंने भी जब चाहा है देह की प्यास बुझाई।
2: देह की इस प्यास को क्या तुमने अब भी बुझाना नहीं चाहा था?
0: कौन हो तुम?
2: मैं कौन हूं ये पूछने का साहस है तुमने? अपने अंतर में झांक कर देखो, वहीं से बोल रही हूं। बार बार दूसरों के अंतर में झांकती हो पर अपने को नहीं खोजती। विधवा हो, संतान के प्यार के आदर्श

0: रही है कि दूसरों की वासना का शिकार होना मैं नहीं चाहती, वो देह का अपमान है। लेकिन तब तुम साधना केंद्र में क्यों गई थी? क्या वो इस बात का प्रमाण नहीं है कि तुम भी अशांत हो? तुम्हें देह को बचाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन बचाने को विवश भी हो। इसी द्वंद्व से तुम पीड़ित हो। तीव्र निषेध मन की चाह में से ही पैदा होता है। तुम्हें स्पष्ट कह देना चाहिए था कि सर्वजीत तुम्हारा पति नहीं है, ये मेरा छद्म है। इस छद्म को उतार फेंको।
1: छद्म है, छद्म। सुनो, कहां गई तुम? बोलो। कहीं कोई नहीं, ये मैं अपनी ही आवाज सुन रही हूं। सचमुच मुझे सहज भाव से स्वीकार कर लेना चाहिए था कि सरजीत मेरा पति नहीं है। मैं डर गई। कंडक्टर और सहयात्री मुझे व्यभिचारी नहीं समझते और शायद डिब्बे से उतर जाने को विवश करते, या फिर कैसी है ये भूल भुलैया, कैसे मुक्ति मिलेगी इससे? क्या इसी मुक्ति की खोज में मैं साधना केंद्र में नहीं आई? इतने सहज होकर भी ये लोग भटक रहे हैं, द्वंद में फंसे मैं भी भटक रही हूँ। क्या इस भटकन का अंत देह के मिलन नहीं है? कहाँ है सत्य? कौन सा छद्म इन तर्कों को ठगे हुए है? कैसे मिलेगी इस द्वंद से मुक्ति?
0: छद्म, ये छद्म है, इस छद्म से मुक्ति पाओ। सहज होने में ही मुक्ति है। मुक्ति, मुक्ति।
2: बहुत देर हो गई तुम्हें लिखते हुए, अब सो जाओ। जो कुछ हुआ उसके लिए लज्जित हो।
1: नहीं सरजीत, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं।
2: तुम बहुत अच्छी हो।
1: सच?
2: मैंने प्रतिज्ञा की थी कि सच बोलूंगा, केवल सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ न बोलूंगा।
1: अच्छा, अब सो रही हूँ। गुड नाइट।
2: गुड नाइट।
3: मम्मा, तुम आज बहुत देर से आई हो। कॉलेज तो कभी का बंद हो चुका था।
1: हाँ, कमल अंकल के घर चली गई थी।
3: इतनी रात तक क्या वहाँ कोई उत्सव था? हमें क्यों नहीं ले गए?
1: कुछ ऐसी बात थी बेटे, गंभीर बातें करनी थी ना, हड़ताल होने वाली है।
3: बहुत देर हो गई थी इसलिए मुझे डर भी लगा। भैया ने वहाँ फोन भी किया था लेकिन हर बार अंगीत मिला, शायद खराब था।
1: हाँ शायद, असल में हम बहुत जरूरी बातें कर रहे थे, शायद तुम्हारे अंकल ने रिसीवर उतार कर रख दिया था।
3: हाँ, यही जवाब हमें भी मिला था, हमने कंप्लेंट की थी। खाना खाओगे मामा?
1: मैं तो खाई बेटा, लगता है तुम लोगों ने अभी तक नहीं खाया। बड़े दुष्ट हो तुम, मेरे बिना कुछ भी नहीं कर सकते। बुलाओ अपने भैया को।
4: पढ़ने का नाटक कर रहा है लेकिन सुन रहा है हमारी बातें। इधर आओ बाबा।
1: माँ को जरा भी मुक्ति नहीं दोगे? मुक्ति तो मैं ही उन्हें नहीं दे पा रही, मैंने ही तो उन्हें अपने ऊपर निर्भर कर लिया है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, वो बड़े हो गए हैं, सब कुछ समझते हैं। मुझे उनसे सब कुछ कह देना चाहिए, कहीं उनके किशोर मन में काट न पड़ जाए। स्वयं मैं भी तो नहीं झेल पाती इस सर्वग्रासी एकांत को। क्या मैंने ही जानबूझकर इसे अपने ऊपर नहीं लाद लिया है? क्या इसे मुक्ति पालूं? क्या वो मुक्ति होगी?
5: सांत्वना? सांत्वना, तुम सो गई?
1: तुम्हारा स्पर्श पाकर मुझे नींद आ ही जाती है।
5: सांत्वना, हमें यह लुका छिपी का खेल बंद कर देना चाहिए।
1: हाँ, कर देना चाहिए। नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? मेरे लिए तो फिर कोई और मार्ग नहीं रह जाएगा।
5: तुम शादी कर लो।
1: मैं शादी नहीं कर सकती विनोद।

0: जब तक मेरे बच्चे अपने पैरों पर खड़े नहीं हो जाते मैं उन्हें धोखा नहीं दे सकती।
1: धोखा तुम आप दे रही हो।
0: मैं धोखा नहीं दे रही, अपनी इच्छा से जो चाहती हूँ करती हूँ।
1: इच्छा मेरी भी तो हो सकती है, जैसे तुम चाहती हो कि तुम किसी का शिकार न बनो, वैसे क्या मैं नहीं चाह सकता कि मैं तुम्हारा शिकार न बनूं?
0: शिकार? तुम क्या कह रहे हो विनोद?
2: सांत्वना, क्या है सांत्वना, किसे पुकार रही हो?
0: कुछ नहीं, सपना देख रही थी।
2: या अपने प्रेमियों की याद कर रही थी? विनोद, कमल,
0: तुम्हें ईर्ष्या होती है?
2: स्वाभाविक है, सारी रात यहाँ ऊपर के बर्थ पर लेटा लेटा।
0: तुम सब पुरुष एक जैसे होते हो। उनके एक मित्र थे, एक बार उनके साथ भी इसी तरह एक कूपे में सफर किया था। सारा समय तुम्हारी तरह न जाने क्या क्या बकते रहे, अपनी प्रेम कहानियां सुनाते रहे। बेचारे परवर्टेड।
2: अगर मैं यूरोपियन होता तो इस समय तुमसे पूछता, क्या उस रात उसके साथ तुमने प्रेम किया था?
0: आप नहीं पूछोगे?
2: बेकार है, हिंदुस्तानी प्रेम करना ही नहीं जानता।
0: ताने मत दो, मैं न तब समर्पित हुई थी और न अब हो सकूंगी।
2: जी में आता है कि नीचे उतर कर तुम्हारे शरीर को झंझोर डालूं और
0: फिर रुक क्यों गए?
2: जागने की राह देखता रहा, अब नहीं मानूंगा।
0: तुमने और उस पुलिस इंस्पेक्टर में अंतर ही क्या है जिसने सवेरे सवेरे दूध लेने जाती हुई एक औरत के साथ बलात्कार किया?
2: तर्कों की ये ढाल तुम्हारी मदद नहीं कर सके।
0: जब दो शरीर सैकड़ों मीलों की मानसिक दूरी के साथ मिलते हैं तो उस अर्थहीन मिलन में न सौंदर्य होता है न सत्य, वो न तन को बांध पाता है न मन को। इसी को कहते हैं अपवित्र होना।
2: पवित्र अपवित्र की मुझे चिंता नहीं, चिंता तुम्हारी है। सारी रात तुम अपने से लड़ती रही हो, तुम्हारा यही छद मैं उतार फेंकना चाहता हूँ। सांत्वना, प्लीज।
0: इसे हटा, मैं कहती हूँ एक कदम भी आगे न बढ़। कौन आया? कौन हो तुम? क्या चाहते हो?
3: मैं सरजीत से मिलना चाहता हूँ। हेलो सरजीत। तुम्हारा नाम देखा तो आश्चर्य हुआ, विलायत से कब आए, कैसे हो? और मार्था? ओह, ये मार्था तो नहीं है?
0: मेरा नाम सांत्वना है।
3: ओ, देखता हूँ तुमने शादी कर ली है सरजीत भाई, बधाई हो।
2: निगम, इनसे मिलो, ये है श्रीमती सांत्वना थापर। मैंने अभी तक शादी नहीं की है, तुम कहो कहाँ कहाँ रहे, बहुत दिनों के बाद मिल रहे हो।
3: हाँ, वो तो है, पर तुम हो भाग्यशाली, अभी तक तो विदेशी नारियों की चर्चा ही तुम्हारे पत्रों में रहती थी, अब भारतीय नारी भी आ गई। बधाई दूंगा, चुनाव एक्सलेंट है, वाह। माफ कीजिएगा मिसेस थापर, हम बहुत गहरे दोस्त हैं। यहाँ बैठ सकता हूँ ना सर जी?
0: ये कूपे है मिस्टर निगम, और अभी रात बीती नहीं है।
3: ओह आई एम सॉरी, मैं भूल गया था कि कूपे में तीसरे के लिए स्थान नहीं होता।
0: मैं अगले स्टेशन पर उतर जाऊंगी, तब आप आ सकते हैं। अब आप?
3: जा रहा हूँ, खेद है मैंने आपके एकांत में खलल डाला। पर सरजीत एक बात याद रखो, ये भारत है, यहाँ शोर नहीं मचाना चाहिए, वो बाहर वाले को भी खींच लेता है।
0: दरवाजा खुला रहने दो।
2: क्यों?
0: मेरी इच्छा।
2: कूपे में एक की इच्छा नहीं चलती।
0: तो आप में भी समझने की शक्ति है? स्टेशन आ रहा है, मैं यहीं उतरूंगी।
2: अभी तो अंधेरा है, बाहर बूंदाबांदी हो रही है और ये स्टेशन भी बहुत छोटा सा है।
0: बड़ी सुंदर जगह है।
2: सुंदर तो तुम हो, जगह नहीं, ये तो क्रूर है, बिछो का स्थान।
0: तुम्हारा ऐसा सोचना भी क्या एक छद ही नहीं है? जो तुम्हारी दृष्टि में बिछो का स्थान है वो किसी के लिए मिलन का भी हो सकता है। तुम्हारे साथ फिल्मी डायलॉग के आदान प्रदान से तो यहाँ उतरना हजार गुना अच्छा है। अच्छा, जा रही हूँ, बुरा ना मानना, प्यार का तुम्हारे लिए एक ही अर्थ है, औरत की देह का उपभोग। अच्छा, नमस्कार। क्या सोच रहे हो, जवाब भी नहीं दोगे?
2: नमस्कार। तुम भाग रही हो सांत्वना, कब तक भागती रहोगी?
0: कंडक्टर, मैं यहीं उतर रही हूँ, जरा बक्सा उतारने में मदद करो।
4: जी अभी आया। लाइए, मैं उतारे देता हूँ, आप उतरिए।
0: ये लीजिए।
3: गई, अब तो मैं आ सकता हूँ, खूब बातें करेंगे दोनों, सामान ले।
2: क्या मेरी दशा उस मछुआ

जैसी नहीं है जो एक तूफानी समुद्र में अपना जाल भी खोकर खाली हाथ लौट आया था, लेकिन इसी लेकिन के कारण तो मैं भी साधना केंद्रों की खाक छानता फिर रहा हूं।

यूट्यूब पे। अभी आपने श्री विष्णु प्रभाकर का लिखा यह नाटक सुना। निर्देशक थे श्री दीनानाथ। भाग लेने वाले कलाकार थे सर्वश्री जैमिनी कुमार वीरेंद्र, मंजू मैनी, सरल नांगिया, शर्मिला मलखानी, हरि मेहता, अरुण माथुर, बीएल टंडन, दीपा पांडे और नरेश कुमार सूरी। ये कार्यक्रम केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र पर तैयार किया गया।

ये आकाशवाणी है। आज के रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। आज के सभा में प्रस्तुत हैं सुविख्यात बांसुरी वादक श्री विवेक सोनार का बांसुरी वादन। आप महाराष्ट्र के 40 गांव में जन्मे और पले बढ़े। आप अपने पिता श्री रामचंद्र सोनार से प्रेरित थे। आपके पिता वारकरी संप्रदाय के एक जाने माने गायक रहे। आपने बहुत कम उम्र से ही बांसुरी बजाना शुरू किया। आपने अपने पिता से शुरुआती प्रशिक्षण लेने के बाद अपने पहले गुरु पंडित पुरुषोत्तम अंतापुरकर से औपचारिक प्रशिक्षण प्राप्त किया। 1997 में मुंबई आए ताकि पंडित हरिप्रसाद चौरसिया के सानिध्य में पेशेवर प्रशिक्षण ले सके। इस तरह आपने पंडित हरिप्रसाद चौरसिया के मार्गदर्शन में अपनी संगीत यात्रा शुरू की, जिन्होंने आपको संगीत की खोज और अभिव्यक्ति की गहरी दुनिया से परिचित कराया। आप एक बेहतरीन बांसुरी वादक और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत परंपरा के वाहक हैं। आप न केवल अनगिनत शिष्यों के गुरु हैं बल्कि एक संगीतकार भी हैं। आप भारत के अग्रणी बांसुरी वादकों में से एक हैं। आप तंत्रकारी तथा लयकारी शैलियों पर अपनी जबरदस्त पकड़ के लिए जाने जाते हैं। बांसुरी वादन में अपनी बेजोड़ महारत के लिए आपको जाना जाता है। आप अपने कुछ अनूठे पहलुओं के लिए भी जाने जाते हैं, जैसे आपका भव्य बांसुरी उत्सव और फ्लूट सिंफनी एक शानदार संगीत समारोह है जिसमें 111 बांसुरियां एक साथ बजती हैं। आपने भारत के कई प्रतिष्ठित संगीत समारोह में संतूर, सितार, वायोलिन और कर्नाटक शैली के वाद्य संगीत के अग्रणी कलाकारों के साथ एकल और जुगलबंदी प्रस्तुतियां दी हैं। आपने कई जाने माने समारोहों में अपनी प्रस्तुतियां दी हैं। सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव पुणे, मोगोबाई कुर्दिकर संगीत समारोह गोवा, हम्पी महोत्सव हम्पी, ऊर्जा संगीत समारोह दिल्ली, पंडित राम मराठे महोत्सव ठाणे, पंडित जितेंद्र अभिषेकी संगीत महोत्सव गोवा, गुणीजन संगीत महोत्सव इंदौर, गोवा कला अकादमी संगीत समारोह। आपको कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। आप भारतीय शास्त्रीय बांसुरी वादन के लिए आकाशवाणी के अश्रेणीय कलाकार हैं। हिंदुस्तान टाइम्स द्वारा ठाणे रत्न पुरस्कार, पंडित संगमेश्वर गुरव पुरस्कार, पंडित राम मराठे पुरस्कार, सुर श्रृंगार संसद मुंबई से सुरमणि शीर्षक, भारत सरकार की ओर से राष्ट्रीय

0: अभी आप बांसुरी पर सुन रहे थे राग चंद्र कौंस, प्रस्तुत कर रहे थे श्री विवेक सोनार। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे श्री ओजस अधिया। इसी के साथ आज का रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा संपन्न होती है। इस कार्यक्रम का ध्वनि मुद्रण आकाशवाणी मुंबई में किया गया और इसे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
1: यू आर लिस्निंग टू राग चंद्र कौंस बाय रिनाउंड फ्लॉटिस्ट श्री विवेक सोनार। He was accompanied on tabla by Sri Ojas Adia. With this tonight we conclude Ravi Vasariya Akhil Bhartiya Sangeet Sabha. This program was recorded in the studios of Akashwani Mumbai and this broadcast came to you from Akashwani Delhi.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत की। दोनों पक्षों ने व्यापार, हरित बदलाव, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप्स, लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं, रक्षा, अंतरिक्ष, जलवायु कार्रवाई के अलावा द्विपक्षीय संबंधों में सहयोग के नए तरीकों पर भी चर्चा की। इस बीच स्वीडन के प्रधानमंत्री मोदी को देश के सर्वोच्च पुरस्कार रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी को मिला 31वां वैश्विक सम्मान है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके स्वीडिश समकक्ष यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन के साथ मिलकर एक प्रमुख अखिल यूरोपीय व्यापार मंच उद्योग जगत के लिए यूरोपीय गोलमेज सम्मेलन को भी संयुक्त रूप से संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि रक्षा के सहयोग में बढ़ रहा है।
1: रक्षा के क्षेत्र में हमारा सहयोग निरंतर बढ़ रहा है। स्वीडन की कंपनियों द्वारा भारत में प्रोडक्शन फैसिलिटीज बनाए जाना इस बात का प्रमाण है कि हम बायर सेलर रिलेशनशिप से आगे बढ़कर लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप की ओर बढ़ रहे हैं।
0: नीदरलैंड की अपनी यात्रा पूरी करने के बाद श्री मोदी आज शाम अपने पांच राष्ट्रों के दौरे के तीसरे चरण के लिए गोथेनबर्ग पहुंचे। गोथेनबर्ग हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। गोथेनबर्ग के लिए रवाना होने से पहले नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जटन व्यक्तिगत रूप से एम्स्टर्डम हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी को विदाई देने आए। नीदरलैंड की अपनी दो दिन की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने अपने डच समकक्ष के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। दोनों देशों ने रक्षा, महत्वपूर्ण खनिजों और अन्य प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के लिए 17 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि नीदरलैंड की उनकी यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों को एक नई गति प्रदान की है। इस दौरे को गुजरात की महत्वाकांक्षी कल्पसर परियोजना के लिए भारत और नीदरलैंड के बीच तकनीकी सहयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और उनके डच समकक्ष ने ऊर्जा, बंदरगाह, स्वास्थ्य सेवा, कृषि, व्यापार और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों की प्रमुख डच कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से भी बातचीत की। प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात की अपनी यात्रा पूरी करने के बाद शुक्रवार को दो दिन की यात्रा पर द हेग पहुंचे थे। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन के नेतृत्व में केरलम की नई सरकार कल तिरुवनंतपुरम में शपथ लेंगे। कांग्रेस ने 14 मई को वीडी सतीशन को केरलम का अगला मुख्यमंत्री घोषित किया था। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने केरलम विधानसभा चुनाव में 2/3 से अधिक बहुमत हासिल किया। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश ने एक दिन में रिकॉर्ड 256.4 गीगावाट बिजली की मांग को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। श्री जोशी ने बताया कि भारत का बिजली ढांचा अब पहले से ज्यादा मजबूत, भरोसेमंद और भविष्य की जरूरतों के लिए तैयार हो गया है। पश्चिम मध्य रेलवे ने तिरुवनंतपुरम सेंट्रल हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस में आज हुई आग की घटना की जांच के लिए उच्च प्रशासनिक स्तर की जांच समिति गठित की है। ये आग ट्रेन के एक यात्री कोच और एक लगेज ब्रेक तथा जनरेटर कोच में लगी थी। घटना लूनी रिक्शा और विक्रमगढ़ आलोट स्टेशनों के बीच हुई। भारतीय रेलवे ने कहा कि समिति को निर्धारित समय सीमा के भीतर जाँच पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। भारत ने कहा है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमले स्वीकार्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतनेनी हरीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों को निशाना बनाने तथा जहाजों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को जायज नहीं ठहराया जा सकता। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उस पोस्ट को खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया है कि भारत के पास केवल 2 दिन का तेल भंडारण बचा है। पत्र सूचना कार्यालय PIB की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि ये दावा फर्जी है। इकाई ने कहा है कि भारत के पास 60 दिन का कच्चे तेल का भंडारण मौजूद है। भारत के श्रेयांसी वलीशेट्टी ने चीन के बाओजी में चाइना मास्टर्स बैडमिंटन के महिला सिंगल्स में रजत पदक जीता। इस सुपर 100 प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में श्रेयांसी को चीन की आन क्यू युआन से सीधे गेमों में 14-21, 6-21 से हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, The news read by Reshma Tiwari. Prime Minister Narendra Modi held delegation-level talks with his Swedish counterpart Ulf Kristersson in Gothenburg. The two sides also explored new avenues of cooperation in trade, green transition, artificial intelligence, emerging technologies, startups, resilient supply chains, defense, space, climate action, and people-to-people ties. Meanwhile, Sweden conferred the Royal Order of Polar Star, Commander Grand Cross, upon Prime Minister Modi. Sweden's Royal Order of Polar Star, Commander Grand Cross, is the utmost recognition and honor that can be conferred upon a head of government. This is the 31st global honor for Prime Minister Modi. Mr. Modi reached Gothenburg this evening on the third leg of his five-nation tour after concluding his visit to the Netherlands. Upon arrival at Gothenburg Airport, Prime Minister Modi was accorded a warm welcome and was personally received by the Swedish Prime Minister. During his two-day visit to the Netherlands, Prime Minister Modi held bilateral talks with his Dutch counterpart. The two countries signed 17 agreements to strengthen cooperation in defense, critical minerals, and other key sectors. In a social media post, Mr. Modi said his visit to the Netherlands has added new momentum to bilateral ties. He said the two countries have charted an ambitious roadmap for the future by elevating ties to a strategic partnership and expanding cooperation in water resources, semiconductors, innovation, defense, sustainability, and mobility. He expressed confidence that the friendship between India and the Netherlands will continue to grow stronger in the years to come. He also thanked Prime Minister Jetten for the warm hospitality and for personally coming to the airport to bid him farewell. The new Keralam government led by Congress leader V.D. Satheesan will be sworn in tomorrow in Thiruvananthapuram. Congress had announced Satheesan as the next chief minister of Keralam on the 14th of this month, putting an end to the high drama and suspense that lasted for 10 days. The Congress-led United Democratic Front secured a more than two-thirds majority in the Keralam Assembly elections. Union Home and Cooperation Minister Amit Shah today inaugurated and laid the foundation stone for development works worth over 700 crore rupees in Gandhinagar, Gujarat. Mr. Shah, who is on a two-day visit to the state, launched projects worth over 600 crore rupees of Gandhinagar Municipal Corporation. He also inaugurated a newly built milk processing plant of Madhur Dairy in the city, built at a cost of around 128 crore rupees. Earlier in the day, Mr. Shah inaugurated the Innovation and Incubation Centre at the National Institute of Design in Gandhinagar. Union Minister of New and Renewable Energy, Prahlad Joshi, said India has now successfully managed a record peak power demand of 256.4 gigawatt in a single day. In a conversation with a private English news daily, Mr. Joshi said nearly 33% of the power demand met through renewable energy sources. He said India's power infrastructure has become stronger, more resilient and future-ready. The minister added that this transformation reflects the rapid expansion of energy capacity, grid strengthening and the growing contribution of clean energy in powering country's growth journey. Delhi Chief Minister Rekha Gupta today launched various development projects worth approximately 100 crore rupees in Dwarka Assembly constituency of National Capital. Addressing the gathering, the Chief Minister said that after completion of these projects, there will be significant improvement in problems such as waterlogging, damaged roads, sewer overflow and power supply in the area. Delhi Police has issued a memorandum regarding rationalization of government vehicle usage in its offices and units and measures for reduction of fuel consumption. The memorandum has been issued by the Office of Police Commissioner in view of the prevailing international situation and Prime Minister Narendra Modi's appeal for austerity measures and reduction in fuel consumption. In IPL cricket, Rajasthan Royals have set a target of 194 runs for Delhi Capitals in Delhi. Chasing the target, Delhi Capitals were 147 for 3 in 15.4 overs when reports last came in. Earlier, Delhi Capitals won the toss and elected to field. And that is the end of this news bulletin.
3: अंग्रेजी में समाचार अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है एफएम बैंड के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। रात के 11:10 और 11 सेकंड हो चुके हैं। आज का ये प्रसारण अब यहीं समाप्त होता है। कल इसी फ्रीक्वेंसी पर हम प्रातः 5:55 पर पुनः उपस्थित होंगे आपकी सेवा में। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। शुभ रात्रि। जय हिंद।